दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान।
2: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का

तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का दिन यानी कि हमारे शिविर का अंतिम दिन, 30वां दिन, तो सबसे पहले तो हमें आप सभी मिलकर के एक बार ये बताएं कि 30 दिवसीय योग शिविर में नए नए आसन, नए नए प्राणायामों को हमने एक नए शब्दावली के साथ में किया। हर दिन एक नए शब्द की उत्पत्ति के साथ में हमने हर रोज कुछ न कुछ नया ही सीखा है। तो 30 दिवसीय योग शिविर में आपने आकर के क्या क्या सीखा और क्या क्या प्राणायाम आसन किए, यह सभी आप हमें जरूर से बताएंगे। तो सभी का तहे दिल से स्वागत करती है योगिनी समता। तो आइए आज 30वां दिन योग शिविर का हम करेंगे जागरव। जागरव कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी कसरत नहीं है। जागरव का मतलब होता है बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी चीज को जानते हैं। चेतावनी, जाग, सतर्क, सूर्य के लिए एक नाम, मतलब होने का जागरव बहुत ही सुंदर बन जाता है। शास्त्रों में जागरव नाम को काफी अच्छा माना जाता है और इसका मतलब यानी चेतावनी, सतर्क होना होता है। जागरव अपने आप में इसीलिए नाम से ही जाना जाता है क्योंकि अगर हम किसी चीज की चेतावनी करते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह जागरव ही है। जागना, सचेत हो जाना। आज के अंतिम दिन यानी कि योग शिविर के अंतिम दिन में जागरव का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि हम आपको किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण आसनों पर, महत्वपूर्ण प्राणायामों पर कुछ चेतावनी भी करने वाले हैं। जागरव, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर एक प्राणायाम, हर एक आसन के साथ यह शब्द जुड़ा होना चाहिए। हम कोई भी आसन करेंगे, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमें अपने आप में जागरव होना चाहिए। चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वह कोई भी आसन क्यों ना हो। आसनों की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो मंडूक आसन है, सौंदर्य आसन है, चक्रासन है, और भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि हम जब हम करते हैं तो हम उसकी सावधानियों को चेतावनी समझ करके अपना लेते हैं। परंतु प्राणायाम जब हम करते हैं तो श्वास से निर्मित होना चाहिए, श्वासों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। श्वास से निर्मित कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम होता है तो हमें अपने आप में एक जागरव की स्थिति बना देता है, एक जागरव को उत्पन्न कर देता है। एक जागरव की स्थिति इस तरीके से पनपने लगती है जब हम पूर्ण रूप से उसमें लिप्त हो जाते हैं, जान जाते हैं कि यह हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राणायामों की श्रृंखला में जब हम आते हैं तो अनुलोम विलोम, कपाल भाति, उद्गीत और भ्रामरी, भस्तिका, बहुत सारे ऐसे प्रणव प्राणायाम, सारे प्राणायामों का जो मिश्रण होता है वह जागरव में सम्मिलित हो जाता है। यानी कि हम कोई भी अगर आसन प्राणायाम करते हैं तो हमें उसके प्रति चेतावनी जरूर से होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि हर किसी की व्यक्तित्व, हर किसी का शरीर, हर किसी के शरीर के ऑर्गन्स जो काम करने की शक्ति पर निर्भर करते हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हर एक मनुष्य का रूपरेखा, चलन, बोलने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, खान पान से सभी कुछ अलग होता है, हम यह कैसे मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा होता है? एक जैसा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार हर एक आसन, हर एक प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ही होता है। कोई आसन, कोई प्राणायाम हमें उतना अंदर से प्रभावी नहीं बना रहा है या प्रभाव से परिपूर्ण है तो हम जान जाते हैं कि यह आसन हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हम जान जाते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है तब हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही ज्यादा पर्याप्त भी है। तो जागरूक का मतलब यही हुआ कि हम किसी भी आसन प्राणायाम को करें तो हमें उसके प्रति पूर्ण चेतावनी रहे साथ में ही काम करना चाहिए। तो आइए
हमें आपसे सबसे एक और महत्वपूर्ण बात करनी है, क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है। आप सभी ने 30 दिन तक बहुत ही प्यार सम्मान हमें हर एक आसन प्राणायाम के साथ दिया। नित सवेरे 6 से 7 योग की योग पाठशाला में आकर के आपने नित्य सवेरे योग को अपनाया, आसन किए और उसके बारे में जानकारियां ली। इसी तरीके से आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे योग योगशाला में आकर के नित प्रतिदिन इसी तरीके से आप आसन प्राणायाम करते रहेंगे। हम एक नई सीरीज के साथ फिर से आएंगे, एक नए योग शिविर के साथ हम फिर से जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमसे अब अगर कोई त्रुटि हो गई हो किसी भी आसन को लेकर के, किसी भी प्राणायाम को लेकर के, तो आप हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। और आगे एक नई प्रेरणा के साथ में हम फिर से, एक नए उत्साह के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। अगली ऋतु है हेमन यानी शीत ऋतु, जो दिसंबर से जनवरी तक होती है। इसमें मौसम ठंडा और शुष्क होता है, जिसमें हम अगर कुछ भी खान पान का अगर करें तो वो आसानी से पच जाता है। हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम इस मौसम में, इस महीने में कुछ भी अगर खाते हैं तो आसानी से पचा ले जाते हैं। योग अभ्यास की अगर हम बात करें तो अधिक ऊर्जावान वाले योग हम इसमें कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, धनुरासन, उष्टासन। ये सारे ऐसे आसन हैं जिसे हम इस वाले महीने में कर सकते हैं, जो कि दिसंबर से जनवरी तक होता है। गर्म पौष्टिक भोजन और सूखे मेवे, सूप आदि हम सभी इस मौसम में अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि हमें इस समय शरीर को गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो हमें बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों को लेना चाहिए जो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से गर्मी पहुंचाए। सुबह योग करते समय शरीर को ढककर और गर्माहट बना करके ही रखें, क्योंकि इस महीने में हमें ठंडी का एहसास ज्यादा होता है। कई बार देखा गया है कि योग के समय कुछ भी लोग बहुत ही हल्का सा पहनते हैं।

हमें अपनी पोषक तत्वों को बढ़ाते जाना चाहिए। भोजन और योग में कम से कम 3 घंटे का अंतराल जरूर रखें। पसीना निकलने पर तुरंत ठंडी या गर्म चीजों से बचें। योग आसन के बाद में यदि हम इन सारी चीजों को अपनाते हैं तो हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही साथ मन भी स्वस्थ रहता है। तो ये था दोस्तों 6 ऋतुओं में 12 महीनों का समीकरण, जो कि आप इसके साथ में कई योग आसनों को कर सकते हैं। हम अगले फिर सीरीज में मिलेंगे एक नई अध्याय के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरो। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक नई सीरीज चल रही है जिसमें हर एक योग आसन के साथ में एक प्रमुख नाम को जोड़ा गया है, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा असर है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को हम अपने जीवन के साथ अगर जोड़ देते हैं तो उसके साथ में उसका महत्व भी अभिन्न रूप से हमारे साथ जुड़ जाता है। जैसा कि हम अपनी अगली श्रृंखला में चल रहे हैं, एक योग की श्रृंखला में चल रहे हैं, जो कि है योगासन, जिसे बोट पोज भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ नौकासन के बारे में जानना ये आसान नहीं होगा, इसीलिए इस नौकासन को एक नाम दिया गया है जो कि है अलौकिक नौकासन। अलौकिक नौकासन इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये अपने आप में एक अलौकिक रूप से काम करता है। जो आसन हमें संपूर्ण रूप से हमारी पेट की मांसपेशियों के साथ में एक संतुलन बनाता है, वो एक अलौकिक ही तो हुआ, जो हमारे पूरे शरीर को एक संतुलित आहार की तरीके से काम करता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि हमने पेट के अंदर वो खाना गया, लेकिन क्या आपको पता है कि खाना कहाँ से गुजरता हुआ कहाँ को गया है, और उसके बाद में ये खाना कितनी देर में पचेगा, और हर एक खाने की हर एक कौर की क्या पोषक तत्व मिलेंगे या उनका महत्व क्या है। ठीक वैसे ही हम आसनों को तो कर जाते हैं, लेकिन हर एक आसन के पोज की, हर एक आसन की, हर एक पॉइंट की अलग अलग महत्ता होती है, जैसे कि नौकासन। तो आइए अब हम जानते हैं नौकासन अपने आप में अलौकिक नौकासन क्यों है। योग एक असरदार आसन होता है, ये सभी जानते हैं, जो हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और संतुलन बढ़ाता है। तो आइए इसे हम किस तरीके से करते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके फायदे। नौकासन करने से, अलौकिक नौकासन को करने से पेट की चर्बी घटाने और कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है। पाचन तंत्र को इस तरह सक्रिय करता है, जो बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं उन्हें एक अपने शरीर में आकार मिलता है, और जो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं उन्हें अपनी चर्बी को घटा करके उन्हें एक संपूर्ण और सुदृढ़ आकार मिलता है। कमर और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फोकस और बैलेंस बेहतर और मजबूत होता है। अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसको करने की विधि। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वार्म अप 2 से 3 मिनट का मिनी डेली रूटीन होना चाहिए, यानी अगर हम इसे 10 मिनट का एक मिनी रूटीन के रूप में देख रहे हैं तो 2 से 3 मिनट पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप में क्या करना है, हल्की गर्दन को घुमाना है, 30 सेकंड दाएं से बाएं गर्दन को घुमाते हुए कंधे को रोल करते रहना है, 30 सेकंड बैठकर हल्का आगे पीछे घुमाना, यानी गर्दन को पहले आगे झुकाना फिर पीछे की ओर झुकाना, वो 1 मिनट। उसके बाद में अब नौकासन शुरुआती वजन के हिसाब से करना चाहिए। पहले 10 मिनट का एक डेली रूटीन बनाने में हमारे 2 मिनट वार्म अप में गए, अब 3 मिनट का हमें एक और वार्म अप करना है जो कि वजन के हिसाब से है। घुटने मोड़े रखें, हाथ सामने, 15 सेकंड, 3 राउंड आपको पकड़ना है, यानी घुटनों को मोड़ करके हाथों को सामने करना है, और हर राउंड के 20-20 और 30 सेकंड आराम से करते जाना है। उसके बाद में अब आपको नौकासन की स्थिति में आ जाना है। नौकासन की स्थिति को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम किसी शांत वातावरण के स्थान पर बैठ जाएं। जमीन पे बैठ रहे हैं तो इसका लाभ हमें दुगना मिलता है। योगा मैट या कोई भी चद्दर आप बिछा लें और उस पर आप पेट के बल सीधे लेट जाएं। याद रखें दोस्तों, पेट के बल नहीं, पीठ के बल। हाथों को भी समांतर रखें। श्वास को मध्यम गति से धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। दोनों पैर
दोनों हाथ

धड़ व सिर को एक साथ जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ध्यान रहे सिर और पैर लगभग एक ही ऊंचाई पर रहें। जितनी देर इस अवस्था में आप रह सकते हैं उतनी देर आप रुकें। अन्यथा धीरे धीरे पैरों को नीचे करें और हाथों को भी समानता स्थिति में लाते हुए अपने कंधों को जमीन पर रख दें। ये आसन पूर्ण नौकासन कहलाता है। यही क्रम अब आपको 2 से 6 बार की स्थिति में दोहराना है। ये द्वितीय प्रकार से भी आसन हो सकता है। ये आपका पहला क्रम था जो कि अलौकिक नौकासन। दूसरा इसका प्रकार है जिसे आपको हाथों को लंबे रखना है और उंगलियों को आपस में मिलाकर सिर के पीछे वाले हिस्से पर लगभग 1 फीट की पैर और कंधे आपको उठाने हैं। इस प्रकार यह आसन अर्ध नौकासन कहलाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यह अनाहत चक्र पर रहता है। श्वास क्रम, यदि कब्ज हो तो पहले श्वास लें और ऊपर उठते समय व अंतिम स्थिति में एवं वापस आते समय अर्ध कुंभक करें। इसके बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके जो उपचार हैं और लाभों को एक साथ एक ही तरह। इस आसन से पीठ बहुत ज्यादा मजबूत होती है, पेट की आंतों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, यह पेट की आंतों पर अच्छा प्रभाव डालता है। पैरों को बल मिलता है, बुढ़ापे में पैरों का कांपना बंद होता है। अपने स्थान से हटी हुई नाभि को भी ठीक करता है। कई बार आपने सुना होगा कि नाभि यानी हमारी नाप उखड़ गई है, तो इस आसन को अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो हमें यह दिक्कत नहीं होती है। इस आसन को नियमित करने से महिलाएं अपने स्त्री रोगों को भी लाभ तक पहुंचा सकती हैं और साथ ही साथ में हमें एक सुदृढ़ रूप और एक आकार भी मिल सकता है। अब आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ, क्योंकि कहते हैं ना जब लाभ है तो उसकी सावधानियाँ भी होती हैं। कमर दर्द, हर्निया या गर्भावस्था में ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस योगासन को कर रहे हैं तो योग प्रशिक्षण की सलाह में ही करें। गर्दन या कंधों पर अधिक जोर न डालें। दर्द हो तो तुरंत इस आसन को करना छोड़ दें। तो ये था दोस्तों अलौकिक नौकासन जो कि हम सभी ने मिलकर के किया। इसके नियमित रूप से बताई गई सारी सावधानियाँ, उपचार और लाभों को हम यदि प्रतिदिन नियमित रूप से करेंगे तो हमें कई इसके लाभ मिलते रहेंगे। आइए हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए नाम, एक नए सीरीज के साथ। तब तक करें योग, रहें निरोग। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। योग की योग पाठशाला में चल रहे 8 दिवसीय योग शिविर में मैं समता योगिनी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, योग की आज 8 दिवसीय योगशाला में आज जो की हम कराएंगे आपको योग, वो है चमत्कारिक भस्त्रिका। चमत्कारिक भस्त्रिका यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम तो हमने मिलकर के पहले भी किया हुआ है और उनका बहुत अच्छे से लाभ भी हम लोगों को मिला है। लेकिन यह प्राणायाम चमत्कारिक क्यों है? इस प्राणायाम के आगे यह संपूर्ण शब्द यानी चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम क्यों कहा गया? तो चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम क्यों है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि शब्द से ही आपको विदित हो रहा है कि यह प्राणायाम चमत्कार से भरा हुआ है। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में अनेकों चमत्कार उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हम योग से जुड़े हुए हैं तो हमें अपने आप में काफी ऐसे चमत्कार मिलते दिखते दिखाई देते हैं। शरीर में न जाने कितनी तंत्रिका तंत्र, हड्डियां, मज्जा और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है और जिनकी वजह से हम बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन योग एक ऐसी चीज है जिससे हमें करने के बाद में जो संपूर्ण लाभ होता है, जो चमत्कार हासिल होता है, वह है चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को हम जितना भी बाह्य रूप में जानते हैं उतना ही आंतरिक रूप में भी जानते हैं। हर एक प्राणायाम करने का अलग अलग अनुरूप स्वरूप होता है। भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप में एक चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। चमत्कार को उत्पन्न करने के साथ साथ ऐसी कई चीजों को जन्म देता है जो आपके शरीर में स्फूर्ति और खुशी का माहौल बनाए रखता है। तो आइए दोस्तों, अब हम 8 दिवसीय योग शिविर में आज 7वें दिन पे भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे हम सभी मिलकर के। तो सबसे पहले हम किसी चटाई, चद्दर या
मैट पर बैठ जाएंगे। एक शांत वातावरण के साथ में मुखमंडल पर बहुत ही प्यारी सी भीनी सी मुस्कान, सारी आंतरिक बाह्य शक्तियों को एक साथ रखते हुए हम अपना ध्यान त्रिनेत्र पर केंद्रित करते हुए अपने प्राणायाम को शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम यानी श्वास प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। केवल इतना मात्र ही जानना कि भस्त्रिका प्राणायाम जल्दी जल्दी करना, क्या इतने में ही आपको चमत्कारिक प्राणायाम और प्रणाम मिल जाएंगे? नहीं, आइए हम विधि जान लेते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, कमर दर्द इससे ठीक होता है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो जिन्होंने भी कमर दर्द की समस्या है वह थोड़ा सा रुक करके करेंगे। कमर, गर्दन, पीठ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। इसके बाद बिना शरीर को हिलाए दोनों नासिका छिद्र से आवाज करते हुए श्वास लें। उसके बाद में आप श्वास लेते समय पेट को फुलाना है और श्वास छोड़ते समय पेट को पिचकाना है। तेजी गति से श्वास बाहर निकलेगी और मध्यम गति से श्वास हमारी अंदर जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे जान लेते हैं कि फायदे क्या हैं। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के साथ साथ कान, नाक, आँख, स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने के लिए लाभदायक है। इस प्राणायाम से पाचन संस्थान, लीवर और किडनी भी एक्सरसाइज हो जाती है। साथ ही मोटापा, दमा, टीबी और श्वास से जुड़े हुए रोग ठीक होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जानते हैं कि कौन से रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। श्वासों पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से हमारे शरीर में बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के साथ आँख, नाक, कान को स्वस्थ और स्वस्थ तो बनाए रखता ही है, साथ ही साथ हमें ऐसी बहुत सारी आंतरिक हमारी आर्गन्स हैं उन्हें भी ठीक करने में मदद करता है। रक्त संचार में बहुत अच्छे से वृद्धि करता है। तो इसी तरह हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि यह प्राणायाम कैसे करना है। किसी भी शांत वातावरण में सिद्धासन, वज्रासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। अगर आप इन आसनों में नहीं बैठ पा रही हैं, तो किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं और बैठकर अपनी गर्दन, शरीर को, सिर को सीधा रखें। इसके बाद अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को शिथिल कर अपना मुंह बंद कर लें। योग शुरू करने से पहले अपने नथनों को भी अच्छी तरह साफ रख लें, ताकि जब हम श्वास लें तो श्वास आते जाते समय हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे श्वास खींचते हुए अपने श्वास को बलपूर्वक छोड़ें और अपनी श्वास बलपूर्वक खींचते हुए वैसे ही छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त धौंकने की तरह आपको अपनी छाती को फुलाना और पिचकाना है। इस प्राणायाम का अभ्यास 3 अलग श्वास दरों से किया जा सकता है। पहला धीमी, जिसमें आप 2 सेकंड में एक श्वास लेंगे, दूसरा मध्यम जिसमें आप 1 सेकंड में एक श्वास लेंगे और तीसरा तेज जिसमें आप 1 सेकंड में 2 श्वास लेंगे। आप शुरुआत धीमी गति से करें और रोजाना लगभग 30 पंप ही खींचे। इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराएं। इसके बाद जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी आप रोजाना 15 पंप बढ़ा सकते हैं। रोज योग सुबह शाम से करने से घुटनों का दर्द भी जल्दी ही ठीक हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम आपको बता दें, जैसा कि अभी हमने कल के दिन किया था, ठीक वैसे ही आज 7वें दिन में चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम जो हम कर रहे हैं, यह वाकई में चमत्कार को जन्म देने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों, जिस तरीके से आपने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया है, अब हम बताने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम की विशेषताएं। चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम की विशेषताओं में सबसे पहला ये है कि यह लीवर और किडनी को भी एक्सरसाइज कराता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां आने लगी हैं जो कि हमारे शरीर जिनका मोटा होता है, जिनकी फाइबर्स होती हैं, उन्हें कम करने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम करने मात्र से ही जो मोटापा होता है वो कम करने में बहुत ही लाभप्रद होता है। जुड़े हुए किसी भी रोग को यानी मसल से जुड़े किसी भी रोग में भी भस्त्रिका प्राणायाम को लाभकारी माना गया है। भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार भी सही ढंग से होता है। चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम कब नहीं करना चाहिए, आइए हम सावधानियां भी कर लेते हैं।
जो लोग हाई बीपी गंभीर हृदय समस्याओं से पीड़ित हैं, भस्त्रिका प्राणायाम उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नाक रुकी हुई है तो यह प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीव्र अस्थमा हो, बुखार हो, भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम क्षणों में भी यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, यह प्राणायाम चमत्कार क्यों है, नित प्रतिदिन हम अगर इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमें इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा और मालूम होगा कि भस्त्रिका प्राणायाम चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम क्यों है। 8 दिवसीय योग की योग शिविर में आज 7वें दिन पे चमत्कारिक भस्त्रिका प्राणायाम हमने मिलकर किया और उनके लाभ जाने, विशेषताएं और नुकसान भी। तो आप सभी मिलकर के योग करें।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्तीज़।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. और ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश ने तो ओथ ले ली है, शपथ ले ली है कि आज रुकेगा नहीं. सो पता नहीं आज ही नहीं रुकेगा या कल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि कल से जो चालू हुआ है वो अभी तक रुका नहीं है और लगातार बारिश होती जा रही है. लेकिन इसी के साथ में, इसी बारिश में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ हमको ध्यान रखना होता है अपनी चीज़ों का, सभी का. सो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए चलिएगा कि भाई किस तरह से आपको बारिश के मौसम में जो ये लगातार कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, वायरसेस हैं, ये बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. सो भाई हर चीज़ से बचे रहिए. मैं तो बस चाहता हूँ कि बारिश अगर हो रही है, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं होता है, तो भाई बस उसका लुत्फ़ उठाइए. यानी किस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं बस उसका लुत्फ़ उठाइए, ना कि परेशान रहिए. तो उसके लिए थोड़ा सा बस अपना ख्याल ही रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. फ़िलहाल आपका वेलकम करते हैं फ्राइडे स्पेशल शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान गुड मॉर्निंग गोंडा में. तो चलिए इस गाने को सुनते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे आखिर क्या होने वाला है.

0: So, मुझे लगता है कि भाई आज का जो ये थॉट ऑफ द डे बताने वाले हैं इस बारिश के लिए बड़ा ही परफेक्ट सा होने वाला है। बारिश के साथ क्या क्या परफेक्ट होता है? बारिश के साथ सबसे पहले नंबर पर आप कहेंगे चाय। नहीं, बारिश के साथ सबसे पहले नंबर अगर दिया जाएगा तो वो आपको खुद दिया जाएगा। भाई आप नहीं होंगे तो चाय कहाँ होगी? सो बारिश को भी आपकी सोहबत पसंद है। सो सोहबत इज़ फर्स्ट। हाँ, सेकेंड में हम ज़रूर चाय रख सकते हैं क्योंकि अब इतना भी उसको बाद में नहीं लाने वाले, राइट? नहीं तो चाय भी नाराज़ हो जाएगी। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं खाने वाली जो बारिश में अच्छी लगती है। बुक्स भी बारिश में अच्छी लगती है, विंडो तो होती ही है, जाहिर सी बात है। सो इसी बारिश में अगर ये थॉट ऑफ द डे जो हम बताने वाले हैं आज आपको, ये भी काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। अब आप सोचेंगे बारिश में थॉट सूट करता है? भाई कुछ होते हैं ऐसे थॉट्स जो सच में बारिश में ही सूट करते हैं। अब वो तो आपको सुन लेने के बाद अंदाज़ा होने वाला कि अच्छा ये बात थी। सो यस, वही अच्छा और वही ये वाली जो बात आने वाली है वो दरअसल इसी में ही आपको मिलने वाली है। तो चलिए भाई, बहुत सारी बातों को तो हम लगातार अब करते रहने वाले हैं, बहुत कुछ आप तक पहुँचाने भी वाले हैं और बहुत कुछ आपसे साझा करने वाले हैं। जब भी मैं आता हूँ ना, स्टार्टिंग करता हूँ इस शो की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो सच में कहा जाना बाकी है और आप तक पहुँचाया जाना भी बहुत ज़्यादा अभी तक बाकी है। तो क्यों ना शुरू करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि आखिर में हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं और ये आपकी समझदारी मुझे बहुत प्यारी लगती है। वैसे भी आज का दिन जो है वो फ्राइडे है और फ्राइडे कितना ज़्यादा स्पेशल हो जाता है आपको पता ही है। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो हियर यू गो, बारिश वाला थॉट, राइट? चलिए, सो क्या है बारिश वाला आज का थॉट ऑफ द डे फ्राइडे स्पेशल को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला है। तो हमेशा की तरह हम जब आपको बताते हैं तो आपको सच में अपने अंदर के जो ख्यालात हैं वो बहुत ज़्यादा उमड़ घुमड़ जाते हैं और आप कहते हैं वाह, हमने भी बहुत सोचा और हमको ये मिला। चलिए, सो आज का थॉट कहता है कि कितना अजीब है ये इंसान, कितना अजीब है इंसान, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र में अपना हाल तबाह करता है और आने वाले वक्त में गुजरे हुए कल को याद करके रोता है। अब पहले तो समझना पड़ेगा कि ये भाई अजीब का, तो आप समझ गए कि अजीब का मतलब क्या है। यस, इसके अलावा मुस्तकबिल क्या है? सो मुस्तकबिल है अपना फ्यूचर, भविष्य, राइट? सो कितना अजीब है इंसान, अपना मुस्तकबिल की फिक्र में अपना हाल तबाह करता है। अब यहाँ हाल का मतलब नहीं है कि क्या हाल हो गया, यहाँ हाल का मतलब है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। सो भाई ये इंसान कितना अजीब है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र में अपना हाल तबाह करता है और आने वाले वक्त में जब मुस्तकबिल आ जाता है तो गुजरे हुए कल को याद करके रोता है। अब जो गुजर गया, जो पास्ट है, उसको याद करके रोता रहता है। यही समस्या है आपका, हमारा, सबका। हम सब का बदला नहीं लेगा, लेकिन हम सब लोग बदला खुद ही इसमें ले लेते हैं, खुद से ही। तो यही कहने का मतलब है आज के थॉट ऑफ द डे का कि इंसान भी बहुत ज़्यादा अजीब है। अजीब क्यों है? क्योंकि भाई जब हम भविष्य की फिक्र में होते हैं तो अपना हाल तबाह कर रहे होते हैं। मान लीजिए अगर हम कल के बारे में ही सिर्फ सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, तो आज जो हैं वो तो जा ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्त, अब जब कल वो वाला आ जाएगा और वो भी आज बन जाएगा, तो फिर बीते हुए कल को, यानी आज जो गुजर जाएगा, उसको सोच करके रोएंगे। तो ये बड़ा अजीब विडंबना है हम इंसानों के साथ, हम न जाने कहाँ इधर उधर।

बार इधर उधर करके फंसे ही रह जाते हैं। सो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे जरा सा मतलब सच में सोच करके उसको पार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे अगर हम फंसे रह जाएंगे तो हम बढ़ेंगे कब? और हम बढ़ेंगे क्या, मतलब फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ना होता है, फ्यूचर खुद ब खुद चलता चला आता है। बस हमको तो अपना वर्तमान, हमको अपना हाल, आज का प्रेजेंट बेहतर बनाना होता है जितना हम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो ये प्रॉब्लम हर कहीं से आती, ज़्यादातर जो जड़ बनती है वो है कंपैरिजन। किसी और को देख करके अपने को खुद ही सप्रेस करना यार, कि सब कर रहे हैं हम ही नहीं कर सकते, सब तो आगे बढ़ गए हैं हम ही नहीं बढ़ सकते, सब तो कर ले जाएंगे हम ही नहीं कर पाएंगे ना। बहुत ईमानदारी से आज का दिन एक नई ज़िंदगी है। एक नई ज़िंदगी का मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया मौका है। सो बस उसको जीना है खुल करके, जो बेहतर हो सके उस चीज़ का काम करना है, जितना हो सके आपको टहलना है, खुद को वक्त देना है, फैमिली को वक्त देना है, फ्रेंड्स को वक्त देना है, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनना है, पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना है, जाने का मौका मिले तो जाना है, और कुछ बढ़िया सा खाने का मौका मिले तो खाना है। करना क्या है, लाइफ इसी में ना, लाइफ तो छोटी छोटी चीज़ों में। हम तो बड़ी बड़ी चीज़ों को सोच करके सोचते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को बेहतर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में छोटी छोटी चीज़ें आज हमारे हाथ में, जो नहीं है उसके बारे में सोच रहा है, जो है वही उसी को करने के लिए एक स्टेप आगे का सोच रहा है, और यही बड़ी प्रॉब्लम है। शायद इस बात को समझ लेंगे तो हमारे लिए हमारा हाल जो है वो खुशनुमा हो जाएगा। तो आज का थॉट तो यही कहता है कि कितना अजीब है इंसान, अपने भविष्य की फिक्र में अपना वर्तमान तबाह करता है और आने वाले वक्त में गुजरे हुए कल को याद करके रोता है। सो भाई इस फेर से ज़रा निकलें और आज के दिन को ऐसा बनाएं कि ऐसा लगे कि भाई आज के बाद से ये थॉट ऑफ द डे हमने हमेशा हमेशा के लिए रख लिया। क्यों? क्योंकि इस थॉट ने ऐसी खूबसूरत सी बात हमको समझा दी है कि अब ना हमको मुस्तकबिल की फिक्र में रहना है और ना गुजरे हुए कल में रोना है। सो बस आज जो हाल है इसी में बेहतरीन एकदम फ्लो में यस बेफिक्र होकर के चलना है, एंजॉय करना है। और वैसे भी मौसम भी यही इशारा कर रहा है कि जनाब निकलिए, आप पहाड़ों की तरफ कूच करते हैं, आप समुद्र की तरफ जाते हैं, आप दूर दूर जाते हैं, अब तो ये मौसम, ये समा, सब कुछ आपके घर और छत तक आ गया है। अब क्यों नहीं बैठते दो चार पल आराम से निकाल करके, तो है ना, ये कितना खूबसूरत सा थॉट। तो चलिए भाई, आपको आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा ये हमको कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। और फिलहाल हम आपको ले चलते हैं एक उम्दा से सॉन्ग की तरफ, जिसको सुनने के बाद आप कहने वाले हैं कि भाई सोनू निगम साहब का वो दौर याद आ गया जब ये काफ़ी हिट हुआ करते थे, और उस वक्त हर गली, हर चौक चौराहों, हर युवाओं के मुंह से इनके कई सारे गाने लोग गुनगुनाया करते थे। तो चलिए उसी दौर में वापस की तरफ चलते हैं और इस थॉट के बाद आपको ये खूबसूरत सा गाना सुनाते हैं। लेकिन उसके बाद हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि भाई आपको क्या लगता है, आप भी आकर के चैट बॉक्स पर बता सकते हैं, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, क्योंकि यही तो है गोंडा शहर की धड़कन।

0: फिलहाल प्रिया भी उठ गई हैं और उन्होंने बताया अभी जस्ट कि फिलहाल पराठे उनके यहाँ चल रहे हैं, आपके यहाँ क्या चल रहे हैं नाश्ते में, क्योंकि आज का मौसम बड़ा लाजवाब है। सो चलिए फटाफट से बता दीजिए और साथ ही साथ आपके कुछ कमेंट्स आ चुके हैं चैट बॉक्स पर, जिसको अब हम जा रहे हैं पढ़ने, क्योंकि आप हमको सुनते हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से, और इस एप्लीकेशन पर आपको मिलता है चैट का ऑप्शन, जिस चैट पर आप जो कुछ लिखते हैं वो गोंडा FM के आरजे तक पहुँच जाता है। क्या लिखा है, क्या पहुंचा है, लेट्स गो।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा।

हाँ जी, तो भाई चलिए आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक सवाल भी करने वाले हैं आपसे। यस, बहुत ही आसान से सवाल होने वाला है, आप रेडी रहिएगा बस बताने के लिए। राइट, सबसे पहले आज जारा खान का मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू, और आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में जारा। एंड हमारी प्रीति जी मौजूद हैं, लिखा है सर जी वेरी लवली मॉर्निंग एंड बारिश सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच कि आपको बारिश सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, थैंक यू। एंड जारा ने लिखा, हेलो सर, आज मौसम बड़ा ही मस्ताना है, बारिश वाला है और सुहाना है। यस ऑफ कोर्स।

मतलब बारिश तो हो ही रही है लेकिन जो हवाएं चल रही है, दरअसल उन्होंने माहौल को ठंडा कर रखा है, बड़ा मज़ेदार बना रखा है। और बिल्कुल अभी तक हमने जितने हिल स्टेशंस विज़िट किए हों, चाहे कश्मीर का किया हो या हिमाचल किया हो, उत्तराखंड किया हो, मतलब वैसा ही कुछ नज़ारा लग रहा है आज यहाँ पर दो दिन से। हो सकता है कल का भी दिन हो, खैर एंजॉय करना हमारा काम है इसको बीत जाने से पहले। एंड प्रीति जी लिखती हैं, बहराइच से हकीकत बयां करता हुआ जानदार थॉट, इंसानी फितरत बड़ी ही मनचली होती है, जल्दी समझाने से नहीं समझती, नाजायज़ सोचती रहती है अनाप शनाप, है ना। सो ये जो अनाप शनाप सोचने वाला काम है, मुझे लगता है कि अब इससे थोड़ा सा रिटायरमेंट हम लोगों को ले ही लेना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में थोड़ा बहुत भी अगर असर नज़र आएगा तो उससे बढ़ करके फिर और आगे हम करेंगे और इस तरह से काफ़ी हद तक जैसा चाहते हैं वैसा हम पा ले सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड जहाँ तक बात रही कि भाई आज के प्रेजेंट की है, तो ऑफ कोर्स आज का प्रेजेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और साथ ही साथ कल की अगर हम बात करें तो कल तो बेहतर होगा, अगर हम आज में जीना सीख गए तो कल भी आज बन के ही आएगा, वो भी जब आज आएगा तो आज ही बनेगा एंड उसमें भी हम जी रहे होंगे। तो बस वो हैबिट जो है, एक आदत होती ना, आदत सबसे बड़ी चीज़ होती है, आदत हमारी सबसे पावरफुल टूल होता है, या तो हमको बर्बाद कर देता है और या तो हमको आबाद कर देता है। जैसी आदत बना लेते हैं वैसा हम करने लग जाते हैं और वैसे ही हमारी लाइफ में चीज़ें होने लग जाती है। तो फिलहाल आप भी अपनी आदत को बना लीजिए आज के हाल में, यानी आज के वर्तमान में जीने की, और उसके बाद फिर देखिए आपका भूतकाल भविष्यकाल सारे काल बिल्कुल इस काल काल में हम तुम करे धमाल, वही वाला बात हो जाएगी। सो चलिए बहुत अच्छी बात है, आई होप कि भाई इस बात को आप समझ रहे हैं और आज से आप भी कोशिश करने वाले हैं कि भाई आप भी मुस्तकबिल यानी भविष्य की फिक्र को छोड़ेंगे और बीते हुए कल पर रोने की बजाय आज को एंजॉय करेंगे, पूरा एंजॉय करने वाले हैं, राइट। चलिए अब एक हम गाना गुनगुना रहे हैं जिसको आपको गेस करके बताना है किस मूवी का गाना, बस इतनी छोटी सी बात है। मुझे लगा कि भाई बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है और अगर आप ये बता दें तो शायद मैं समझ पाऊँगा कि आपने ये मूवी देखी है, क्योंकि ये मूवी बहुत बड़ा नाम है इस मूवी का और सुना ज़रूर आपने होगा। सो गाना कुछ ऐसे है कि देखते ही

मगर छुपाएंगे हम। अगेन, देखते ही देखते दिल खो गया। चलिए, सो देखते ही देखते दिल खो गया है। अगर आपको पता है कि ये दिल कहाँ है, मतलब किस मूवी में खोया है, तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि किस मूवी का ये खूबसूरत सा सॉन्ग था जो कि मैंने अभी आपको गा करके हिंट दिया है कि भाई इसकी मूवी का नाम आपको बताना है कि आखिर किस मूवी का ये सॉन्ग है, किससे ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि आपने सुना ज़रूर है। ये बात तो 110% सच है ना। और आप जब उस मूवी के बारे में सुनेंगे, आप कहेंगे हाँ यार, इस मूवी को भी तो हमने देखा ही देखा है। और कई लोगों ने अंदाज़ा भी लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि इस मूवी से वाबस्ता हैं ज़्यादातर लोग। और चलिए, इतना खूबसूरत गाना अब जब हमने गा दिया है अपनी बेसुरी सी आवाज़ में, तो क्यों ना सुर की आवाज़ में सिंगर से डायरेक्ट ही सुन लिया जाए आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, है ना, है ना, है ना, यस।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
3: देखते

ये सॉन्ग तो हमने पूछा किस मूवी से है। यस, सो ये मैंने आपसे ऑफ कोर्स जाने की कोशिश की भाई, जो मैंने ये सॉन्ग गुनगुनाया है देखते ही देखते दिल खो गया, आखिर ये किस मूवी से है। और मैंने ये भी आपको बताया कि भैया ये मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई मूवी है, यानी लोगों के ज़रिए पसंद की गई मूवी है। और इस गाने की बात करें तो ये गाना बहुत ज़्यादा सुना जाने वाला गानों में से एक है, और इवन आज भी, मतलब कुछ है, बताया ना, ऐसी आवाज़ें और ऐसा अंदाज़ होता है कुछ ऐसे सॉन्ग्स में, ऐसे सुर होते हैं जो उस पल को ख़ास बना देते हैं, या जीवंत जिसे कह सकते हैं कि भाई ऐसा ज़िंदा सा लगने लगता है। और ये फ़िलहाल इसी गाने में नहीं बल्कि कई ऐसे गाने हैं जिसमें होता रहता है, लेकिन उसमें से एक गाना, एक सॉन्ग ये भी है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से ये सॉन्ग इतना ज़बरदस्त बना और इतनी बेहतरीन मूवी का बना। चूँकि मूवी ऐसी रही जिसने काफ़ी लोगों ने देखा और उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया, और इवन इतनी रोमांटिक मूवी कि शायद बहुत ही कम बन पाई है, यानी लोगों को ज़ुबां पे नाम रहता है। और ये लीजिए, देखिए सविता दुबे जी ने बता भी दिया है, तुम बिन, ऑफ कोर्स यू आर राइट। सो ये तुम बिन मूवी का सॉन्ग है और बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है। इसके बारे में अगर हम बताएं तो भाई ये मूवी जो है वो 2001 में रिलीज़ हुई थी, यानी जब ये ऑफ कोर्स 2000 के बाद 2001 आया तब ये रिलीज़ हुई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। सो इसकी जो तारीख थी वो 13 जुलाई 2001 थी, और अनुभव सिन्हा जो है वो बतौर निर्देशक इनकी पहली मूवी थी तुम बिन, जिसमें अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो इसमें फिल्म में संदली सिन्हा, प्रियांशु चटर्जी, हिमांशु मलिक और राकेश बापट यानी राकेश वशिष्ठ मेन कैरेक्टर्स में नज़र आए थे। इन सभी आर्टिस्ट ने फिल्म से ही अपने फिल्म की करियर की शुरुआत भी की थी। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अगर मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस फिल्म को लगभग 2 करोड़ के छोटे बजट में बनाया गया था, और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ 28 लाख रुपये की कमाई की थी, जो इसकी बजट से करीब 4 गुना ज़्यादा थी। सो ये फिल्म लगान और गदर जैसी बड़ी फिल्मों की रिलीज़ के बाद आई थी, फिर भी सुपर हिट साबित हुई थी। जी हाँ, फिल्म की कहानी से ज़्यादा चूँकि इसका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद किया गया, जगजीत सिंह साहब के ज़रिए गाया गया कोई फरियाद, आज भी अगर आप सुनते हैं तो आप कहते हैं कि वाओ व्हाट अ सॉन्ग, मतलब क्या चीज़ थी, क्या बना दिया था। सो इस गाने के लिए अनुभव

सिन्हा को शेर शब्द लिखने में महीनों लग गए थे और उन्होंने लगभग 80 शेर जो है वो अनएक्सेप्ट किए थे। इसके बाद गानों की लंबाई के बारे में अगर बताया जाए तो लगभग 2 घंटे 38 मिनट की इस फिल्म में कुल 57 मिनट के गाने थे। फिल्म के कुल 11 गाने थे। अब ज़रा सोचिए कि 2 घंटे 38 मिनट की मूवी में 57 मिनट सिर्फ गाने ही गाने, यानी टोटल 11 गाने इस मूवी में थे। और 2016 में फिल्म का सीक्वल तुम बिन 2 भी रिलीज़ हुआ, हालांकि यह पहली फिल्म जैसी बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं पा पाया था। और इसके बारे में ऑफ कोर्स जिन लोगों ने मूवी देखा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना ज़्यादा इस मूवी से उनका जुड़ाव है, कितना ज़्यादा इस मूवी से वो अपना लगाव रखते हैं। आई होप कि ये जानकारी शायद आप तक नहीं थी और हमने पहुंचा दिया है। फ़िलहाल अब वक्त है ऐसा ही एक और ख़ूबसूरत सॉन्ग आप तक पहुंचाने का आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान। और अब चलते हैं मीलो कैसे पैदल, क्योंकि अभी वक्त बहुत है इस शो में और इस शो को एक एक स्टेप हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, इसलिए किसी और व्हीकल से नहीं बल्कि पैदल चलने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइज, मतलब मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप अगर हैं तो चलिए मिल करके शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा सफ़र।

मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

एक सवाल हमेशा से शायद आपको आया हो आपके जहन में भी, कि आखिर जब मनुष्यता की बात आई, जब धरती पर इंसान आया, तो फिर आखिर सबसे ज़्यादा मनुष्यता की स्टोरी में निर्णायक घटना क्या थी? क्योंकि इसी में आग की भी खोज हुई, इसी में पहिए का भी आविष्कार हुआ और इसी में भाषा का भी जन्म हुआ। आग, बिन आग के हम खाने की तरफ बढ़ ही नहीं सकते थे उस तरह से, बिन पहिए के हम ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे और बिन भाषा के हम आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते थे। इसमें से अगर एक भी चीज़ पूरी तरह से हटा लिया जाए आज भी अगर हमारे जीवन से, तो हमारा जीवन कैसा होने वाला है? चाहे पहिया निकाल दिया जाए, चाहे आग निकाल लिया जाए, या हमारी भाषा हमसे छीन ली जाए। सोचिए सोचिए और ज़रा सोच करके आप बताइए, क्या इन तीनों में से कोई एक ऐसा था जो सच में मनुष्यता की सबसे निर्णायक घटना थी, या फिर इन तीन के अलावा भी कुछ ऐसा था जो उससे भी बड़ी बात थी? सोचिए सोचिए। और अगर आपको भी ये समझ में आ जाए तो ऑफ कोर्स आप भी हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसी म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार वापस आकर के हम आपसे वापस इसी सवाल पे आने वाले हैं, और उसके बाद क्या लगता है आपका जवाब वो लेने वाले हैं, और दूसरा फिर हम भी ज़रा कुछ कहने वाले हैं कि आखिर मनुष्यता की कहानी में सबसे निर्णायक घटना कौन सी थी।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: तो मेरा सवाल बड़ा ही वाजिब सा था जो अक्सर आता है ख्यालों में। सवाल था कि भाई आखिर क्या थी मनुष्यता की कहानी में सबसे जो निर्णायक घटना थी? क्या वो आग की खोज थी, पहिए का आविष्कार था, या फिर भाषा का जन्म? और मैंने कहा कि भाई हो सकता हो इसमें से एक चीज़ आपको कोई लगती हो, या हो सकता हो कोई भी नहीं, कुछ और ही लगता हो। वैसे मुझे क्या लगता है चलिए बताता हूँ। एंड एक्चुअल में क्या था ये एक अलग नए नज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे। ये आपने कहीं सुना नहीं होगा, बस आप आज समझेंगे कि कुछ नया नजरिया है इसके पीछे।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

अगर मैं कहूँ गौर से देखिए अपना हाथ, इसी हाथ में है मनुष्यता की सबसे निर्णायक घटना। आप कहेंगे बड़ा बेवकूफों वाला सवाल है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, हाथ में कैसे कोई मनुष्यता की, इंसानियत की सबसे बड़ी निर्णायक घटना हो सकती है। चलिए गौर से देखिए जरा अपना हाथ। देखा, एक ही डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो चार उंगलियों को आप देखिए, ये जो चार उंगलियां एक ही डायरेक्शन एक ही दिशा में जाती हैं। अब आप कहेंगे हाँ ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, तो इसमें क्या है। दरअसल बात इन चार उंगलियों के जब आप ऑपोजिट भी देखेंगे, यानी कि आपका अंगूठा जो कि अलग जाता हुआ दिखाई देगा, ये है। यानी एक अंगूठे का चार उंगलियों के ऑपोजिट में खड़ा हो जाना ही मनुष्यता के विकास की सबसे निर्णायक घटना है, सबसे बड़ी घटना। सो ये जो ऑपोजिट जाना है, विपरीत जाना है, ये सामने से आकर के अड़ जाना है, यही वो आर्ट है, यही वो कला है जिसने इंसान को औजार पकड़ना सिखाया। अगर अंगूठा भी उंगलियों की हाँ में हाँ ही मिलाता और जिधर जा रहा है उसी बहुमत दिशा में मुड़ जाता, तो हमारे हाथ से औजार हो या कलम हो या बीज हो, सब कुछ फिसल कर गिर जाता, सब कुछ। यानी ऐसा लगता जैसे नेचर जानता था कि बिना विरोध के थामा नहीं जा सकता है कुछ भी, तो उसने जिसे बिठाया विपक्ष में उसी को बनाया सबसे ताकतवर। जी हाँ, इसीलिए जब भी तुमसे कोई कहे कि सब एक ही दिशा में चले, एक ही सुर में बोलें, झुके एक ही दिशा में, एक ही सारा विचार रखें, तो चुपचाप आप अपना हाथ खोलना जो समझाता है एक सीधी सी बात, बिना इस विरोधी अंगूठे के तुम सच को अपनी मुट्ठी में कैसे थामोगे। यानी जब कोई इस बात को कह रहा होगा कि एक ही तरह से चलो, एक ही तरह से करो, एक ही तरह से सोचो, तो फिर कैसे हो पाएगा ये मुमकिन? हाउ इज इट पॉसिबल? मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए इस बात को समझा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, कि हम इस विरोध को कितना अपने अंदर लेते हैं। बिना विपरीत विचार रखे, बिना विपरीत कोई एक्टिविटी किए हुए चीजें कहां संभल सकती है। हर बार अगर अंगूठे को देखे तो यही आएगा कि अगर उसी डायरेक्शन में होता तो कैसे पकड़ दे। जैसे चार उंगली, अगर पांचवा अंगूठा भी उसी के बगल से निकल के उसी डायरेक्शन में जाता, तो क्या हम सच में कलम से लिख पा रहे होते? क्या हम सच में कोई चीज पकड़ पा रहे होते, उठा पा रहे होते? नहीं, सिर्फ एक अंगूठा, सिर्फ एक अंगूठा, और इसने पूरी मानव सभ्यता ही चेंज कर दी, सब कुछ बदल कर रख दिया। और इससे बड़ी कोई घटना फिलहाल इंसानियत के विकास में तो नहीं हुई है। देखा, मैंने कहा था ना कि आपको एक नया नजरिया मिलने वाला है। सिर्फ इस बात की जानकारी नहीं हुई कि सच में इंसान के विकास में अंगूठे का कितना बड़ा योगदान है, बल्कि इस जहां के चलने में, इस नेचर के पनपने में किस तरह से अलग अलग होना कितना ज्यादा जरूरी है। यानी हर कोई आपकी तरह नहीं सोचने वाला, हर कोई आपकी तरह उठने बैठने वाला नहीं। आपके जो विश्वास हैं, आपके जो बिलीफ हैं, वो आपके हैं, दूसरे के नहीं है। आपका सही आपका है, दूसरे का नहीं, और आपका गलत भी आपका है, दूसरे का नहीं है। तो इसलिए ये जो तरह तरह के विचार हैं, ये ना सिर्फ खूबसूरत बनाते हैं दुनिया को, बल्कि कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जैसा कुछ भी होने के बाद सब कुछ बहुत ही नीरस सा है, सब कुछ बहुत ही बकवास सा है। तो शायद अब जब कोई कहे कि भाई सभी ये कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं, तो बस उसी अंगूठे को देखना है और पंजे को फैलाना है। आपको आपका जवाब आपके जहन में ही मिल जाएगा। आई होप कि इस बात को आप समझ पाए होंगे, है ना। मुझे भी जब ये बात समझ में आई तो मैं हैरान हो गया।
मुझे लगा कितनी बड़ी बात है ये सच में, आज तक इस जानिब मेरा ख्याल ही नहीं गया, ध्यान ही नहीं दिया। और कितनी बड़ी बात है ये कि एक अंगूठा हमको ये बताता है कि इंसानियत की सबसे निर्णायक घटना ये थी। एक अंगूठा हमको बताता है कि विरोध कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक अंगूठा हमको बताता है कि अगर आप विपरीत नहीं हुए तो कैसे चीज़ों को पकड़ेंगे, आप विपरीत नहीं हुए तो दुनिया आगे कैसे चलेगी, क्या सब कुछ एक जैसा होगा, क्या सबके विचार एक जैसे होंगे, क्या हर कोई एक तरह पहनेगा, एक तरह खाएगा, एक तरह सोचेगा। ज़रा सोच के देखिए कितना अजीब होगा। और यही विरोध, यही अलग विचार हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, हमारे इंसानियत के विकास में निर्णायक भूमिका लेकर के आया। बस इतनी सी ही बात है कि भाई आप भी इस बात को अगर समझिए कि जब कोई आपसे कहे कि सब कुछ एक जैसा चल रहा है तुम क्यों नहीं वैसे हो, सो बस इसी अंगूठे को देखिएगा और आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ये वादा है। तो आज की ये बात हमारी आपको कैसी लगी, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि बताइए, लेकिन अगर आप खुद ही इस बात को समझ लेते हैं तो मुझे ज़रूर खुशी होने वाली है कि आप इस बात को समझ पाए हैं अपने लिए। चलिए फिलहाल एक बहुत ही उम्दा सा सॉन्ग आपको सुनाने वाले हैं आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुना में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और इस सॉन्ग को एंजॉय करिए क्योंकि आज जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, और रोमांटिक है तो जाहिर सी बात है भाई इसका फ़ायदा पूरा होना चाहिए, राइट। चले एंजॉय करते हैं मिल करके।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश।
2: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सो लगातार भाई बारिश जारी है, हवाएं अपने ही धुन में आ रही है और साथ ही साथ इन्हीं हवाओं के संग चैट बॉक्स तक आ गए हैं कुछ मैसेजेस। तो चलिए भाई इन मैसेजेस को जरा पढ़ते हैं और देखते हैं कौन आया है और क्या लेकर आया है। तो यस, राहुल है फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान से और लिखते हैं, गुड मॉर्निंग अदनान सर, गाने में रंगीला राजस्थान है कुछ याद आया। वाओ, थैंक यू सो मच। कुछ गाने ऐसे होते हैं भाई कि कुछ एसोसिएटेड आपकी चीज़ें होती हैं जो आपको याद आ जाती हैं। आशु जी लखनऊ से भेजती हैं रेनबो, अभी तो यहाँ पे धूप निकली नहीं, रेनबो खैर चलिए रख लेते हैं एडवांस में। एंड जारा लिखती हैं, गुड मॉर्निंग अदनान सर, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति जी लिखती, बहुत ही बेहतरीन तरीका विचारों को एक्सप्लेन करने का, है ना, मुझे भी लग रहा था। राहुल लिखते हैं, वेल डन अदनान सर, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ये पसंद आया, आशु जी को भी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड हमारी गीता श्रीवास्तव जी भी हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू। क्योंकि मैंने कहा था कि ना, मानव की जो इंसानियत का एक विकास हुआ, एक निर्णायक सबसे ज़्यादा भूमिका किस चीज़ की थी, तो ना आग की इतनी रही, ना भाषा की इतनी रही और ना ही पहिए की। सबसे बड़ी भूमिका जो रही वो शायद इस अंगूठे की रही जिससे हम चीज़ों को पकड़ पाए, नहीं तो ना हम काम कर पाते, ना हम सोच पाते, और जब काम ना होता तो हम इससे आगे बढ़ ही ना पाते, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। सो इस एक विपरीत होने वाले अंगूठे ने एक तो मानव की सभ्यता का विकास कराया सबसे बड़ी बात देकर, और दूसरी बात यह है कि विरोध कितना ज़रूरी है, हर एक चीज़ एक ही तरह की नहीं हो सकती है, ये बताया। एंड यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात है। सो यस, एंजॉय कर रहे हैं आज हम साथ ही साथ आपके शो, और काफ़ी ज़्यादा आप भी रोमांटिक से सॉन्ग सुन सुनकर कह रहे हैं कि वाह क्या बात है भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आबशार हो किसी खूबसूरत से गानों का। आबशार समझे ना, जी हाँ, झरना, बिल्कुल। अगर मसूरी गए होंगे तो केएमटी फॉल, और अगर आप झारखंड गए होंगे तो वहाँ भी बहुत सारे झरने हैं। इवन अगर आप सोनभद्र भी गए होंगे तो भी बहुत सारे झरने हैं। सो ऐसी बहुत सारे खूबसूरत से सॉन्ग जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। और चलिए अब आपको ले चलते हैं खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ, वापस से आते हैं, आने के बाद कुछ और बातें हैं नई जो आप तक पहुंचानी है आरजे अदनान को आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, यही है आपके गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हो गया हूँ, अब बता नहीं सकता क्या क्या दिक्कतें हैं। कुछ इलाज करिए।
2: ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत, आपको आराम की सख्त जरूरत है।
1: हाँ डॉक्टर साहब।
2: तो आपको ये नींद की गोलियां दे रहा हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब।
2: हाँ, अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा।
1: हैं?
2: हाँ, यही बीमारी मुझे भी थी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपकी मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। और यस, इन सारी बातचीत में देखिए कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी आपकी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है और निकल जाती है इतनी खूबसूरती से कितने आगे तक। भाई ये सफ़र जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए एक ऐसी स्टोरी से आपको रूबरू कराते हैं जिनको कहेंगे हम सुपर हीरो। जी हाँ, सो आपको शायद पता हो या ना हो कि कैसे भारत का पहला तलाक हुआ, देश के इतिहास में दो बड़े बदलाव लेकर के आया। सो कहानी है उस रियल सुपर हीरो की जिसने दिखाई बाल विवाह से निकलने की एक नई राह। क्या है पूरी बात, आइए आपको ले चलते हैं इस रियल लाइफ स्टोरी की तरफ जिसके बाद से यस बहुत कुछ चेंज हुआ और आज उसी चेंजेस के भरोसे चीजें चलती है।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले हम डर जाते हैं और हम उसको गलत ही मानते हैं, जैसे तलाक, डाइवोर्स। लगता है यार ये नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफ हम ये देखते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, ये अलगाव की बात है, दूसरी तरफ शायद इस बात को भी समझा जाना चाहिए जहाँ इतने ज़्यादा क्राइम हो जाते हैं ज़बरदस्ती थोपे जाने से। कई सारे ऐसे आंकड़े आते हैं जिसमें दिखाते हैं कि भाई नहीं कर पा रहे थे तो सीधे ख़त्म ही कर दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाओं से आप रूबरू होंगे, तो उससे कहीं बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को, अपने को सेफ रखिए। वो चाहे डाइवोर्स लेकर के हो रहा है या साथ मिलकर के हो रहा है। अल्टीमेट गोल क्या होता है? लाइफ बेहतर होनी चाहिए, लाइफ में सेफ्टी होनी चाहिए, और हर कोई अपनी लाइफ को जाहिर सी बात है प्रायोरिटाइज करता है। ऐसे ही एक अहम मुद्दे पे, यानी जब भारत की पहली तलाक हुई, तो उसमें दो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रखती। जी हाँ, जिसने बाल विवाह से निकलने की एक नई राह दिखाई, एक ऐसी महिला जिन्होंने ये कदम उठाया उस दौर में जब कोई भी केस नहीं था, खुद वो मिसाल बनी और पहला केस उनका हुआ। दरअसल ये बात आज भी नहीं है, आज से 50 साल पुरानी भी नहीं है, आज से 100 साल पुरानी भी नहीं है, 150 साल के आसपास। जी हाँ, बात कर रहे हैं 1878 की, जब 14 साल की

लड़की ने वो हिम्मत दिखाई जो किसी भारतीय महिला ने पहले कभी नहीं की थी। सो बाल विवाह से आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ी, और इनका नाम था रुखमा बाई। जी हाँ, इनका नाम था रुखमा बाई। 11 साल की उम्र में अनजान शख्स से ब्याह दी गई रुखमा बाई, लेकिन इसके बाद भी वो अपने परिवार के साथ रह करके पढ़ाई करती रही। फिर हुआ क्या, 9 साल बाद इनके पति दादाजी भिकाजी ने मांग की कि अब वो उनके साथ रहे। रुखमा बाई ने साफ इनकार कर दिया। वो भी ये उस दौर की बात है जहां एक क्रांतिकारी यह कदम था, जब औरतों के पास कोई अधिकार था ही नहीं। फिर क्या था, गुस्से में दादाजी ने इन्हें कोर्ट में घसीटा और शुरू हुआ मशहूर 1885 का मुकदमा, यानी दादाजी भिकाजी बनाम रुखमा बाई। फिर क्या था, रुखमा बाई ने अपनी दलील दी कि उन्हें इस शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उन्होंने बचपन में कभी सहमति ही नहीं दी थी। उन्होंने अखबारों में लिखा आहिंदू लेडी नाम से कई चौंकाने वाले खुले पत्र भी लिखे। रुखमा बाई ने सुझाव दिया कि शादी की उम्र में कम से कम दुल्हन के लिए 15 साल और दूल्हे के लिए 20 साल होनी चाहिए। इन्होंने लिखा कि कैसे बाल विवाह की बुरी प्रथा जो है वो उनकी जिंदगी की खुशियां छीन ली और उन्हें हर उस चीज से दूर कर दिया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, यानी कि पढ़ाई और मानसिक विकास। जब ब्रिटिश अदालत ने फैसला सुनाया कि रुखमा बाई को अपने पति के साथ रहना होगा वरना 6 महीने की जेल होगी, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने साफ कहा कि मैं इस आदेश को मानने से अच्छा उम्र भर की कैद झेलना पसंद करूंगी। इसके बाद रुखमा बाई ने क्वीन विक्टोरिया से अपनी शादी रद्द करने की अपील की, जिससे बड़ा हंगामा मच गया। भारत और ब्रिटेन के अखबारों में बहस छिड़ गई, क्या महिलाओं को बाल विवाह से इनकार करने का हक होना चाहिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। हुआ ये कि आखिरकार आज़ादी की कीमत 2000 रुपये पड़ी। जी हाँ, इस रकम के बदले दादाजी ने मुकदमे वापस ले लिया और इसी के साथ भारतीय इतिहास का पहला कानूनी तलाक हुआ। रुखमा बाई का तलाक और 10 साल की फूलमणी दासी की मौत, यानी जिसका रेप उसके खुद के 35 साल के पति ने किया था, 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट को लागू कराने में बड़ी भूमिका निभाई। लड़कियों के लिए शादी के लिए सहमति की उम्र बढ़ा करके 12 साल कर दी गई और इस फैसले से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उस वक्त ब्रिटिश कानूनों के तहत आने वाली लगभग 1/4 औरतों को भी राहत मिली। लेकिन ये सफर यही नहीं रुका, यानी रुखमा बाई यहां नहीं रुकी, उन्होंने महिलाओं के जो राइट्स हैं उनके लिए एक और लड़ाई लड़ी, यानी रूढ़िवाद से जूझते हुए भारत की पहली महिला डॉक्टर्स में से एक बनी। सालों तक डॉक्टर रुखमा बाई ने उन महिलाओं का इलाज किया जिन्हें पहले कभी सही स्वास्थ्य सेवा मिली ही नहीं थी। फिर आया 1955 में जब उनका निधन हो गया, यानी उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो उन्होंने अपनी जमीन जायदाद लड़कियों की एजुकेशन के लिए दान कर दी। एक बाल वधू जिसने समाज के नियमों को चुनौती दी और एक ऐसी राह दिखाई जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। सो रुखमा बाई के इस कदम ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। फिर भी बहुत कम लोग इनका नाम जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे नाम लिए हैं, झांसी का रानी, लक्ष्मी बाई, इसके अलावा हमने कई और नाम लिए हैं, कई सारी हम फीमेल्स को जानते हैं, फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, लेकिन एक ऐसी फ्रीडम फाइटर से पहले की एक ऐसी महिला जिसने न जाने उस वक्त की कितने लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाला और आज तक वही नतीजा है कि चलता चला आया। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज भी चीज़ें चल रही हैं। ज़रा सोचिए, हमको लगता है कि हमारा एक डिसीजन क्या ही असर डालने वाला है, लेकिन हमारा एक डिसीजन कई बार आने वाले हमेशा हमेशा लोगों के लिए एक राह बन जाता है, एक ऐसी राह जिस पे वो खुल के ये सांस ले पाए, अपनी बातों को कह पाए और सब कुछ अपने जैसा हो पाए, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आपको रुखमा बाई जो हैं वो याद रहने वाली हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं रुखमा बाई का ये कदम अब आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। ये मामला सिर्फ पहली तलाक का नहीं था बल्कि उस उम्र तक आने का था कि भाई खुद से इंसान अपना डिसीजन ले पाए। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को सही नहीं मानते कि नहीं, मर्जी तो हमारी होनी चाहिए। पर आप खुद ज़रा एक बार सोचिए, आप हर चीज़ अपने लिए अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं और आपको भी कुदरत ने बनाया है, और जब आप भी आए थे तो आपको भी कुछ पता नहीं था, इसी दुनिया में रह करके आपने चीज़ों को जाना और अगला इंसान भी इसी दुनिया में रह करके चीज़ों को जान रहा है। पर ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ बनी बनाई आ रही है वो सही हो, क्योंकि हर बार हमको क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। तभी शायद इतना दिमाग दिया गया है प्रकृति के ज़रिए हमें, और तभी शायद हमको सही गलत का अंदर से फैसला, जो एक फीलिंग आती है, उसको भी दिया गया है। यानी एक तराजू भी है जिस पर हम अपने लिए चीज़ों को रख करके तोलते हैं। इसीलिए शायद हम इतना अलग सोच पाते हैं और इतना अलग कर पाते हैं, है ना? सो मुझे भी लगता है कि शायद इस बात को समझा जाना चाहिए कि जैसे आपको अधिकार है अपने लिए चीज़ों को समझने का, करने का, वैसे ही हर शख्स को है अपने लिए समझने का, करने का। यानी हर वो चीज़ जिससे उसका अपना फ़ायदा हो, उसका अपना भला हो, उसको अपना सुकून मिले और उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं हो रहा है डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं हर वो चीज़ जायज़ है, हर वो चीज़ सही है जहाँ पे इंसान अपना बेहतर कर रहा है और दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, बशर्ते दूसरे का कोई नुकसान ना हो रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नुकसान सच में नहीं होता है, लेकिन ऐसा चूँकि मान लिया जाता है कि नहीं इससे हमको दिक्कत है, तो ये शायद सोचने वाली बात होती है। लेकिन रुखमा बाई, भाई सुपर हीरोज़ की भी सुपर हीरोज़ है। सो सल्यूट करते हैं एक ऐसी महिला की जिसने आज से 150 साल पहले कदम उठाया और आज तक वो कदम बरकरार है। बहुत बड़ी बात है।

0: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: आंटी आंटी, कल मैं बाजार से साबुन की टिकिया लाया था, उससे कमीज धोई तो सिकुड़ के छोटी हो गई।
2: ऐसा करो, तुम वो साबुन ले लो, वो टिकिया जो ला रहो और उसे मल मल के नहा लो।
3: आंटी।
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड यस, वापस से आने के बाद हम चल रहे हैं आपके मैसेजेस की तरफ जो आपने भेजे हैं और जो भी लोग आ गए। इसके अलावा हमारे पास एक कंटेंट भी आया है, सो चलिए भाई रुख करते हैं मैसेजेस और कंटेंट की तरफ। क्या कुछ लिख भेजा है और क्या कुछ आप तक पहुंचा रहा है।
10: Now you're listening, Good Morning Koda with your favorite RJ Khan.

खम्मा गणी महेंद्र दीपन जी, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग नमस्कार, गुड मॉर्निंग नमस्कार, आपको भी स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। एंड यस, इसके अलावा हमारे पास में जो मैसेजेस आए हैं वो रुखमा बाई की, जो हमने रियल लाइफ स्टोरी आपको बताया उस पर हमारी गीता जी लिखती हैं, सही है सर, नहीं निभ रहा है तो आपसी सहमति से अलग हो जाओ, तुम भी खुश दूसरा भी खुश। ऑफ कोर्स अलग होना कई बार अच्छा होता है, मतलब इतना पता नहीं क्यों लोड लेते हैं। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली और सामने वाले को भी लगता है, हमको भी लगता है, तो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये भी एक तरीका ही है चीज़ों को बेहतर करने का। इसके बाद जो है, आपने बताया कि रुखमा बाई जो हैं बहुत साहसी महिला थी, उनकी हिम्मत को दिल से सल्यूट, थैंक यू। हमारी प्रीति जी लिखती हैं, ऐसी दिलेर महिला रुखमा बाई को हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वो सिर्फ महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं, मैंने क्या कहा था, एक थॉट बताया था कि हर इंसान में एक स्त्रीत्व होती है, एक पुरुषत्व होता है, और उनके अंदर का जो साहस दिखाई दिया वो पुरुषत्व का, और जो उन्होंने कदम उठाया वो स्त्रीत्व को देखते हुए। तो सब कुछ हम सभी लोगों के लिए, सच में वो हम सभी की रियल सुपर हीरो हैं। आर के श्रीवास्तव जी हैं गोंडा यूपी से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। महेंद्र लिखते हैं, अदनान सर जी, रुखमा बाई के बारे में आज आपने बताया, सुनकर सच में अच्छा लगा। मुंबई की रहने वाली रुखमा बाई ने बाल विवाह के खिलाफ अपने हक और अपनी जिंदगी के फैसले के लिए आवाज उठाई थी। इतिहास की ऐसी कहानियां सुनकर लगता है बदलाव की शुरुआत कभी कभी एक इंसान की हिम्मत से भी होती है। बेशक घम्मा गड़ी सा। ऑलराइट, थैंक यू। और चलिए, फिलहाल हमारी प्रीति जी ने भी अपना कॉन्टेंट भेजा है। चंचल मन क्या लिखती है, चितवन की छाव में मनचला होता, सबका अपना अपना चंचल मन, गति हवा जैसी सैर करता, सारे दुनिया की फुदक फुदकिए चंचल मतवाला मन, भौतिक विलासता पा लेने पर भी फिसल जाता है ये चंचल मतवाला मन, होता बड़ा नादां भी ये चंचल मन, वर्तमान में रहकर भी चला जाता अतीत के उलझनों में ये बेफिक्रा मन, बड़ी कोशिशों के बाद कैद कर लेती हूँ ये चंचल मतवाला मन, और गहन सोच विचार कर चल देती हूँ सुनहरे भविष्य की उन्नति पथ पर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपकी बातें, थैंक यू सो मच। और आपके विचार जो हैं वो बेहद उम्दा है, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी प्रीति जी, बहुत अच्छा आप लिखते हैं। और उससे ज़्यादा शुक्रिया हमारे उन सुनने वाले फैमिली मेम्बर्स का, ज्ञानस्थली के, जो अपना कीमती वक्त देते हैं सुनते हैं, और इवन उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। फिलहाल आज का मौसम बिल्कुल शिमला जैसा हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो आज की बातचीत हुई है, ये सब कुछ कैसा लगा हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि भाई आपको कैसा लगा और आपने आज कितना एंजॉय किया। तो चलिए, ये तो आप बताने वाले हैं कि आपको कैसा लगा और आपने कितना ज़्यादा एंजॉय किया, पर हाँ, बताना भूलिएगा नहीं। फिलहाल मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, और जाते जाते इस सॉन्ग को एंजॉय करिए, और उसके बाद गाँव की गूंज इंतज़ार कर रहा है आपका।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव के गूंज की अपार सफलता के बाद में हम सभी मिलकर एक फिर से नया एपिसोड ला रहे हैं, जिसके अंदर मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वो श्रीमती किरण पांडे जी की आवाज में, और उनका साथ देने आ रही हैं श्वेता जी, जिमी जी। और आज की हमारी नए एपिसोड की जो थीम है वो है श्रावस्ती। तो आइए हम सभी मिलकर के एक नए एपिसोड की ओर चलते हैं। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे आज सूरज किधर से निकला है, सब हमें लेने आ गए हैं और देखो कितने खुश हैं सब।
3: हाँ समता मैम, हम सब श्रावस्ती घूमने चल रहे हैं।
4: मौसम कितना प्यारा है और बदली छाई हुई है, हवा भी कितनी ठंडी ठंडी चल रही है।
5: हाँ, पिकनिक के लिए बिल्कुल मस्त मौसम है। लो, हम दाल भरे पराठे लाए हैं तुम सब के लिए।
2: मम्मी ने कॉफी भेजी है गर्मा गर्म। भैया बैंगलोर गए थे तो वहाँ से फिल्टर कॉफी लाए हैं।
3: काले बादल हम लोगों के साथ चल रहे हैं। अरे लगता है आज तो पानी जोर से बरसेगा।
4: अरे नहीं श्वेता मैम, दादी ने बचपन में बताया था, काला बादल जी डरवावे और भूरा बादल पानी लावे।
5: ड्राइवर भैया एसी धीरे रखिएगा, श्वेता अभी भी खांस रही है। श्वेता शाल ओढ़ लो।
2: आप बरसात पर गाना सुना दीजिए, श्वेता ठीक हो जाएगी।

0: हम लोग रज्जो बुआ से भी मिलेंगे। अरे किरण दीदी, उनकी दोस्त कहाँ है?
1: रज्जो बुआ कौन है और उनकी कौन दोस्त?
2: रज्जो बुआ, कम्मो बुआ, मुन्नी बुआ और कुक्कू बुआ, ये चार बहुत अच्छी दोस्त हैं।
3: राधा कुंड में जो सफेद घर है ना, उससे थोड़ा आगे इन चारों का घर है।
0: अरे किस्मत तो देखो, चारों की शादी कटरा श्रावस्ती में ही हुई है।
2: जब इनकी शादी तय हुई तो सब लोग गुइयां गाना गाकर खूब चिढ़ाते थे।
1: कौन सा गाना, हमें भी सुनाइए ना।

0: इटिया थोक आ रहा है, कौन कौन शुक्ला के दही बड़े खाएगा?
1: हम भी खाएंगे।
2: बुआ लोगों के लिए भी ले चले क्या? अरे ये तो बहुत टेस्टी है,
3: लौटते समय हम भी पैक करवा लेंगे, बहुत ही यमी है ये।
4: केवल रज्जो बुआ मिलेंगी तुम सबको, कम्मो बुआ बेटे के पास रहती हैं और मुन्नी बुआ फैजाबाद में रहती हैं और कुक्कू बुआ टीचर हैं, तो उनकी पोस्टिंग बहराइच में है।
0: जल्दी गाड़ी में बैठो, बहुत तेज पानी बरसने वाला है।
2: अरे बच गए सब, नहीं तो बहुत ज्यादा भीग जाते सभी लोग। हाँ हाँ भैया सुनो, धीरे धीरे गाड़ी चलाना,
4: बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा है।
3: किरण दीदी और बातें बताइए ना रज्जो बुआ की।
4: कुक्कू बुआ जब शादी हुई तब जॉब कर रही थी, अरे स्कूल टीचर थी तो बहुत बिजी थी,

0: की शादी में कितना मजा आया होगा। मम्मी बताती है कि पहले जब किसी की शादी होती थी तो पूरा मोहल्ला तैयारी करवाता था।
1: सही कह रही हो जिम्मी, मुन्नी बुआ के हस्बैंड थोड़े डार्क थे।
2: अरे DTH, टॉल डार्क एंड हैंडसम, सच में बहुत हैंडसम।
3: तो क्या वह कहती थी कि

0: बिल्कुल सही कहा श्वेता मैम। रज्जो बुआ के बारे में और भी बताइए ना।
1: रज्जो बुआ बिल्कुल टॉम बॉय है। मम्मी दादी चाची सब नाच रहे थे उनकी शादी की तैयारी में।
2: उन्होंने कभी भारी साड़ी गहने कुछ पहने ही नहीं थे, तो कुछ भी पहना दो सब में नखरे करती थी।
3: सब कैसे पहन लेते हैं। अरे आजकल की दुल्हन के लहंगे ही देखो कितने भारी होते हैं।

0: जिम्मी को कितना मजा आ रहा है। उन चारों की शादी में हमको बहुत मजा आया था।
1: हमें थोड़ा थोड़ा याद है, एक महीने के अंदर सबकी शादी हुई थी।
0: एक गाना और था जिसे हम लोग खूब

0: हे भगवान, कितनी तेज पानी बरस रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज हम पूरा श्रावस्ती घूम पाएंगे।
1: कोई बात नहीं, एक दिन फिर आएंगे श्रावस्ती घूमने हम लोग। आज तो चारू बुआ की कहानी सुनकर लग रहा था कि कोई पिक्चर देख रहे हैं।
2: नदिया के पार जैसी ना जिमी। लो, हम लोग पहुंच गए।
3: ये है रज्जो बुआ, फूफा जी, आजी और बाबा। ये बुआ की बेटी है डिम्पी।
2: अरे डिम्पी, तुम श्रावस्ती में रहती हो? हम लोग योगा कैंप में मिले थे।
0: समता मैम, आपने बताया था कि ये लोकगीत बहुत अच्छा गाती हैं।
1: बाबा बता रहे हैं कि भारी बारिश के कारण अंगुलीमार की गुफा, सहेत महेत, थाई टेंपल, ये सब बंद है। तो कम्मो बुआ के बारे में बताइए ना।
3: कम्मो बुआ के ससुराल वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो जो लाल घर देख रही हो ना, वो उन्हीं का है।
2: पहले खाना खा लेते हैं, फिर बताइएगा। बहुत भूख लग रही है।
0: चलो चलो, पहले कम्मो से गाना सुनते हैं।

0: आज तो गाना गाइए, बरसते पानी में मैं तो ना जाऊंगी।
1: वाह भाई वाह।
2: आजकल के बच्चे ना बहुत बदमाश होते जा रहे हैं। अरे कम्मो बुआ की शादी में सबने गाना गाया, सैया बड़े कठोर हैं।

0: याद आया, उनकी बुआ सास बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने बोला था बारात वापस लेकर चलो।
1: अरे फिर क्या हुआ? उन लोगों ने तो बुआ को बहुत परेशान किया होगा।
2: कम्मो बुआ भी कम शैतान नहीं है। के बाद जब उससे गाना सुनाने को कहा गया तो उन्होंने गाया

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 92 60 981 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 098 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आपका अपना बेहद ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्ती लाइव, जो कि आपको देता है इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन। स्वागत स्वागत स्वागत, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम ज्ञानस्ती लाइव में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और भाई कैसे हैं आप सब, कैसे हैं, क्या है आप सभी का हाल चाल? और बारिश का तो मतलब क्या ही कहना, बारिश तो आज ऐसी हो रही है ना कि मैं क्या ही बता दूं। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि जो वो पानी है ना, उसने कह दिया है कि मुझे बरसना है और बस बरसते ही जाना है। कुछ ऐसा ही है क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। सो आप सभी भी अपना काफ़ी ख्याल रखें बारिश में। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो बाइक को बहुत आराम से चलाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि बारिश के टाइम में जो रोड्स होती हैं वो काफ़ी स्लिप करती हैं, इसलिए बाइक बहुत ध्यान से चलाएं, बहुत ध्यान से ट्रैवल करें अगर आप कहीं जा रहे हैं तो। बारिश में अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि बारिश में आपको ज़्यादा ना भीगना पड़े। मैं जानती हूँ कि हमें बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये वाली जो बारिश होती है, यानी कि कभी धीमी होती है कभी तेज़ हो जाती है, ये बारिश हमारी बॉडी को नुकसान भी कर सकती है। ये पानी हमारी बॉडी को, जब बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है तो वो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन करें। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप बारिश को इन्जॉय ना करें, बारिश को इन्जॉय करें, लेकिन छाते के साथ में, रेनकोट के साथ में इन्जॉय करें और थोड़ा सा कम भीगने की कोशिश करें ताकि आपकी तबीयत भी बनी रहे और आप बारिश को इन्जॉय भी कर सकें। भाई मुझे तो पूरा यकीन है कि मतलब कितने ही घरों में अब तक चाय पकौड़े बन भी गए होंगे, आप सभी ने चाय पकौड़े खा लिए होंगे और चाय पकौड़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा इस बारिश को इन्जॉय भी कर लिया होगा। किसी ने तो कागज़ की कश्ती भी अब तक बना के पानी में बहा ली होगी, बच्चों ने बहुत सारी मस्ती की होगी। मतलब आज बारिश की वजह से काफ़ी स्कूल्स भी में भी छुट्टियां की गई हैं। तो भाई बच्चों की देखिए, बचपन से जब भी बारिश इस तरह की तेज़ होती है ना, तो बच्चों के तो मतलब कहीं ना कहीं पूरी लॉटरी हो जाती है, क्योंकि स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक दिन मिल जाता है छुट्टी वाला मौका। तो छुट्टी वाला मौका होगा और आई होप कि आप सभी अपने अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर रहे होंगे। सो करें, फुल ऑन इन्जॉय करें, क्योंकि ये जो मौसम होता है, ये जो बारिश होती है, ये हर बार नहीं मिलती। इट मीन्स कि एक मौसम आता है और उसके बाद ही बारिश होती है, वरना पूरे टाइम तो हम सोचते हैं कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। लेकिन जब भी मौसम हो तो हमें हमेशा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, छोटे छोटे पलों को जीना चाहिए और छोटे छोटे पलों में ढेर सारी खुशियाँ हमें अपने लिए संजोनी भी चाहिए। इसी प्यारी सी बात के साथ फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, उनका भी जो कि हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं और उनका भी जो हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सब चलते हैं और कर लेते हैं कुछ बातें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है हमारा फ्राइडे। ज्ञानस्ली लाइव में हमारा जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे सेक्शन होता है, वो होता है कुछ डिजिटल चीज़ों को लेकर के। यानी कि हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो डिजिटल चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, जो टेक्निक्स हैं, ऐप्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं और कितना ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, कितना ज़्यादा अच्छे होते हैं, कितनी हमारी हेल्प कहीं ना कहीं टेक्निक के थ्रू होती है, यही होता है हमारा दिन। तो आज भी हम टेक्निक को लेकर ही बात करेंगे, कुछ आप सभी को बताएंगे। लेकिन जैसा क्या आपको पता है कि जहाँ हम यूट्यूब चैनल, ऐप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ कहीं ना कहीं अचीव करते हैं और हमारी ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। कहते हैं ना कि अगर आपके पास ये सारी ही चीज़ है, ऐप्स है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो होती है वो एक सिर्फ फ़ोन में आ जाती है और हम उसका इस्तेमाल भी काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इसी सोशल मीडिया पे और इसी ऐप के थ्रू कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ करके किस तरीके से हमारे साथ साइबर क्राइम भी होते हैं। आज हम कुछ आपको साइबर क्राइम के लिए बताएंगे, थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों पर जहां हम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, वहां से हमें थोड़ा सा सावधान होने की भी ज़रूरत होती है। तो आज कुछ बात करेंगे साइबर को ही लेकर के। सबसे पहले जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो आज है सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर के। आपने अक्सर सुना होगा लिसनर्स कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो होते हैं लोगों के, वो हैक हो जाते हैं।
आज हम उसी पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में जो यूथ्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं, जहां अकाउंट हैक हो जाना आम बात होती है। इसलिए आज हम टेक्निक्स की उन पार्ट्स पर बात करेंगे जहां हमें अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। अगर हम अवेयर नहीं हैं तो हमारे साथ कई तरीके के साइबर क्राइम हो सकते हैं, और आजकल हो भी रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी पर बात होगी और हम बताएंगे कि कहां कहां आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, क्या है जिनको लेकर के हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप भी सुनिए और इन्जॉय करिए आपके अपने बेहद ही प्यारे प्रोग्राम को, जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

हैं, और सिर्फ यूथ्स ही नहीं, मुझे लगता है सभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इस सब पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन कई बार अकाउंट्स इस पर हैक होना आम बात बन जाती है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले अपने अकाउंट्स को डिजिटल लॉकर कैसे बनाना है, यानी कि हमेशा अपने अकाउंट को लॉक रखना चाहिए, डिजिटल लॉकर उसको बनाना चाहिए और लॉक रखना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि सभी सोशल मीडिया ऐप्स में टू एफ ए यानी टू फैक्टर को तुरंत ऑन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आप बच जाते हैं, यानी कि आपके अकाउंट को डिजिटल लॉक लग जाता है और जल्दी उसे कोई हैक नहीं कर पाता है। और तीसरी चीज़ आती है कि जब भी आपने जैसे किसी की फ़ोटो शेयर देखा कि आपकी ये फ़ोटो किसने शेयर की है, या किसी ने कोई फ्री गिफ्ट वाउचर, ऐसे लिंक्स पर कभी भी क्लिक ना करें। बिल्कुल सही, कभी भी अनजान किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी गिफ्ट वाउचर के लिए आ रहा है, किसी रिवॉर्ड के लिए आ रहा है, या कोई भी अनजान लिंक, चाहे वो आपके यूट्यूब पे हो, चाहे आपके व्हाट्सएप पे हो, चाहे आपके इंस्टा पे हो, या कहीं भी अगर आपको किसी भी अनजान नंबर से अनजान लिंक आ रही है, तो आपको उसे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे वैसे ही आपका अकाउंट हैक हो जाए। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टा हो, स्नैप हो, कोई भी व्हाट्सएप हो, अगर आपको कोई भी अनजान लिंक आ रही है तो उस पर आप ज़रा भी वो ना करें, क्लिक बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़ आती है कि अनजान कोई भी डिवाइस है उस पर लॉगिन होते ही अलर्ट सेट रखेंगे। बिल्कुल, अगर कोई भी अनजान डिवाइस है या अनजान वेबसाइट है जिस पर कि आप लॉगिन कर रहे हैं, तो अलर्ट सेट रखें। अगर लर्निंग अलर्ट सेट होगा तो वो तुरंत ही आपको बता देगा कि ये कोई ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है। इसलिए अलर्ट जारी रखना बहुत ज़रूरी है। अनजान डिवाइस पर लॉगिन होते हुए अलर्ट ज़रूर सेट करके रखिए, जिससे कि आप अवेयर हो सके कि वो वेबसाइट जो है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अब आते हैं सेकंड पर कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेम खेलते हुए भी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल सबसे ज़्यादा यूथ्स को हम कह लें या सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑनलाइन गेम ज़रूर खेलते हैं, इसलिए आजकल ऑनलाइन गेमिंग सेफ्टी रखना भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी बहुत सारे कहीं ना कहीं फ्रॉड्स यानी कि साइबर क्राइम्स होते हैं। फ्री के चक्कर में आपका बैंक अकाउंट जो होता है वो खाली हो जाता है। फ्री के चक्कर में यानी कि जब आप गेम्स खेलते हैं तो उसमें आपको होता है ना, मुझे अरे तुम्हें फ्री ये गिफ्ट मिलेगा, फ्री वो गिफ्ट मिलेगा, बस आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, आपको फ्री गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जिनकी की वजह से हम क्लिक कर देते हैं और फिर हमारा पूरा अकाउंट जो होता है वो कहीं ना कहीं खाली हो जाता है। इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। यूसी डायमंड्स मोड्स, ये सब कहीं ना कहीं वेबसाइट्स की फर ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं होती हैं। इसलिए आप जब भी गेम खेलें, जब भी जाएं, तो हमेशा ऐसी वेबसाइट्स लें जो ऑथेंटिक हो। आप गेम खेलना गलत नहीं है, ऑनलाइन अगर आप गेम खेलते हैं तो आप खेलिए, लेकिन जब भी करें तो हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर ही जाकर आप हमेशा क्लिक करें। और जब भी डाउनलोड करें कोई भी न्यू गेम, अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे हमेशा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर ही डाउनलोड करना चाहिए। और एक बार गेम को डाउनलोड करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि उस गेम की जो लिंक है जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक बार ये चेक कर लें कि वो गेम ऑथेंटिक हो, वो साइट ऑथेंटिक हो जहाँ से आप उस गेम को खेल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे अभी भी हमने बताया कि अगर बिना ऑथेंटिक वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड करते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है आपको। इसलिए ऑथेंटिक वेबसाइट से करें और हमेशा प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ही करें। और हाँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब की डिटेल्स ऑटो सेव करके कभी भी ना रखें। अगर आप मान लीजिए किसी जैसे पॉइंट्स के लिए आपको बताता है कि आपको कुछ पे करना है, या हमें कई बार होता है जब हम गेमिंग ऐप को खोलते हैं तो उसमें एंटर करने के लिए बताता है कि आपको इतना पे करना है, या कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनमें पे करके ही फिर आगे आप खेल सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। कभी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स को ऑटो सेव करके नहीं रखना चाहिए, ये खतरा हो सकता है। हो सकता है कि कोई आपकी गेमिंग ऐप को हैक करे और उसे आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स
काफ़ी आसानी से मिल जाएँ, क्योंकि आपने उसे ऑटो सेव करके रखा होगा। इसलिए कभी भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की किसी भी डिटेल को ऑटो सेव करके बिल्कुल भी ना रखें, और अगर

सी आप वेबसाइट से गेम खेल रहे हैं तो ऑथेंटिक ही वेबसाइट से गेम खेलिए। और हाँ, साथ ही साथ में जितनी भी सेफ्टी पॉइंट्स हमने आपको बताए वो सेफ्टी पॉइंट्स ज़रूर रखें, यानी कि ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। एक बार उसकी कितना ऑथेंटिक है ये चेक कर लें और ध्यान से खेलें। हमेशा सेफ्टी रखें, ध्यान रखिए लिसनर्स, अगर हम सेफ्टी रखते हैं तो हम हर जगह सेफ होते हैं, बट अगर आप सेफ्टी नहीं रखते हैं तो नुकसान हो सकता है। अभी हमारे पास इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, हम आगे बात करेंगे और भी बताएंगे कि किन किन चीज़ों में आजकल ये साइबर क्राइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए हमें इससे सेफ रहने की और कहीं ना कहीं सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। तो आगे भी इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, इंजॉय कर लेते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टेडियम

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और फिर एक बार आप सभी के का बहुत ही प्यारा शो लेकर के हाजिर हूं। तो आइए अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं वाकई काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि यूज़फुल है, और इसके बारे में हमारा अवेयर होना ज़रूरी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। जब भी हम कभी किसी कैफ़े में जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, या मॉल में जाते हैं, या कहीं भी आप जैसे आजकल तो लाइब्रेरीज़ में भी होने लगे हैं कि मिलने वाले जो फ्री वाईफाई कनेक्शंस होते हैं, हम तुरंत उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। फ्री वाईफाई के ज़रिए हम जो है, अगर हमें मिलता है कि यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, जैसे बहुत सारे ऐसे कैफ़े हैं, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, जहाँ पे कि फ्री वाईफाई होता है, हम तुरंत उससे कनेक्ट करते हैं और डेटा मतलब उसको यूज़ करने लगते हैं, फ्री वाईफाई को। लेकिन फ्री वाईफाई से डेटा चोरी भी हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है कि फ्री वाईफाई को यूज़ करते हुए हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है कि अभी कभी भी अपने बैंकिंग ऐप्स को नहीं चलाना चाहिए, यानी कि ओपन या फ्री वाईफाई पर कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए और ना ही कोई पासवर्ड को चेंज करना चाहिए। अगर आपको पब्लिक वाईफाई का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो तो आप VPN का यूज़ कर सकते हैं। VPN एक सुरक्षित नेटवर्क होता है, ऐप होता है जिसको आप यूज़ करें। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो पब्लिक वाईफाई यूज़ करने के बावजूद भी आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि ओपन या फ्री वाईफाई कनेक्शन पे हमें कभी भी ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करने चाहिए, अपने पासवर्ड नहीं चेंज करने चाहिए, बैंक डिटेल्स को ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें अपने बैंक डिटेल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बैंकिंग ऐप्स को नहीं ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आपको VPN यूज़ करना चाहिए, ये सेफ़ होता है। अगर VPN ऐप को आप यूज़ करेंगे तो उससे पब्लिक वाईफाई अगर आप बहुत ज़रूरी है और यूज़ भी कर रहे हैं, तो इस ऐप को अगर आप डाउनलोड किए रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे यूज़ करते हुए भी पब्लिक वाईफाई को। आइए अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट पर कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग सभी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग आसान भी होती है और फटाफट कहीं ना कहीं बैठे बैठे आसानी से हमें चीज़ें घर पर मिल भी जाती हैं। और कहीं ना कहीं हद तक ये सही भी है कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें चीज़ें जल्दी भी मिल जाती हैं, आसान तरीके से भी मिल जाती हैं। और अगर मान लीजिए कि आप जैसे आप शॉप्स वगैरह पे जाने की कंडीशन में नहीं हैं तो हमें घर में मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम स्टोर या अनजान किसी भी वेबसाइट पर 90% ऑफ़र देकर बिना सोचे समझे शॉपिंग कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी अनजान वेबसाइट से कभी भी शॉपिंग ना करें। अगर उस पर बहुत ज़्यादा ऑफ़र है, जैसे कि मान लीजिए मेगा ऑफ़र है, 90% ऑफ है, 99% ऑफ है, और बहुत कम पैसों में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो ऐसे किसी भी ऑफ़र को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। वेबसाइट को आप हमेशा चेक कर लें, हमेशा शुरुआत में जब लॉगिन आप लॉक आइकॉन देख रहे हैं तो उसे ज़रूर देखें। हमेशा URL की शुरुआत में HTTPS लॉक आइकॉन ज़रूर देखें। वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लें कि वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक वेबसाइट हो। अगर वो वेबसाइट ऑथेंटिक है तो हमेशा URL की शुरुआत में HTTPS लॉक आइकॉन ज़रूर होगा। HTTPS लॉक आइकॉन का मतलब ही होता है कि वो वेबसाइट पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, यानी कि फेक वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमेशा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, जिस भी वेबसाइट से शॉपिंग करें, उसकी इस चीज़ को ज़रूर देखें कि उसमें HTTPS लॉक आइकॉन है या नहीं है। यही उसकी कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी को बताता है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। हमेशा इस चीज़ को देख करके ही शॉपिंग करें। और जब भी आप अनजान या नए ऑनलाइन स्टोर से सामान खरीद रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं तो हमेशा कैश ऑन रखें, कैश ऑन डिलीवरी को ही चुनें। अगर मान लीजिए कभी आप किसी अनजान लिंक या अनजान ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग भी कर रहे हैं तो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी रखिए कि जब हमारा सामान आएगा, डिलीवरी होगी, तभी हम आपको कैश में पेमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि ना आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऐप के थ्रू पेमेंट करेंगे और ना ही पैसे जाने का खतरा होगा या अकाउंट हैक होने का खतरा होगा।
कई बार जब हम UPI यूज़ करते हैं या ऑनलाइन QR कोड्स वगैरह यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, यानी कैश पेमेंट नहीं करते, जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तभी इस तरीके का ख़तरा ज़्यादा होता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग पे आप डाल रहे हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स ऐप्स वगैरह QR कोड से आपका अकाउंट हैक किया जा सके। लेकिन अगर आप कैश पेमेंट करेंगे यानी कि कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को देखते हुए और साथ ही साथ जब भी करें अनजान किसी से भी तो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करें और ध्यान रखें कि आप किसी भी कोई रिवॉर्ड्स के चक्कर में या किसी भी ऐसे उसके चक्कर में ना फंसें कि मान लीजिए बहुत पब्लिसिटी हो रही है कि अरे वहाँ तो बहुत सस्ते दामों में उस वेबसाइट पे सामान मिलता है और सामान भी बहुत अच्छा है और पता है इतने कम पैसों में इतना सामान दिया हमें और बहुत डिस्काउंट भी मिला और मुझे तो वहाँ से रिवॉर्ड्स कैश रिवॉर्ड भी मिला, तो ऐसी किसी भी ऐप की चक्कर में ना पड़ें, उसमें ना अट्रैक्ट हों, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये सारी ही चीज़ें दिखा करके और फिर आपके साथ साइबर क्राइम करने की कोशिश की जाए। इसलिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा अवेयर रहना भी। आइए लिसनर्स, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूँ गए और यूँ आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानसली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: अपना शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कुछ ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं जो हमें रखने चाहिए, जिनसे कि हम जो भी ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इनसे हमें नुकसान ना हो। आइए अब बात कर लेते हैं कि हम हमेशा इंटरनेट पर अपनी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे कि लोकेशन, स्कूल का नाम, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम, घर का एड्रेस, सब कुछ शेयर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि इंटरनेट पर पोस्ट की हुई कोई भी जो डिटेल है वो अगर हम डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। लेकिन आप याद रखिए कि इंटरनेट पर पोस्ट की हुई कोई भी डिटेल्स कभी पूरी तरीके से डिलीट नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा ओवर शेयरिंग से बचना चाहिए। ओवर शेयरिंग से बचने का मतलब है कि रियल टाइम में अपनी लाइफ लोकेशन स्टोरी पोस्ट ना करें, इससे स्कॉटिंग का खतरा बढ़ता है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी ऑनलाइन, जैसे अगर ऑनलाइन कोई भी चीज़ है तो हमेशा साइबर बुलिंग के ख़िलाफ़ हमें होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन आपको कोई परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर साइबर क्राइम पोर्टल पर तुरंत इसकी रिपोर्ट करें, क्योंकि साइबर बुलिंग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा बनकर इस समय उभरा हुआ है। इसलिए और साथ ही साथ डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को कभी भी अपनी डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो वो कभी पूरी तरह डिलीट नहीं होती। इसलिए किसी भी अपनी डिटेल को सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले सोचें, अपनी रियल लाइफ लोकेशन का कभी भी शेयर ना करें, इससे स्टॉकिंग का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि साइबर बुलिंग के खिलाफ हमेशा कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुरंत आप उसे ब्लॉक करें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर साइबर क्राइम पोर्टल पर ज़रूर से उसकी कंप्लेंट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार साइबर बुलिंग जो होती है वो इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हम कंप्लेंट नहीं करते। इसलिए अगर ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं तो आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों पर कि हमेशा UPI पिन या OTP कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हमें लगता है कि कोई भी आपके जैसे बैंक अधिकारी हैं या कोई भी व्यक्ति फ़ोन या मैसेज पर अगर आपसे आपका OTP, UPI पिन या ATM कार्ड का सीक्रेट नंबर मांगे तो कभी न दें। याद रखें कि जो भी चीज़ रिसीव करने के लिए पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। पैसे रिसीव करने के लिए आपको कभी भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती और बैंक कभी भी कॉल करके अपने किसी भी कस्टमर का UPI पिन या OTP उसे शेयर करने के लिए नहीं कहता। अनजान मैसेजेस से भी हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपको डेली अलग अलग नंबरों से अनजान मैसेज आ रहे हैं, वो आपका UPI पिन या OTP मांग रहे हैं, तो बिल्कुल भी अपना UPI पिन, OTP या किसी भी तरह की बैंकिंग डिटेल्स को शेयर कर बिल्कुल भी ना करें। डेबिट ATM क्रेडिट कार्ड का सीक्रेट नंबर कुछ भी नहीं। सेकेंड आता है कि बैंक स्टेटमेंट्स पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को नियमित देखते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी अनजान लेन देन देखने पर बैंक को तुरंत ही इन्फॉर्म करें और बैंक से हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें। और दूसरी चीज़ होती है कि कई बार ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि आपका बिजली कनेक्शन जो है वो आपको आता है कि आपकी बिजली कनेक्शन के लिए भारी डिस्काउंट। अनजान लिंक्स ऐसे बहुत सारे आते हैं, डिस्काउंट मिलेगा, या कई बार आता है कि आपको ये अरे आपने ये जीत लिया है, आपको ये रिवॉर्ड मिला है, आपको आपका जैकपॉट लगा है, आपको ये रिवॉर्ड मिला है, आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं, आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं, ऐसी कई सारी लिंक्स आती हैं। उनके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रहने की ज़रूरत है कि ऐसे किसी भी लिंक पर आप कभी भी क्लिक ना करें और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम रिवॉर्ड्स के जैकपॉट्स के बारे में सुनकर हमेशा इन पर फंस जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमें ही चीज़ें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे कि हमें ही नुकसान होता है। और याद रखिए कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हुई है, यानी कि कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आपको तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना है। भारत सरकार हमेशा राष्ट्रीय साइबर को लेकर के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अगर आप कॉल करेंगे तो तुरंत ही आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। और दूसरी चीज़ होती है कि हमेशा जब भी कुछ भी ऐसी आपको लगे कि कोई लिंक्स आपको लगातार आ रही हैं, या फिर ऐसा लगे कि आपको कोई कॉल करके आपकी डिटेल्स को कॉन्टिन्यूसली पूछ रहा है, तो भी एक बार 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट ज़रूर करें। इससे क्या होगा, इससे वो पहले से कहीं ना कहीं अवेयर रहें और हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें साइबर सेल के, क्योंकि जब ऐसे फ्रॉड्स होने वाले होते हैं या हमें लगता है कि कोई बार बार हमें परेशान कर रहा है और कंटिन्यूअसली कर रहा है, तो उसके लिए हमें साइबर सेल को रिपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। याद रखिए लिसनर्स, हमेशा अगर आप अवेयर रहेंगे, सही टाइम पर रिपोर्ट करेंगे, तो जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा साइबर सेल की तरफ से। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ होता है और हम इसमें रहते हैं कि अरे लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, लोग क्या समझेंगे कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, और लोग क्या कहेंगे, नहीं मुझे कंप्लेन ही नहीं करनी। बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे मिथ्य होते हैं जिनकी वजह से हम कंप्लेन ही नहीं करते, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ गलती से भी हो रहा है, तो आप तुरंत ही साइबर सेल की हेल्पलाइन पर जाएं, वहां कंप्लेन करें और अपनी शिकायत ज़रूर से दर्ज कराएं, और हमेशा और जो भी पॉइंट्स हैं उन पर अवेयर रहने की कोशिश करें, सेफ्टी रखें, क्योंकि सेफ्टी हमेशा कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए हमेशा हमें सेफ्टी रखनी चाहिए और अपनी चीज़ों के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। बस यू गए और यू आए इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए आप भी सुने और इन्जॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: अपना बेहद ही प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्ती लाइव, जो आपको देता है एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमने आपको जो भी पॉइंट्स बताए और जो भी टॉपिक्स बताए, उन्हें बताने का आज का जो हमारा मोटिव था वो यही था कि जैसे हम अपने घर की सुरक्षा करने के लिए डोर्स पे लॉक लगाते हैं, ठीक वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी सावधानी ही हमारी असली सुरक्षा की चाबी होती है। इसलिए याद रखिए, आपका एक गलत क्लिक आपकी सालों की मेहनत और सुकून छीन सकता है और आपका एक सही फैसला आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकता है। साइबर सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सजग रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। डिजिटल कहीं ना कहीं चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि हम डिजिटल और आगे बढ़ें, टेक्निक्स को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, बेहतर बने। बिल्कुल, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर हम बहुत बेहतर बन सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को पा सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जोड़कर हम एक घर बनाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर बनाती है, ठीक उसी तरह हम अपने सालों की मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर बहुत कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं जो आपकी सालों की मेहनत और कहीं ना कहीं अथक परिश्रम से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी सेफ्टी भी करें। इसलिए जब भी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप जिन जो पॉइंट्स मैंने बताए उन पर ध्यान दीजिए और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले या डिजिटली कोई भी पेमेंट करने से पहले या किसी भी शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाने से पहले इन पॉइंट्स का ध्यान रखें और पूरी सेफ्टी करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इसी प्यारे से मैसेज के साथ आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रेडियो ज्ञानस्ली को सुनते रहिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों। अब आपसे मिलूंगी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि सन सहेली में। तब तक के लिए बाय।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की दूर करेंगे बहुत से भ्रम सीखेंगे सिखाएंगे पैसे भी अपने बचाएंगे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार रहेंगे रोग मुक्त जीवन रहेगा खुशहाल अब खत्म हुआ इंतजार आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा टीबी को हराएं जीवन को जिताएं 89.6 FM ये है गोडा शहर की धड़कन
1: नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका आरजे अदनान श्रोताओं कहते हैं ना कि घर की असली खुशी तभी होती है यानी घर की असली खुशहाली तब आती है जब बच्चे स्वस्थ और खुश हों लेकिन कई बार पोषण की कमी या गलत आहार की वजह से छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और कुपोषण सिर्फ बच्चे के शरीर को कमजोर नहीं करता बल्कि उसके दिमाग के विकास पर भी बहुत असर डालता है तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे समय रहते पहचाना जा सकता है और इसे दूर करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए साथ ही जानेंगे कि बच्चे के सही पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी टीकन भाभी क्योंकि भाभी हमेशा अपने अनुभव से सेहत के जरूरी मुद्दों को समझाती हैं भाभी बच्चों में हम कुपोषण यानी पोषण की कमी आखिर कैसे पहचान सकते हैं और इसे समझना जरूरी आखिर क्यों है
3: देखिए बच्चों में कुपोषण जल्दी पकड़ में आ जाए इसके लिए कुछ संकेत साफ दिखते हैं पहला संकेत है बच्चे का वजन अगर बच्चा उम्र के हिसाब से हल्का है या वजन बढ़ नहीं रहा है तो ये पहली चेतावनी है और दूसरा है सुस्ती कुपोषित बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हमेशा सुस्त रहते हैं तीसरा लक्षण है बाल और त्वचा कुपोषित बच्चों के बाल कमजोर रूखे या झड़ते हैं त्वचा भी रूखी सी दिखती है चौथा है भूख नहीं लगना बच्चे ठीक से नहीं खाते तो ये भी कुपोषण की तरफ इशारा है और पांचवा है बीमारियां कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार बार बुखार दस्त या संक्रमण के शिकार होते हैं
1: अच्छा तो भाभी हमने बच्चों में कुपोषण के लक्षण तो जान लिए अब जरा इसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी बताइए
3: देखिए कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं बल्कि सही पोषण और देखभाल की कमी से भी होता है इसे दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध दे 6 महीने के बाद भी दूध देना जारी रखें। माँ का दूध बच्चे को ताकत और बीमारियों से बचाता है 6 महीने के बाद बच्चे को खिचड़ी दलिया सब्जी और फलों का गोदा देना शुरू करें। थोड़ा बड़ा होने पर उसे दाल सब्जी फल अनाज और दूध दही जैसे पोषक खाना दें। साफ सफाई भी जरूरी है खाने से पहले और बाद में हाथ धोना साफ बर्तन में खाना देना और बच्चे के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना बहुत जरूरी है समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है डॉक्टर से बच्चों को नियमित दिखाना और जरूरी टीके लगवाना बीमारियों से बचाता है परिवार की मदद भी बच्चे की परवरिश में खासा सहायक है परिवार को खाना बनाने दूध पिलाने और बच्चे का ध्यान रखने में माँ की मदद करनी चाहिए
1: तो भाभी क्या बच्चे के दिमागी विकास में भी पोषण का असर होता है?
3: हाँ, पैदा होने के बाद बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। दिमाग के सही विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है। उचित पोषण नहीं मिलने से बच्चे के सीखने का स्तर कमजोर हो सकता है। माँ का दूध इस मामले में सबसे खास है। जन्म के पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व, फैटी एसिड और एंटीबॉडीज देता है। ये दिमाग को सही तरह से विकसित करने में मदद करता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार बच्चे के दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। दाल, खिचड़ी, सब्जी और फल जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। साथ ही सीखने, सोचने और याद रखने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। मतलब जितना बच्चा पौष्टिक आहार पाएगा, उसका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होगा।
1: तो भाभी, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये नुकसान कर सकता है?
3: जंक फूड बहुत ही ज्यादा तला भुना, मीठा या मसालेदार होता है, जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर या फ्राइज। ये बिल्कुल पौष्टिक नहीं होते। इस प्रकार बच्चे को जंक फूड से पोषक तत्व नहीं मिलता और उनमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी हो जाती है। जंक फूड से बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है। मोटापे से हड्डियां कमजोर और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। जंक फूड दांतों के लिए भी खराब है। ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ सकते हैं और मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। जंक फूड जल्दी ऊर्जा देते हैं, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है, जिससे बच्चा सुस्त और चिड़चिड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, लगातार जंक फूड खाने से बच्चे का स्वाद बदल सकता है। फिर वो अनाज, दाल, सब्जी और फल खाने से मना कर देता है, जो उसके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। जंक फूड स्वादिष्ट तो है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पौष्टिक खाना ही मिले, ताकि वो स्वस्थ हो।
1: भाभी, एक और जरूरी बात बताइए कि परिवार बच्चों और माँ के पोषण में कैसे मदद कर सकता है?
3: देखिए, बच्चे और माँ का पोषण पूरे परिवार के सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्य कई तरह से मदद कर सकते हैं। अगर घर में दादी, दादा, पापा खाना बनाने में थोड़ा हाथ बटाएं, तो माँ को पौष्टिक खाना खाने और बच्चे को खिलाने का समय मिलता है। परिवार देख सकता है कि बच्चे और माँ को रोजाना दाल, सब्जी, फल, दूध, दही और अनाज मिल रहा है या नहीं। बच्चे को खाना और माँ को आराम दिलाना परिवार का काम है। साथ ही घर की साफ सफाई और हाथ धोना, ये सब बच्चे और माँ की सेहत को मजबूत बनाता है।
1: तो भाभी, मुझे ये बताइए कि गर्भवती महिला के खाने में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
3: गर्भवती माँ का खाना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी होता है। इसलिए खाना पूरा और पोषक होना चाहिए। उसे रोज दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध, दही जैसी चीजें खानी चाहिए। अगर घर में अंडा या मछली खाया जाता हो तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा भी जरूरी है। ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। साफ पानी पीना भी जरूरी है।
1: भाभी, अक्सर डॉक्टर्स गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने को कहते हैं। ये गोलियां खाना क्या जरूरी होता है?
3: जब महिला गर्भवती होती है तो उसके खून की जरूरत बढ़ जाती है। बच्चा माँ के खून से ही पलता है। अगर खून की कमी या एनीमिया हो जाए तो माँ को कमजोरी, थकान और चक्कर आने लगता है। ये कमी बच्चा भी झेलता है। उसका वजन कम हो जाता है, समय से पहले जन्म हो सकता है और कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं। आयरन खून बनाने में मदद करता है और फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से विकसित करता है।
1: तो भाभी, मेरा एक और सवाल है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके खाने में क्या खास चीजें होनी चाहिए?
3: माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है। उसका स्वाद और गुड़ भी माँ के खाने पर निर्भर करता है। इसलिए माँ को संतुलित और पोषक आहार लेना बहुत जरूरी है। रोज माँ को दाल, हरी सब्जियाँ, फल, दूध दही जरूर खाना चाहिए। गेहूँ, चावल, बाजरा जैसे मोटे अनाज भी ताकत देते हैं।
1: तो भाभी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हरी सब्जियाँ और दूध दही आखिर क्यों जरूरी होता है?
3: हरी सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, गाजर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि उसके शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर भी देती है। इससे माँ की सेहत ठीक रहती है और बच्चा भी मजबूत पैदा होता है। दूध और दही हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी कैल्शियम देते हैं, साथ ही प्रोटीन भी मिलता है जिससे माँ की ताकत बनी रहती है और दूध की मात्रा भी अच्छी रहती है।
1: भाभी, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ अगर मांस, मछली या अंडा खाए तो क्या फायदा होता है? अगर घर में मांसाहार बिल्कुल ना खाया जाए तो फिर उसके लिए एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है?
3: माँ बनने वाली और दूध पिलाने वाली महिला के लिए सबसे बड़ी जरूरत पोषण की होती है। अगर घर में मांसाहार होता है और माँ उसे खाती है तो उसे फायदा मिलता है। मांस, मछली और अंडे में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से माँ के शरीर में ताकत आती है, बच्चा ठीक से बढ़ता है और दोनों की सेहत बनी रहती है। इसके अलावा इन चीजों में आयरन भी खूब होता है जिससे खून की कमी नहीं होती है। गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाते समय खून की कमी आम बात है। ऐसे में मांसाहार उस कमी को जल्दी पूरा कर देता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है। ये माँ और बच्चे के दिमाग और नसों के लिए जरूरी है। कई परिवार पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। अगर माँ शाकाहारी है तो भी उसे भरपूर ताकत और सेहत मिल सकता है। दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और सूखे मेवे, ये सब खाने से शरीर को वही ताकत मिलती है। हरी सब्जियों से आयरन की कमी पूरी होती है, दाल और पनीर से प्रोटीन की कमी पूरी होती है और दूध दही से हड्डियाँ मजबूत रहती है। अगर ये सब रोजाना खाने में शामिल हो तो माँ को किसी तरह की कमी नहीं होगी और बच्चा भी अच्छी तरह बढ़ेगा।
1: सो दोस्तों, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हमने जाना कि अगर छोटे बच्चे को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो धीरे धीरे कुपोषण की समस्या हो जाती है। कुपोषण का मतलब कि बच्चे के शरीर को जितनी ताकत चाहिए उतनी उसे नहीं मिल रही। इससे उसका वजन कम रह जाता है, अक्सर बीमार पड़ने लगता है और पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह सकता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो कुपोषण को रोका जा सकता है। बस जरूरी है कि बच्चे को सही और संतुलित खाना मिले, समय पर टीकाकरण हो और साफ सफाई बनी रहे। अगर ये बातें अपनाई जाए तो बच्चा स्वस्थ और मजबूत होगा। छोटे बच्चे सहित गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ का पोषण बहुत जरूरी है। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और वो सही तरह से बढ़ेगा। दाल, सब्जियाँ, फल, दूध दही जैसी चीजें माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो याद रखिएगा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी घर परिवार में असली खुशहाली आएगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक और अहम जानकारी के साथ। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे
4: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का
4: साफ सफाई और स्वच्छता का
1: पालन करेंगे
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
1: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
2: रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशी

0: ना में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोना में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहनजी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा वाला प्रोग्राम सुन सहेली विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका के साथ। और हो चुकी है सुन सहेली की शुरुआत इस रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसात के साथ, क्योंकि भाई बरसात जो हो रही है ना लिसनर्स, वो तो इतनी प्यारी हो रही है कि मन तो यही करता है कि या तो हम इस बारिश में भीगें या फिर इस बारिश के साथ अच्छे अच्छे और गर्मा गर्म भुट्टे खाएं। मतलब जो भी इस वक्त बाहर होंगे ना और कहीं भी यानी कि अपने काम के लिए जा रहे होंगे या फिर यूं ही अगर कुछ लोगों को होता है ना कि बारिश में हमें बस यूं ही भीगना है, मस्ती कर रहे होंगे या फिर बस यूं ही सोच रहे होंगे कि गर्मा गर्म भुट्टे मिल जाते तो क्या ही सोचना था। वैसे स्टूडियो में बैठे बैठे मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगर बारिश में भीगते भीगते भीगते हुए गर्मा गर्म भुट्टे मिल जाएँ तो फिर बारिश का क्या ही कहना, मतलब मज़ा दोगुना नहीं, मुझे तो लगता है 3 गुना 4 गुना हो जाता है। लेकिन क्या करें, हमें तो अभी भुट्टे मिलने से रहे, लेकिन आप सभी भाई आपके अपने शो में सुनिए, इंजॉय करिए और भुट्टों की बातों के साथ ही हम इंजॉय कर लेते हैं। कोई बात नहीं, खा फिर कभी लेंगे भुट्टे। लेकिन आप सभी अगर खा सकते हैं ना, मतलब जैसे कि अगर आप सभी के घरों में मौजूद हों गर्मा गर्म भुट्टे, तो आप सभी ज़रूर खाएं और इन्जॉय करें। तो आइए लिसनर्स, करते हैं सुन सहेली की शुरुआत। आप सभी को आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका की तरफ से शुभ दोपहरिया। फटाफट से आएँ, अपना हाल चाल बताएँ और इसी के साथ आप सभी को बताएं कि आज का हमारा जो दिन है वो होता है हमारा फ्राइडे, और फ्राइडे सेक्शन हमारा होता है रिश्तों की महक के साथ खुद को और बेहतर के साथ बेहतरीन बनाने का। यानी कि आज के दिन हम बात करते हैं सबसे पहले रिश्तों पर और फिर बात करते हैं कि कैसे हम खुद को सुंदर बना सकते हैं। देखिए, सुंदर बनना, सुंदर देखना, मेकअप करना, न्यू रेमेडीज यूज़ करना, ये सब तो महिलाओं का कहीं ना जन्मसिद्ध अधिकार होता है। मतलब हमारी जो भी सहेलियां हैं, आशु जी, प्रीति जी, गीता जी, इन सभी के लिए, अनुष्का जी, नव्या, आप लोगों का तो भाई अधिकार है कि हम भैया पार्लर ना जाएं, थ्रेडिंग ना कराएं, होम टिप्स ना यूज़ करें, और लड़कियां अगर मेकअप ना करें तो फिर क्या ही मज़े, अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए हर दिन हम आपको और बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाते हैं और बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्यूटी टिप्स भी बताते हैं, और वही बताते हैं जिन्हें हम खुद यूज़ कर चुके होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पहले विश्वास करें और फिर इस्तेमाल करें। तो वैसे ही हम भी आपको बताते हैं वही चीज़ें जो हमने खुद पर पहले अप्लाई कर ली होती है। तो भाई शुभ दोपहरिया भी हो चुकी है और शुभ दोपहरिया के साथ प्यारी प्यारी बरसात भी हो रही है, प्यारी प्यारी बरसात के साथ रिश्तों की महक से सुगंध यहाँ तक आ रही है। तो आइए रिश्तों की इस महक को, इस प्यारी से सुगंध को आप तक भी पहुँचाते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में प्यारी सी कविता के माध्यम से। प्यारी सी कविता के माध्यम से आइए पहुंचाते हैं जो कि है आज रिश्तों पर। आई होप कि आप सभी को ये पोयम बहुत ही अच्छी लगेगी। रिश्ते होते हैं वो धागे जो दिलों को पास लाते हैं, रिश्ते होते हैं वो धागे जो दिलों को पास लाते हैं, सुख दुख के हर मौसम में ये साथ निभाते हैं। बिना कहे जो बात समझ ले वही तो सच्चा नाता है, बिना कहे जो बात समझ ले वही तो सच्चा नाता है, इस दुनिया की भीड़ में अपनों का साया ही सुकून दिलाता है। खट्टी मीठी टकरारें तो कभी प्यार की बौछार है, खट्टी मीठी टकरारें तो कभी प्यार की बौछार है, रिश्ते ही तो हैं उस सुनी जिंदगी में जो असली नज़ारे होते हैं। जरा सी समझदारी से ये सदियों तक महकते रहते हैं, जरा सी समझदारी से ये सदियों तक महकते रहते हैं, वक्त की तेज आंधियों में भी चट्टान बनकर डटे रहते हैं। खून के रिश्ते ही नहीं कुछ एहसासों के भी बंधन होते हैं, खून के रिश्ते ही नहीं कुछ एहसासों के भी बंधन होते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हर पल हमारे साथ रोते हंसते हैं। विश्वास की नाजुक डोर पर टिकी है, विश्वास के नाजुक डोर पर टिकी है इसकी हर बुनियाद, संभाल कर रखो इन्हें, उन्हें मिलती है खुशियों की सौगात। दौड़ती भागती जिंदगी में, दौड़ती भागती जिंदगी में अपनों का हाथ थोड़ा कस कर पकड़ना, दौड़ती भागती जिंदगी में अपनों का हाथ थोड़ा कस कर पकड़ना, शिकवे शिकायतें भुलाकर बस प्यार के घूंट पीना। क्योंकि धन दौलत तो आनी जानी है, क्योंकि धन दौलत तो आनी जानी है इस जहां में यारों, पर छूटे हुए रिश्ते फिर लौट कर कभी नहीं आते, पर छूटे हुए रिश्ते लौट कर फिर कभी नहीं आते। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। बिल्कुल, रिश्तों की खुशबू हमेशा महकती रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों को प्यार और सम्मान से यूं ही सींचते रहें। लेकिन आप सभी कुछ मिस कर रहे हैं ना, मुझे पता है आप सभी क्या मिस कर रहे हैं। आप सभी मिस कर रहे हैं आपकी अपनी आरजे समता जी को। भाई उन्हें तो मैं भी मिस कर रही हूँ। अभी अगर मैम होती ना और मैं कहती कि मैम रिश्तों पे आज आप पोइट्री सुनाइए, तो वो पोइट्री सुनाने से पहले कहती अंशिका जी आप रास्ता नहीं देंगी, तो मैं कहती हाँ हाँ मैम मैं रास्ता दूंगी ना आपको। और फिर वो कहती कि तुमने फिर सिचुएशन देखकर पोएट्री बना ली, तुम तुरंत सिचुएशन देखकर पोएट्री बनाती हो। तो मिस करना तो बनता है भाई, क्योंकि रिश्तों का दिन है आज, रिश्तों की महक है। और आप तो जानती ही हैं कि मैम का और मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है कि वो है तो हम भी दोनों जब साथ होते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाते हैं जिनकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, इससे पता ही क्या होता है लिसनर्स, इसका एक फ़ायदा भी होता है। जब आप अपने अपनों से थोड़ा सा दूर होते हैं तो वो आपको ढेर सारा मिस करते हैं, और इसी तरह मैम को भी ढेर सारा मिस कर रहे हैं। और आई होप, मुझे पता है कि हमारे लिसनर्स भी उन्हें मिस कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना आप। तो भाई जब हम उन्हें याद करते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि हाँ मैं नहीं थी तो मुझे याद किया गया। याद करने से, मिस करने से और किसी के नहीं होने पर यानी कि बाहर चले जाने पर उसकी बातें करने से रिश्तों में प्यार भी बढ़ता है। यही तो है रिश्तों की खूबसूरती। जब कोई हमारे साथ होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं होता है फिर भी हम उसे ढेर सारा याद करते हैं, उसे मिस करते हैं। तो आइए अब चलते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ, और उसके बाद चलेंगे एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो है लिसनर्स, वो ये कहता है रिश्ते हमेशा, हम कहते हैं ना रिश्ते कांच से भी नाजुक होते हैं, लेकिन इस कांच से भी नाजुक रिश्ते की सिर्फ एक डोर होती है और वो होती है रिस्पेक्ट। किसी भी रिश्ते में, कहते हैं रिश्ते में प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे रिश्ते में प्यार होना, लेकिन प्यार से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक रिश्ते में सम्मान का होना। अगर किसी रिश्ते में मान लीजिए प्यार नहीं भी है तो सम्मान है, अगर एक दूसरे के प्रति और रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की थिंकिंग को हम पूरी पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को हर डिसीजन लेने की आज़ादी देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता काफ़ी आगे जाता है और आराम से चलता है। इसलिए अगर आपके रिश्ते में प्यार है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो उसके टूटने की कहीं ना कहीं जो एक चीज़ होती है ना, डोर होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हर रिश्ते में विश्वास भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए और सम्मान, सम्मान तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि जब सम्मान होता है ना तो हम लड़कर भी रिस्पेक्ट देते हैं कि अरे चलो लड़ाई की थी कोई बात नहीं। लड़ाई में भी हम ध्यान रखते हैं कि मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो सामने वाले की रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाए, उसे बुरी लगे। यही है असली रिस्पेक्ट, कि गुस्से में भी हम ध्यान देते हैं कि कोई ऐसी गलत बात ना निकल जाए जो उसे बुरी लगे। तो हमेशा ऐसी ही अपने रिश्तों को सींचिए विश्वास से, प्यार से और सम्मान से। अगर ये तीन आपके रिश्तों में हुए ना तो आपके रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं, उनकी महक बनी रहेगी और वो सदा सदा सदा महकते रहेंगे, और उनकी खुशबू से आपका घर जो है वो हमेशा हमेशा खूबसूरत बना रहेगा। तो इसी प्यारे से रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ लिसनर्स, आइए चलते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। बस हम यू गए और यू आए स्टेडियम।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है सुन सहेली विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका। सो आइए अब चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आज का हमारा दिन यानी कि हमारा फ्राइडे होता है रिश्तों की महक को महकाने का। तो आज रिश्तों की महक से हम शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पर जो कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा होता है और हमारे रिश्तों को अफेक्ट भी करता है। किसी के लिए एक फिक्स ओपिनियन, अगर हम किसी के लिए एक फिक्स ओपिनियन बना लेते हैं तो किस तरीके से ये हमारे रिश्तों को नुकसान करता है और क्या असर होता है इसका हमारे रिश्तों पर, ये आज मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कैसे इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले हम कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कुछ ऐसे ही होता है। अगर किसी से पहली या दूसरी मुलाकात में ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कड़वा हो तो हम मान लेते हैं कि वो इंसान हमेशा ऐसे ही है और यहीं से शुरुआत होती है एक फिक्स्ड ओपिनियन बनने की। दूसरी चीज़ होती है कि हम किसी के बारे में सोच लेते हैं कि वो स्वार्थी है या सेल्फिश है तो हमारा दिमाग केवल उसकी स्वार्थी हरकतों को ही देखता है और अच्छी बातों को अनदेखा कर देता है। यानी कि किसी एक चीज़ पर ही ध्यान देना, किसी एक एक्टिविटी पर ही ध्यान देना कहीं ना कहीं शुरुआत करता है एक फिक्स्ड ओपिनियन बनने की। और थर्ड होता है कि किसी और की कही हुई बातें, कई बार हम किसी इंसान को खुद समझने से पहले दूसरों की कही सुनी बातों के बातों से उसे जज करते हैं। मतलब अगर किसी के लिए हमने कुछ सुन लिया कि वो ऐसे हैं या वो बहुत गुस्से में है, तुम्हें पता नहीं है वो कितना एटीट्यूड में रहता है, तुम्हें पता नहीं है अरे उसमें तो बहुत सारी गलत आदतें भी हैं। जैसे ये सारे ओपिनियंस आपने किसी के लिए किसी और के मुँह से सुन लिए और उन्हीं को सच मान लिया तो हमें लगता है कि हाँ वो इंसान ऐसा ही होगा, हमारा एक ओपिनियन बन जाता है, एक फिक्स्ड ओपिनियन उस इंसान के बारे में। और फिर आता है कि जब हम खुद को लेकर के कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, अगर आप किसी से इनसिक्योर हैं उनसे इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं तो हमें सामने वाले का कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़रिया देखते हैं फिर भी हम मानते हैं कि वो गलत है। अगर हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है किसी को भी लेकर के तो हम उस इंसान की कभी अच्छी चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, हम हमेशा उसका गलत साइड ही देखते हैं। अगर उसे गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो हम कहते हैं देखा ये ऐसे ही थे, ये ऐसी ही चीज़ें जब देखो तब करती हैं। कहीं ना कहीं जानबूझकर भी हमेशा किसी के गलतियां ही निकालते रहना उसके बारे में एक फिक्स्ड ओपिनियन बना देता है। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है हमें, हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन हमें असुरक्षा की भावना ने घेरा होता है, इसलिए एक फिक्स्ड ओपिनियन किसी के भी बारे में बन जाता है। देखिए मैं मानती हूँ कि पहली मुलाकात अगर किसी के साथ भी होती है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, बिल्कुल सही है कि आप पहली मुलाकात जैसी होती है वैसा ही इंसान लगने लगता है। लेकिन फिर भी हो सकता है आप जो उसके बारे में सुन रहे हैं, जो आपने पहली मुलाकात में उसे लेकर के फील किया है, वो सिर्फ सिचुएशन की वजह से हो। मान लीजिए कोई इंसान बहुत शांत रहता है, बहुत चुपचाप रहता है, हम समझते हैं कि वो बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल मैनर्ड है, और अचानक एक दिन उसी इंसान को आप किसी से लड़ते हुए देखें, झगड़ा करते हुए देखें, तो उसके बारे में आप क्या ओपिनियन, एक सेट ओपिनियन सेट कर लेंगे कि अरे मैंने तो इससे बहुत अच्छा समझा था, ये तो यहाँ लड़ाई कर रहा है। हो सकता है कि सिचुएशन कुछ और हो, हो सकता है किसी ने उसे कुछ कहा हो, किसी ने उसकी किसी अपने को कुछ कहा हो और उस पर उसे गुस्सा आ गया हो और अचानक क्या हो सकता है सामने वाले ने ही पहले उसे लड़ने के लिए प्रवोक किया हो। इसीलिए किसी के लिए भी कभी भी किसी भी सिचुएशन को देखते हुए एक फिक्स्ड ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के लिए फिक्स एक ओपिनियन मन में रख लेते हैं ना कि वो इंसान ऐसा ही है, मान लो किसी के लिए आपने सोच लिया कि ये हमेशा ईगो में रहता है, हो सकता है कि आपको उसके बिहेवियर से लगाव लेकिन उसके बिहेवियर में वैसी चीज़ें ना हो, लेकिन जो कि आपने एक माइंडसेट एक फिक्स्ड ओपिनियन उसके बारे में रख लिया कि ये हमेशा ईगो में रहते हैं तो वो आपको हमेशा ईगो में ही लगेगा फिर चाहे हो या ना हो। ऐसे ही हमारे मन में हमारी सोच से हमारे जज करने के तरीकों से शुरुआत होती है फिक्स्ड ओपिनियन की और ये कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत ज़्यादा असर भी डालता है, रिश्तों पर गहरा असर डालता है जिससे कि आपके रिश्ते कई बार बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी को भी लेकर कर कभी एक फिक्स ओपिनियन अपने दिमाग में ना रखें।
आइए लिसनर्स, इसी पर हम और भी बातें करेंगे और आपको और भी सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, कैसे हम अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुन लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद ही पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: प्यारा प्रोग्राम जिसका की नाम है सुन सहेली विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका। सो आइए अब बात कर लेते हैं और टॉपिक्स पर, लेकिन उससे पहले आइए सीधे चलते हैं चैट बॉक्स में। और मैं देख रही हूँ कि आशु जी आ गई हैं, लिख रही हैं शुभ दोपहरिया दोनों आरजे को, शुभ दोपहरिया आपको भी। आशु जी कैसी हैं आप? बहुत ही बहुत स्वागत है आपका सुन सहेली में। और इसी के साथ प्रीति जी भी आ गई हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आरजेस, गुड आफ्टरनून आपको भी प्रीति जी, और आपका भी स्वागत है सुन सहेली में। कैसी हैं आप? अपना हालचाल ज़रूर बताइए। तो आइए लिसनर्स अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था कि किस तरीके से किसी के लिए भी हम एक फिक्स ओपिनियन बना लेते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों पर किस तरीके का असर डालता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि फिक्स्ड ओपिनियन कहाँ, हमने बात की थी कि शुरुआत कहाँ से होती है, अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से हमारे रिश्तों पर असर डालता है। जब हम किसी के लिए एक फिक्स्ड ओपिनियन बना लेते हैं तो सामने वाला अगर सुधरना या बदलना भी चाहता है तो हम उसे मौका नहीं देते, क्योंकि हमारी नज़र में वो कभी नहीं बदल सकता है। अगर किसी के लिए आप एक फिक्स्ड ओपिनियन बना लेते हैं तो उसी के साथ हमारे मन में ये सोच भी हो जाती है कि वो कभी नहीं बदलेगा। अरे वो इंसान तो 100 कोशिशें करने के बाद भी नहीं बदल सकता, वो तो वैसे ही रहेगा जैसे वो है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आशु जी कि कल से बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है और रुकने का तो वाकई नाम नहीं ले रही है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, मौसम ही है। आप सभी अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखें और थोड़ा सा बारिश में भीगने से बचें। तो आइए लिसनर्स बात करते हैं कि जब भी किसी को लेकर के कोई सेट ओपिनियन हमारे मन में होता है तो हमें उसके बदलने की, अगर वो सुधरता भी है ना तो हमें लगता है अरे वो सुधर सकते हैं, वो कभी नहीं सुधर सकते, वो तो वैसे ही रहेंगे, बस उसने ऐसे तुम्हारा मन रखने के लिए कह दिया होगा। यानी कि अगर वो कोई अच्छा काम भी करता है तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसी के साथ प्रीति जी लिख रही हैं ऑसम मौसम की तरह मस्त। ओके, अच्छी बात है प्रीति जी, आप हमेशा मस्त ही रहें। तो आइए लिसनर्स अब बात कर लेते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पर, कि सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा कि रिश्तों पर, आपने अभी सुना कि एक असर तो ये पड़ता है कि हम सामने वाले को सुधरने का मौका भी नहीं देना चाहते, और दूसरा ये असर पड़ता है कि हम बात बात पर बहस करने लगते हैं, हमें सामने वाले की हर बात का गलत मतलब निकालने की आदत सी पड़ जाती है, जिससे छोटी सी बात भी कई बार बड़े झगड़े में बदल जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि किसी के लिए भी एक सेट ओपिनियन ना बनाएं, क्योंकि अगर किसी के लिए आपने एक सेट ओपिनियन बना लिया है तो आप उसकी हर बात का गलत मतलब ही निकालेंगे। मान लीजिए उस इंसान ने कुछ सही भी कहा है तो आपको लगेगा अरे इसने तो मुझे ही कहा है, ज़रूर मुझे ही कहा होगा, मुझे ही टारगेट किया होगा। तो इसी तरह किसी के लिए भी एक सेट ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, वरना हमारे रिश्तों पर इसी तरीके के असर होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं जब किसी के लिए एक फिक्स राय हो जाती है तो उससे जो हमारा एक इमोशनल टच होता है वो ख़त्म हो जाता है, रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है लिसनर्स, कि जब हम किसी के लिए कोई फिक्स राय बनाते हैं ना तो कभी उससे इमोशनली टच नहीं हो पाते। यानी कि मान लीजिए आपने किसी के लिए राय बनाई कि वो स्वार्थी है, तो अगर आपने ये सोच लिया है कि वो इंसान सेल्फिश है, स्वार्थी है, तो आप कभी भी उससे इमोशनल टच नहीं बना पाएंगे। आप बस उसके साथ एक रिश्ता जो निभाएंगे वो एक फॉर्मेलिटी ही होगी। इसलिए कभी भी अपने रिश्तों में इस तरह की बातों को नहीं आने देना चाहिए, यही रिश्तों की खूबसूरती होती है। हमेशा किसी को लेकर के भी ओपिनियन बनाने से पहले या उसे जज करने से पहले उस सिचुएशन को देख लें कि वो इंसान किस सिचुएशन में था, उसने आपसे जो कहा किस सिचुएशन में कहा, किस माइंडसेट में कहा, किस तरीके से कहा। कई बार क्या होता है ना कि हमारी सिचुएशंस अलग होती हैं। मान लीजिए हो सकता है कि उस वक्त उसने अपने लिए कुछ किया हो सकता है सिचुएशन अलग हो, उसका माइंडसेट अलग हो। इन सारी चीज़ों को देख करके ही हमें किसी के लिए कोई ओपिनियन बनानी चाहिए। और रही बात जज करने की, तो कभी भी किसी की किसी भी चीज़ को जज नहीं करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान जजमेंटल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसे हर चीज़ को जज करने की आदत पड़ जाती है, हर चीज़ को अपनी तरीके से देखने की आदत पड़ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को लेकर के, किसी की किसी भी एक्टिविटी को लेकर के हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ अनिल वर्मा जी आ गए हैं जो कि हमें सैदापुर से सुनते हैं, लिख रहे हैं शुभ एवं ठंडा रेनी डे सभी सुनने वालों और सुनने वालों को। ओके थैंक यू। ठंडा डे तो वाकई है अनिल जी, क्योंकि क्या कर सकते हैं, जो बारिश है वो हो रही है और इसलिए मौसम जो है वो ठंडा ही है। आइए लिसनर्स अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम फिक्स्ड ओपिनियन से दूर रह सकते हैं, मतलब क्या कुछ आप करें जिससे कि आप किसी के लिए एक फिक्स्ड ओपिनियन बनाने से बच सकें ताकि इसका हमारे रिश्तों पर असर ना पड़े। इसकी कुछ मेंटल टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले तो सोचना बंद करें कि वो इंसान बुरा है, इसकी जगह ये सोचें कि वो खास वो व्यवहार बुरा है। कहने का मतलब ये है कि ये सोचने के बजाय कि इंसान बुरा था, हम ये सोचें कि उसकी वो एक्टिविटी बुरी थी। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके मन में किसी के लिए भी एक सेट ओपिनियन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने क्या सोचा कि वो इंसान बुरा नहीं था, एक्टिविटी बुरी थी। दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी, हाँ जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सिचुएशन को ज़रूर ठीक से समझ लें। जब भी सामने वाला कुछ गलत करे तो उस खुद से ही सवाल पूछें, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि किसी स्ट्रेस में है, किसी मजबूरी में है, किसी बीमारी की वजह से। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूछना बहुत ज़रूरी होता है, सिचुएशंस को जानकर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है कि रोज़ या फिर हफ्ते में एक बार उस इंसान की बातों, दो अच्छी बातों को लिखें। इससे क्या होगा, इससे कभी आपके लिए की हो, हमेशा वीक में या महीने में कोई ऐसी दो अच्छी बातें ज़रूर लिखें जो उसने आपके लिए की हो। ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को, पॉजिटिव सोच को बढ़ाएगा उस इंसान के लिए, जिसकी वजह से आप उस इंसान के लिए कभी भी बुरा फील नहीं करेंगे। इसी के साथ के गुप्ता जी भी आ चुके हैं जो कि हमें तिरंगा कॉम्प्लेक्स से सुनते हैं, लिख रहे हैं अंशिका मैम जी प्रणाम। प्रणाम आपको भी, कैसे हैं आप के गुप्ता जी। तो आइए लिसनर्स, ये तो थी कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि हमें मेंटल सपोर्ट करती हैं और मेंटली कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए हमारे मन में जो एक फिक्स्ड ओपिनियन बन रहा होता है उसे रोकती हैं। और फिक्स्ड ओपिनियन बनने से रोकना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी इंसान के लिए फिक्स्ड ओपिनियन बनाते हैं तो हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं और नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिविटी की तरफ सोचें और पॉजिटिव रहने की ही कोशिश करें। आइए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं लिसनर्स और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। आप सभी सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है सुन सहेली। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: बेहद ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका कि नाम है सुन सहेली। तो आइए सुन सहेली में अब होने वाली है शुरुआत प्यारी प्यारी रेमेडीज की, कुछ होम टिप्स की जो कि आपकी स्किन को लेकर के, क्योंकि अभी तक हमने बात की रिश्तों की महक से महकाया आपने इस सुन सहेली प्रोग्राम को, और अब बारी आती है बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलने की, यानी कि अपनी खूबसूरती को निखारने की और कुछ होम रेमेडीज़ और ब्यूटी टिप्स बताने की जो कि हमारी फीमेल लिसनर्स को बहुत पसंद है। सो आशू जी, प्रीति जी, हो जाइए तैयार। और इसी के साथ आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जिन्होंने अटेंडेंस लगा दी है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि अरविंद जी आ चुके हैं। अरविंद जी, हेलो अरविंद जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका सुन सहेली में। और इसी के साथ नागेश्वर जी भी आ गए हैं। गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार। नमस्कार नागेश्वर जी, कैसे हैं आप? तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं कुछ ब्यूटी टिप्स की तरफ। और आज ब्यूटी टिप्स में मैं आपको बताऊंगी कुछ रेमेडीज़ जो कि आपकी स्किन को लेकर के बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। सो आज मैं जिस पैक के बारे में आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ वो है दही और कॉफ़ी से बना हुआ। आपको क्या करना है कि एक बड़ा चम्मच आपको दही ले लेना है और आधा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर ले लेना है। इसे अच्छे से आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे अपने चेहरे पर 10-15 मिनट लगाए रखिए और फिर हल्के हाथों से स्क्रब करके इसे धो लीजिए। कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि हमारी स्किन में सूजन को कम करता है, और दही जो होता है वो हमारी स्किन को, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपकी स्किन से टैनिंग को दूर करता है, फटाफट आपकी स्किन में ग्लो लेकर के आता है। तो ये था दही और कॉफ़ी वाला पैक। इसी के साथ सुरेंद्र यादव जी आ गए हैं जो कि हमें गौरा चौकी से सुनते हैं, लिख रहे हैं शुभ बदरिया। शुभ बदरिया आपको भी सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? आइए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट रेमेडी की जो कि है बहुत ही अच्छा सा स्किन टोनर। यस, आज मैं आपको स्किन टोनर भी बताऊँगी जो कि ग्रीन टी और शहद से है। ये सबसे पहले क्या करना है कि आपको ग्रीन टी, उबली हुई ग्रीन टी आपको लेनी है और उसको ठंडा कर लेना है और फिर उसमें एक चम्मच आपको शहद मिला लेना है। इसे कॉटन की मदद से आपको अपने चेहरे पे लगाना है और 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, और 10 मिनट के बाद में आपको किसी माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये उबली हुई जो ग्रीन टी होती है ना वो एंटी ऑक्सीडेंट से भरी हुई होती है, इसलिए ये मुहासों को रोकती है और स्किन को अंदर से रिपेयर करती है। आपने हमेशा सुना होगा कि कई बार हमारी जो स्किन की सेल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज हो जाती है, हम जान नहीं पाते, टैनिंग की वजह से, धूप की वजह से। धूप के साथ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन को हार्म करती हैं, ये उन बिगड़े हुए डैमेज हुए सेल्स को रिपेयर करती है। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, जो कि हमारा थर्ड पैक है आज का, वो ये है कि पपीते और रॉ मिल्क से पके हुए आपको पपीते के टुकड़े ले लेने हैं, उन्हें अच्छे से मैश कर लीजिए और उसमें एक बड़ा चम्मच कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क मिला दीजिए। इसे 10-15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखें, क्योंकि पपीते में मौजूद जो पपेन एंजाइम होता है वो हमारी डेड स्किन सेल्स को हटाकर हमारी नेचुरल जो ग्लो होता है उसे लाता है, इसलिए पपीते और दूध से बना हुआ ये बहुत ही अच्छा सा पैक है। आप इसे 10 मिनट लगाएं और 10 मिनट के बाद में अपने फेस को वॉश कर लीजिए और देखिए कितना बढ़िया आपके फेस पे ग्लो आता है, बिल्कुल चमक, एक होती है ना चमक जो फेस पे होती, वैसे ही ग्लो आपके फेस पे भी आएगा और सभी आपसे पूछेंगे अरे बताओ ना तुमने क्या यूज़ किया, प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ बताओ मुझे भी यूज़ करना है। फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने क्या यूज़ किया है। तो आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर यूज़ करिए और हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा लिसनर्स। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ स्किन टिप्स भी आपके लिए हैं और उसी के साथ हेयर के लिए भी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, बाल तो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन टिप्स भी है और हेयर टिप्स भी हैं। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा सॉन्ग है जो कि हमारा वेट कब से कर रहा है और कह रहा है कि आप हमें प्ले कब करेंगी, करेंगी या नहीं करेंगी। तो आइए उसे प्ले कर देते हैं, ये प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं लिसनर्स, और बस यूं गए और यूं आए। आप सभी सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए आपके अपने पसंदीदा शो को जिसका नाम है सुन सहेली। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। वेलकम बैक, आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली विद आपकी अपनी RJ समता और RJ अंशिका के साथ। सो गीता जी आ गई हैं, गीता श्रीवास्तव जी हमारी, गीतू जी लिख रही हैं, शुभ दोपहरिया डियर RJ अंशिका मैम, बहुत सुंदर सॉन्ग। शुभ दोपहरिया आपको भी गीता जी, और सबसे पहले तो बताइए कि आप इतनी देर से क्यों आई और कैसी हैं आप। तो आइए लिसनर्स, अब बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जो कि आजकल सबसे ज्यादा हो रही है, यानी कि बालों का झड़ना। भाई बाल तो आजकल ऐसे झड़ रहे हैं ना कि क्या ही कहना। तो बाल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, और इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि आपके बालों के लिए होगी बहुत ही अच्छी और इन्हें झड़ने से बिल्कुल रोकेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आज मैं जो बताने वाली हूँ वो 3 फलों से बनने वाली एक रेमेडी है। अब आप सोच रहे होंगे फलों से बनने वाली? बिल्कुल फलों से बनने वाली। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको चाहिए एक केला ले लेना है आपको, और 1 चम्मच आपको त्रिफला पाउडर ले लेना है। त्रिफला पाउडर अगर आप लेने जाएंगे तो आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में आपको चावल का पानी ले लेना है और इन तीनों को पेस्ट बना लेना है। सबसे पहले केला लीजिए, उसमें त्रिफला पाउडर डालिए और फिर थोड़ा सा चावल का पानी। चावल का पानी होता है ना, जैसे कि जब एक बार चावल को साफ करते हैं तो उसका जो पानी निकलता है वो आपको ले लेना है, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट कहीं ना कहीं बना लेना है, और फिर इसे 20 से 30 मिनट अपने बालों में लगाना है, और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है अपने बालों को। केला बहुत ही इसमें प्रोटीन होते हैं, इसलिए केला जो होता है वो हमारी बालों की स्कैल्प को कहीं ना कहीं मजबूती देता है। इसलिए अगर आप ये पैक यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो थोड़े कम झड़ेंगे। दूसरी चीज़ आती है कि हमेशा जब भी आप बालों में, हम हमेशा कहते हैं कि ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बालों को आप डेली रूटीन में ऑयलिंग ज़रूर करिए। अब आते हैं सेकेंड वाली हमारी रेमेडी पर। जो सेकेंड वाली हमारी रेमेडी है उसमें क्या करना है आपको ये भी बता देती हूँ। सेकेंड वाली हमारी रेमेडी है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों को, हमारी बालों की स्कैल्प को और हमारी बालों को मजबूती देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ग्रीन टी ले लेनी है, और ग्रीन टी को आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद में आपको इसको, जो इसका बॉइल्ड पानी है उसको आपको एक स्प्रे बॉटल में ले लेना है और अपने बालों पर स्प्रे करना है उसका। इससे क्या होगा कि इससे आपके बाल और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। और इसी के साथ आइए एक रेमेडी मैं आपको और बता देती हूँ, जो कि है कि कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम होती है कि हेयर फॉल होता है, बट हेयर फॉल होने के साथ साथ ओके मैं ठीक हूँ, गीता जी लिख रही है मैं ठीक हूँ, जाड़ा लग रहा था तो पंखे बंद करके सो गई थी। हाँ गीता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बारिश की वजह से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। इसी के साथ जारा खान आ गई है, लिख रही हेलो मैम, हेलो आपको भी। और इसी के साथ आइए बता देते हैं आपको ये वाली रेमेडी, जिसमें कि आपको करना क्या है कि बाल आजकल हमारे वाइट भी बहुत होते हैं, तो वाइट बालों के लिए आपको क्या करना है कि आपको अलसी के जो शीट्स होते हैं, अलसी शीट्स होते हैं, उनका पाउडर ले लेना है, और इसी के साथ पम्पकिन शीट्स का भी पाउडर ले लेना है। इन दोनों को ही आपको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और इसे अपने बालों में लगाना है। इसे बालों में लगाने से आपके बाल मजबूत होंगे और बालों की स्कैल्प जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे कि आपके बाल बेहतर हो जाएंगे और जल्दी झड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़ आती है कि बालों को धोने के बाद में हमेशा उन्हें सामान्य जो टॉवल्स होते हैं उन्हीं से साफ करना चाहिए और कभी भी अपने बालों को रगड़ना नहीं चाहिए। जो माइक्रोफाइबर वाले टॉवल होते हैं वो कभी हमें हमारे बालों पर यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि माइक्रोफाइबर वाले जो टॉवल होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, बहुत कहीं ना कहीं कड़े होते हैं, टाइट होते हैं। अगर आप उन्हें अपने बालों पर यूज़ करेंगे तो उससे आपके बालों की जड़ जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि कई लोगों को आदत होती है कि बिल्कुल रफ़ करके बालों को साफ़ करना, बहुत ज़्यादा बालों के साथ में हम जब बालों को साफ़ करते हैं टॉवल में तो बहुत ज़्यादा उन्हें रगड़ते हैं, इसकी वजह से भी बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपने बालों को साफ़ करें तो हमेशा धीरे धीरे साफ़ करें और माइक्रोफाइबर वाले टॉवल्स बिल्कुल भी ना यूज़ करें, और इसी के साथ में अपने बालों का ख्याल रखें ताकि बाल आपके कम झड़ें। होता है ना कि बाल तो मतलब झड़ने की सिर्फ बात आती है, इतने ज़्यादा झड़ते हैं कि हम सोचते हैं कि हम क्या करें, क्या कहें, कहाँ जाएं, कैसे करें, लेकिन क्या कर सकते हैं। आइए बता देती हूँ आपको एक और चीज़ जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको क्या करना है कि आपको एक कप नारियल का तेल ले लेना है, उसमें आपको दो ताज़ा प्याज आपको लेनी है और उसका रस निकाल लेना है और उस रस को इसमें मिला देना है, और इसी के साथ कुछ गुड़हल की पत्तियां भी आपको इसमें मिला लेनी है। ये एक अच्छा सा सिरम बनके तैयार हो जाएगा, फिर आप इसे अपने बालों में लगाएं, ये आपकी बालों को बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देगा। और इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी आ गए जो कि हमें आवाज़ विकास से सुन रहे हैं, लिख रहे हैं आर जी समता जी एंड आर जी अंशिका जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी, और अरविंद जी भी हैं, गुड आफ्टरनून धर्मेंद्र जी कैसे हैं आप। तो आइए लिसनर्स अब इसी बहुत ही प्यारी सी रेमेडीज़ के साथ और बहुत ही प्यारी सी बातों के साथ, बहुत प्यारे से मौसम के साथ, मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को आज के लिए इजाज़त दीजिए, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो हो चुका है आपसे टाटा बाय बाय करने का, क्योंकि अगर आज जाऊंगी नहीं तो कल आऊंगी कैसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हाँ रेडियो ज्ञानस्थली को सुनते रहिए और अपने फेवरेट प्रोग्राम सुन सहेली को भी। आज के लिए बाय बाय, कल मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

भैया और आजकल किसी ने मेरी नींद उड़ाई हुई है तो ये है बेवक्त वाली बारिश, जो क्यों हो रही है पता नहीं, किस लिए हो रही है पता नहीं, बस होए जा रही है। कल से बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब कल हम छुट्टी पर थे तो क्या मौसम हमें इतना याद कर रहा था? आप मुझे इतना याद कर रहे थे कि आपने पूरी बरखा रानी ही बुला रखी है फिलहाल के लिए। हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार आदाब। घड़ी में वक्त हो चला है 3:06 बाद स्टूडियो क्लॉक। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे उन्नति। आवाज से, अंदाज से तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आपकी सबसे ज्यादा चुलबुली हाई एनर्जेटिक 200 की स्पीड वाली मैम प्रेजेंट है। ये सारे टैग मुझे आपकी तरफ से मिले हैं तो क्यों ना सोचा आज तारीफ में अपने ही कुछ चार चांद लगा लिए जाए। और मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। कार्यक्रम चल रहा है कॉल ट्यून गोंडा, यानी कि आपके फरमाइशों वाला कार्यक्रम। और आज कॉलर का मतलब है कॉल इन वाला प्रोग्राम, जिसमें हम आपके साथ बातें, मस्ती, फन, एंटरटेनमेंट, गेम्स, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429। आई रिपीट 6393316429। बारिश के मौसम में आज पकौड़े नहीं तले जाएंगे, आज बातें तली जाएंगी, क्योंकि इस वाले कार्यक्रम के अंदर आर्जुनती है और जहां आर्जुनती होती है वहां शैतानियां अपने आप चली आती हैं। मेरा और शैतानियों का रिश्ता बहुत पुराना है और आपका और हमारा रिश्ता तो जन्म जन्म तक चलने वाला है। फिलहाल के लिए तो आप तैयार हैं अगर मेरे साथ कुछ करने खुरापात, तो उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए। और उससे पहले कि आपके अंदर की खुरापात जागे, आपके अंदर का भी गब्बर जाग जाए, जैसे कि आज मेरे अंदर सुबह से जागा हुआ है, तो उससे पहले हम चलते हैं हमारे पहले गाने की तरफ और देखते हैं गाने में आज हमारी फरमाइश किसकी आई है। फरमाइश वाले कार्यक्रम में फरमाइश आई है हमारी सबिहा जी की और वो सुनना चाहती हैं हुआ है आज पहली बार। क्यों दूसरी बार भी हो सकता था, तीसरी दफ़ा भी हो सकता था, लेकिन आज पहली बार ही क्यों आया, मुझे ये जानना ज़रूर है। सनम रे से इन्जॉय करते रहिए और 20 साल की उम्र में पहली दफ़ा ही काहे हुआ है ये भी ज़रूर बताइएगा चैट वाले बॉक्स में।

0: तो भैया इससे पहले कि हम अगले गाने की तरफ बढ़ते, हमारे पास एक जबरदस्त और पहली बार एक लिसनर जुड़े हैं, तो आइए देखते हैं कौन है और क्या वो हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। हेलो
1: जी मैम।
0: जी मैम, इतना तेज भैया, हम डर गया।
1: नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं बबलू यादव बहुत नॉर्मल आदमी हूँ और मैं फार्मर हूँ मैम। मैं मेरे कभी फार्म हाउस पे आइए, मेरा फार्म हाउस पे मेरा रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि पहले तो आप हैं कहाँ से?
1: जी मैम,
0: कहाँ से हैं आप?
1: मैं मोहनलालगंज लखनऊ, बबलू यादव ग्राम धनवासा है मैम।
0: क्या बात है, तहजीब के शहर से बबलू जी आए हुए हैं, आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में।
1: जी मैम।
0: अरे आपका वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में।
1: मैम आपको ढेरों शुभकामनाएं मैम, इतनी आप मुझे इज्जत दे रही, आपको ढेरों शुभकामनाएं मैम, हृदय से साधुवाद मैम। आपके चैनल को भी मैं ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: आपका,
0: बहुत बहुत
1: और मैम आपका चैनल दिन दुगना रात चौगना बाढ़ है जैसे पूनम में चांद बरसा है मैम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपको मैं बता दूं कि आज हमारा बॉलीवुड वाला डे है, क्योंकि मौसम बहुत मस्त है और मेरा दिमाग में थोड़ी खुराफात चल रही है, तो आपको ये बताना है आज आपने खाने में क्या खाया है, वो भी गब्बर की तरह, यानी कि गब्बर के स्टाइल में। अरे
1: मैम, गब्बर सिंह की आवाज में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे नॉर्मल मैं बता दूंगा आज मेरे घर में।
0: नहीं, हम तो या तो गब्बर की आवाज में सुनेंगे, आपको बोलना पड़ेगा कि अरे ओ सांभा आज हमने क्या
1: मैम, मैं इतना कोई एक एक्टर भी नहीं हूँ मैम। मैं बता देता हूँ मैम, आज मेरे घर में कढ़ी चावल दही फुलौड़ी और पूड़िया बनी मैम, गर्म खाना खाया आज सर्दी के मौसम में मैंने।
0: और आपने हमारे मुंह में पानी दे दिया है।
1: मैम आइए, आपको भी मैं खिलाऊंगा, मैं यादव आदमी हूँ, दूध दही मेरे घर में भंडार रहता है मैम आपको।
0: चलिए चलिए, तो ऐसा करते हैं शो को छोड़ जाते हैं, गाने अपने आप बजते रहेंगे, मैं अपना बोरिया बिस्तर पैक करके सीधे लखनऊ की तरफ निकलती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम आइए, मैं अपने फार्म हाउस पे आपका वेलकम करता हूँ, ढेरों शुभकामनाएं मैम आपको।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बबलू जी। कौन सा गाना है
1: मैम? जी नमस्ते मैम, गाना मेरा वही मैम, तूने प्यार की बीन बजाई मैं दौड़ा चलाया।
0: आप प्यार की तो पता नहीं, लेकिन आपने जो कड़ी चावल की बीन बजाई है मुझे लगता है मुझे आना।
1: मैम मैं गाने की बात कर रहा हूँ मैम, मैम मैं मैरिड हुई हूँ, मैं किसी के लिए कोई ऐसा बात नहीं कहना चाहता हूँ मैम, क्षमा मांगता हूँ आप।
0: चलिए, अरे नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए कॉलर ट्यून गोंडा।
1: जी मैम नमस्ते मैम, नमस्ते आपको, मेरी होती
0: आपका दिन शुभ हो। तो भैया ये थे हमारे साथ बबलू जी फ्रॉम लखनऊ, और अगर आप तैयार हैं गब्बर की आवाज़ में बताने के लिए कि आज आपने क्या खाया है, तो आइए अपना फोन डायल कीजिए 6393316429, आपकी आज उन्नति इंतजार कर रही है।

0: प्यार की बीन बजाने के बाद हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं। लेट्स सी कौन है और वो हमारे साथ क्या गब्बर गब्बर खेल पाएंगे। हेलो,
1: नमस्कार उन्नति जी।
0: नमस्कार, आवाज किसकी है ये? ओके, रई साहब आप बोल रहे हैं। ये बताइए, चौक में पानी भर गया क्या
1: जी? चौक में आज आज आज मैं दुकान पे गया, घर पे पानी भरा हुआ है।
0: हाँ, वैसे हमारी गली में भी पानी भरा है।

0: क्या
1: बात, लंच पे सादा भोजन बना हुआ था। अरे सांबा जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे?
0: सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारे और भी सांबा सुन रहे हैं। हेलो
2: भाई, लगता है यहाँ हो गई है सिस्टम में मिस्टेक और हमारे रईस साहब का सिग्नल गया है। हिल,
0: चलिए कोई बात नहीं, रईस साहब का फोन तो कट गया चलते हुए सिग्नल्स की कुछ खराबी की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सांभा बताइए ना सुन पाया हो, आप उनकी बातें ना सुन पाए, लेकिन आप जरूर बताने वाले हैं कि आपके घर में क्या बना है ना, है ना, है ना। और इसी के साथ एक और कॉल, यानी कि कॉल हमारे रईस साहब की है। हेलो,
1: हाँ सर जी,
0: आपका कॉल बीच में कट गया,
1: फोन डिस्कनेक्ट हो गया था।
0: जी जी जी, बताइए आप बता रहे थे आज आपने क्या खाया है।
1: जी सामा जी, मैंने मेरे घर में बना था रोटी दाल चावल, ये सब खाया है।
0: ओके,
1: और ये सोच कर खाया है कि सरदार बहुत खुश हो गया, शाबाशी देगा। क्यों?
0: आपका सरदार सच में बहुत खुश हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कौन सा गाना है आपका ये बता दीजिए। अब
1: मुझे सुनना है रेस मूवी से, मुझे तो तेरी लत लग गई।
0: मुझे तो, क्या आप इस गाने को गुनगुना सकते हैं?
1: ये गाना मुझे थोड़ा याद नहीं होने तो मैडम।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल ट्यून में कॉल करने के लिए, आपका धन्यवाद। तो भाई ये तो थे हमारे रईस साहब, जिन्होंने हमें बता दिया कि उन्होंने खाने में क्या खाया था। तो आप तैयार रहिएगा अपना खाना प्लेट लेकर के, क्योंकि हम जरूर जानने वाले हैं वो भी हमारे स्टाइल में कि आज आपके घर में खाने में क्या बना है। स्टे ट्यून्ड।

0: और इससे पहले कि आपकी लत थोड़ी खराब हो जाती, हमारे पास एक और लिसनर आ गए हैं, तो गाने को बीच में रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम और आप कहाँ से हैं प्लीज बता दें।
1: जी देवकली अहमदपुर बाजार बारंगी से बाबू अंसारी बात कर रहे हैं।
0: बाबू अंसारी जी, स्वागत करते हैं आपका हम कॉलर ट्यून गोंडा यानी कि रेडियो ज्ञानस्थली में।
1: जी मैम।
0: तो कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम तो बढ़िया हैं, बस बारिश हो रही है, बस जो है दुकान पर थे, दुकान बंद कर आई।
0: नहीं, बारिश तो सच में कुछ ज्यादा ही हो रही है, बारिश ने कल से ठान लिया कि बंद ही नहीं होना है।
1: जी वही चीज, तो इसीलिए दुकान पर कस्टमर भी नहीं आ रहे थे, लाइट भी चली गई, तो हमने क्या क्या करें दुकान पर।
0: दुनिया का सबसे बड़ा मसला यही है कि बत्ती चली जाती है बारिश होते ही।
1: जी
0: फिलहाल ये बताइए कि जब आप घर पे हैं तो आपके घर में पकौड़े बने हैं या कुछ और बना है? क्योंकि आज हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, बारिश के मौसम में खाने का ज्यादा मन करता है, लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में ये।
1: जी।
0: तो जरा गब्बर की तरह बताइए तो जरा।
1: जी हम, अरे ओ सांभा, आज हमारे वहाँ पूरी और सब्जी बनी हुई है, खाओगे क्या?
0: क्यों नहीं क्यों नहीं सरदार
1: जी, तो आ जाओ हमारे अहमदपुर बाराबंकी में।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कोशिश थी। चलिए बताइए कौन सा गाना है आपका?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है किक, और उसी फिल्म का गाना है एक जुम्मे की रात।
0: लगा ही था आप इसी गाने की फरमाइश करने वाले, देखा हमारे गेस्ट कितने अच्छे होते हैं।
1: जी मैम, और मैम डेडिकेट रहेगा मैम।
0: चलिए नाम आप ही बता दीजिए अपने।
1: सबसे पहले आपको
0: ओके, थैंक यू।
1: और हमारे महेंद्र दीपन जी हैं गांव रोड नागौर जिला राजस्थान से, और रोशनी रावत दीदी हैं, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बस कुछ ही क्षणों में मैं आपका गाना प्ले करती हूँ। कॉलर ट्यून में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो भाई ये तो थे हमारे साथ बाबू अंसारी जी, तो आप अगर तैयार हैं तो लत को लगाइए और इस गाने को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, लेकर के आपकी कॉल आपके गाने को, तब तक के लिए सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा, स्टे ट्यून्ड।

0: तो भाई आप एंजॉय कर रहे थे बहुत ही जबरदस्त सा गाना लत लग गई। और आइए अब आपकी लत को थोड़ा सा हटाते हैं, थोड़ा सा छुड़ाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम, आप कैसे हो?
0: मैम बहुत अच्छी हैं, और आते ही आपको लग भी गया होगा कि हम बहुत जबरदस्त मूड में आए हैं आज, क्योंकि आज हम सब सबके साथ शैतानी करने वाले हैं, थोड़ा बात करने वाले हैं।
1: हाँ।
0: और ये मेरा फेवरेट काम है।
1: हाँ।
0: अब ये बताइए आपका नाम क्या है, क्योंकि हम आइडिया तो लगा चुके हैं आपकी हाँ से, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे।
1: पांडे
0: जी, पांडे जी आपका स्वागत करते हैं। और पांडे जी बैठे ऑन ड्यूटी, क्या कर रहे थे? अच्छा, पांडे जी ड्यूटी पे शो सुन रहे थे।
1: हाँ।
0: हमको लगा था सीटी बजा रहे थे, क्योंकि हमारे पांडे जी ने अपनी फिल्म में यही किया था।
1: पर पांडे जी उस वाले पांडे जी से थोड़ा हट के है ना, क्योंकि इन पांडे जी को वीडियो की लत लगी है, उनको सीटी की लत लगी।
0: चलिए तो पांडे जी, आपके लिए मेरे पास ना एक बहुत ही जबरदस्त सा टंग ट्विस्टर है, सुनाऊं क्या?
1: हाँ।
0: ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको रिपीट करना है फिर ये दो बार।
1: नहीं, वो नहीं,
0: नहीं नहीं नहीं, हम तो यही करेंगे।
1: अरे नहीं रहने दो ना, अभी बहुत खुशी हो रही है तो कम हो जाएगी, फिर उस तरह से गेम खेलोगे।
0: अब आप ऐसे बोलेंगे तो हम इमोशनल नहीं हो जाएंगे, आपको पता है हम इमोशनल नहीं होते, क्योंकि हम तो यही बताएंगे। और आपका टंग ट्विस्टर है, चार कचौरी कच्चे चाचा, चार कचौरी पक्के, पक्की कचौरी कच्चे चाचा, कच्ची कचौरी पक्के। जस्ट ट्राई होगी, एक बार और बोलते हैं। चार कचौरी कच्चे चाचा, चार कचौरी पक्के, पक्की कचौरी कच्चे चाचा, कच्ची कचौरी पक्के।
1: चार कचौरी कच्चे पापा,
0: पापा नहीं है वो, चाचा है चाचा। चार कचौरी कच्चे चाचा, चार कचौरी पक्के, पक्की कचौरी कच्चे चाचा, कच्ची कचौरी पक्के।
1: चार कचौरी कच्चे चाचा,
0: पांच कचौरी पापा, कच्ची चाचा पक्की पापा, ये कच्चे पापा
1: पक्की
0: पापा नहीं करना है। कौन से बेसन का पतीला, कहाँ से आ गया भाई?
1: नहीं होगा।
0: अच्छा चलिए दूसरा पूछ लेते, समझ समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है।
1: समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझना एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे वो एक ना समझ है, समझ समझ के जो समझे मेरी मेरी नजर में वो एक समझदार है।
0: ये तो था ही नहीं लाइन में कहीं। चलिए अनु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे दिमाग में यही टंग ट्विस्टर किसी और को देने का भी मन कर रहा है। फिलहाल आप ये बताइए गाना कौन सा है आपका?
1: गाना तो सोच रही हूँ आज ना, चलो ठीक है, एक शरारती सॉन्ग सुनती हूँ। फिल्म का नाम है चॉकलेट,
0: चॉकोलाटे।
1: और गाने की बोले मम्मी को है नहीं पता,
0: मम्मी को नहीं पता कि आपने चॉकलेट खाई है।
1: मम्मी को नहीं पता, मैं भी रेडियो पे बात कर रही हूँ,
0: अभी बता कर आते हैं। आपकी मम्मी को कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके
0: तो भाई ये तो थी हमारे अनु जी, जो नहीं कर पाई कच्ची कचौरी पक्के पापा और चाचा। और फिलहाल के लिए आप बताइए कि आप कर सकते हैं क्या मेरे साथ कच्ची कचौरी पक्के पापा, या फिर पक्की कचौरी कच्चे चाचा? अगर आप कर सकते हैं तो कॉल कीजिएगा कॉलर ट्यून वाले शो में 6393316429, और आइए इन्जॉय करते हैं हमारी एक अगली फरमाइश जो ऑफकोर्स रईस साहब के बाद आई थी। इन्जॉय करते रहिए, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पर। ये गाना है हमारी बाबू अंसारी जी की फरमाइश पर।

0: और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे बाबू अंसारी जी की फरमाइश, और हमारे साथ जुड़े हैं एक और लिसनर। देखते हैं भैया कौन है। हेलो।
1: हेलो मैम, कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपका नाम और अपनी जगह और कहाँ से हैं आप?
1: मैं विकास तिवारी से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी विकास जी, कौन सा गाना है? और उससे पहले क्या आप हमारे साथ एक गेम खेलना चाहेंगे छोटा सा?
1: कोशिश करेंगे मैम। पूरी
0: नहीं, पूरी नहीं, कचौरी करनी है।
1: कोई बात नहीं, पूरी सब्जी कचौरी सब करेंगे।
0: चलिए तो हमारा एक छोटा सा टंग ट्विस्टर है आपके लिए। चार कचौरी कच्चे चाचा, चार कचौरी पक्के, पक्की कचौरी कच्चे चाचा, कच्ची कचौरी पक्के।
1: एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा।
0: चार कचौरी कच्चे चाचा, चार कचौरी पक्के, पक्की कचौरी कच्चे चाचा, कच्ची कचौरी पक्के।
1: चार कचौरी कच्चे चाचा, चार कचौरी पक्के चाचा, चार कचौरी कच्चे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, चार कचौरी कच्चे चाचा, चार कचौरी पक्के, पक्की कचौरी कच्चे चाचा, कच्ची कचौरी पक्के।
1: चार कचौरी पक्के चाचा, चार कचौरी पक्के, पक्की कचौरी चाचा कच्चे।
0: चाचा कच्चे, मतलब कचौरी तो समझ में आई थी, चाचा कच्चे। थोड़ा सोचिए सोचिए, चाचा कैसे कच्चे हो सकते हैं? भैया हमारा सीधा सा टंग ट्विस्टर था, चार कचौरी कच्चे चाचा, चार कचौरी पक्के, पक्की कचौरी कच्चे चाचा, कच्ची कचौरी पक्के।
1: चार कचौरी कच्चे पक्के क्या?
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया ट्राई किया था लेकिन अभी कचौरी नहीं पक पाई, इसके लिए अफसोस है।
1: कोई बात।
0: चलिए बताइए कौन सा गाना है आपका?
1: जी?
0: आपका गाना पानी क्यों बरसा?
1: पानी क्यों बरसा, हर जगह बरसात हो रही है।
0: इसी सवाल का, इसी के सवाल का जवाब हम भी खोज रहे हैं, जिस दिन जवाब मिल गया उस दिन आपको बताएंगे, फिलहाल अभी एंजॉय करिए।
1: और ये गाना मैम डेडिकेट है हमारी बरेली मैडम को।
0: बड़ी वाली मैडम नाम?
1: बरेली वाली मैडम।
0: ओ बरेली वाली मैडम, नहीं मुझे, ओके मैं समझ गई, थैंक यू सो मच।
1: ओके वेलकम।
0: तो ये तो थे हमारे विकास जी। तो भैया एंजॉय करते रहिए, और इससे पहले कि हम विकास जी का गाना ट्यून करें, पहले ट्यून करेंगे हम अपनी अनु पांडे जी की फरमाइश जो आई है हमारे पास चॉकलेट फिल्म से, और इसके बाद आपके अपने चैट बॉक्स में चलेंगे आपके मैसेजेस को पढ़ने। एंड साथ ही साथ आज हमारे रीना शर्मा जी के हस्बैंड का बर्थडे, यानी उनके हबी का बर्थडे है, तो भैया मेरी तरफ से रेडियो ज्ञान असली की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे सर आपको। एंड ऑफ कोर्स आपका गाना बहुत जल्द प्ले करते हैं रीना शर्मा जी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा।

0: इन ऊपर वाले के दो क्रिएशन है ना, माइंड ब्लोइंग है। सेक्सी गर्ल्स एंड वेरी सेक्सी गर्ल्स।
1: मैं आपको पहले मिल चुका हूँ या आपको पहले मिल चुका हूँ?

0: पाउंड्स कितने होंगे यार? पाउंड्स और आदमी भड़क तो ऐसे रहते शादी करने वाला ऐसे
1: सोच रहा हूँ शादी कर ही लूँ यार. I like her. She's nice. She's gorgeous. Yeah. शादी करूँगा मैं इससे. अबे जाना कर ले.
0: ये तो ऐसे देख रहा है जैसे इससे शादी करने वाला है.
1: छोड़ना इसको.
2: अगर तो ऐसा रहा जैसे ये मुर्ताजा अर्जा है.

एंड अगले गाने की फरमाइश को पूरा करने से पहले आइए चलते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में, जो कि हमारे मैसेजेस आ चुके हैं, कुछ पैगाम आ चुके हैं और ऑफ कोर्स काफी देर से हमारे लिसनर चैट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं अपने अपने मैसेजेस लिखकर कि कब आएंगे हमारी आज चुनौती कर रहे थे ना, हाँ चलिए आते हैं पढ़ते हैं साथ में एंजॉय करते हैं। और आप सुन रहे कॉल ट्यून गोंडा विद राज चुनौती, ये है आपका अपना रेडियो ज्ञानस्त्री। गुलफ्शा जी ने लिखा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अदी मैम, भैया आफ्टरनून हो रही है लेकिन हमको इवनिंग वाला फीलिंग आ रहा है आज दो दिन से। एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम कॉल ट्यून गोंडा में। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारा खान हमारे साथ जुड़ी है, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून टू यू। जारा खान हमारे साथ, सारा जारा क्या आप दोनों बहने बहने हैं मुझे बताइएगा जरूर। और हेलो मैम गुड आफ्टरनून टू यू, गुलफ्शा जी की तरफ से हेलो आया था, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा फ्रॉम सऊदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। अरविंद जी ने कहा हेलो नदी मैम, कैसे हैं आप ठीक ही होंगे? जी हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, फिलहाल आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? एंड यहाँ पर भैया बारिश हो रही है, बारिश तो हमारे यहाँ भी हो रही है, मेरे यहाँ सुबह से बारिश के साथ आलू के पराठे गिर रहे हैं। देखिए इट्स कुमार जी, ऐसी बातें नहीं करते हैं, आपको पता है ना आलू के पराठे सुन के आर जी नदी को भूख लगाती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। एन आर जी अनहोनी किम होनी, भैया कुछ नहीं होनी, बारिश हो रही है और इसके अलावा आपका कॉल ट्यून गोंडा चल रहा है। बाबू अंसारी जी अहमदपुर से जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून अति मैम जी, कैसे हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। ओके थैंक यू सो मच, लगातार कॉल्स मेरे पास आ रही हैं, सिस्टम कर रहा है धोखा, जिनकी कॉल्स कट रही हैं उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। एंड जारा जी लिख रही हेलो मैम मुझको गाना सुना दो, बरसात का बहाना अच्छा है। तो भैया आपको करना पड़ेगा कॉल 6393316429 पर, तभी हम आपके गाने को कर पाएंगे प्ले। एंड इसी के बाद महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। मुझे ऑन ईयर क्यों नहीं लिया, बोलो बोलो, क्योंकि भैया जब आपने कॉल किया था तब मैं बस प्रिपेयर कर रही थी ऑन ईयर आने के लिए, तब तक के लिए आपका कॉल कट चुका था। और आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिए गुलफ्शा जी, आपके साथ हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त है खेलने के लिए, तो एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गुंडा। आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले हम एंजॉय करते हैं हमारे अगले गाने को। ऑफ कोर्स ये गाना किसका है ये आप भी जानते हैं, विकास तिवारी फ्रॉम उन्नाव, मेघा रे मेघा। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस बात, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: करते हमारे पास एक और लिसनर जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। लेट्स सी कौन है हमारे साथ और क्या है उनका नाम। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, प्लीज अपना नाम बता दीजिए।
1: जी, मैं त्रिपुरा से अविनाश तेली बोल रहा हूँ।
0: अविनाश जी, त्रिपुरा से स्वागत करते हैं आपका। कैसे हैं आप और आपके उधर का मौसम कैसा है?
1: जी, मौसम तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रहा है, मौसम बढ़िया है, सुहाना बना हुआ है।
0: ओके, तो चलिए ये बताइए कि आप हमारे साथ टंग ट्विस्टर वाला गेम खेलेंगे?
1: हाँ, पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाते हैं।
0: ओके ठीक है, आपको बोलना है नीली रील पीली रील, पीली रील नीली रील।
1: क्या नीली? क्या नीली?
0: नीली रील पीली रील, पीली रील नीली रील।
1: नीली रील पीली रील। अच्छा, दूसरा वाला कोई दीजिए फिर, ये तो थोड़ा सा दिक्कत है।
0: हाँ, इसमें दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए हम चेंज कर देते हैं। तोले पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पपीता पकड़े पिंकू।
1: अरे पक्का पपीता और कच्चा पपीता पता नहीं है क्या है।
0: तोले पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पपीता पका पेड़ पे।
1: नहीं, ये नहीं होगा।
0: सिर्फ दो ही तरीके थे, या तो नीली हो जाए या तो फिर पका पपीता। अब आप सोच लीजिए आप किस पे जाना पसंद करेंगे, नीली पीली या फिर पका पपीता।
1: नहीं, नहीं, तो फिर नीली सही है, क्योंकि नीली में थोड़ा छोटा लाइन है, इसमें हो सकता है सक्सेस हो जाए।
0: चलिए चलिए कोशिश कीजिए 5 बार। ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश यही पे करना है सर, और कोशिश नहीं करेंगे सर, इसलिए फोन काट चुके हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, यानी कि आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे विकास तिवारी जी के, और इस गाने के बाद हम मिलेंगे अपनी अगली फरमाइश पर।

0: और ये फरमाइश थी हमारे विकास जी की, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली कॉल की तरफ जो हमारे पास आ चुकी है। लेट्स सी कौन है और इनके साथ गेम्स में क्या होने वाला है। हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून।
0: नमस्ते, गुड आफ्टरनून, और आवाज आपकी कहाँ से है?
1: जी मैं नरेश प्रजापति फ्रॉम ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: ग्रीन सिटी क्लीन सिटी यानी कि इंदौर से आपका स्वागत करते हैं। और हमारे धर्मेंद्र जी का कहना है कुछ जीके वाले क्वेश्चन होने चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स हमारे लिस्ट में शामिल थे। एक एक करके मैं आपके लिए सवालों की कहो तो पेटरी खोल दूं।
1: जी जी जी,
0: पक्का?
1: पक्का पक्का, बोल दीजिए।
0: चलिए बताइए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था?
1: अच्छा, एक बार और बताइए इसको।
0: भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था?
1: तो इसके ऑप्शन मिलेंगे?
0: चलिए ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर।
1: दिल्ली, कोलकाता,
0: मुंबई या बेंगलोर? सात करोड़ का सवाल है जनाब।
1: महाराष्ट्र में है ये, मुंबई होगा।
0: पक्का? या आपने गूगल कर लिया है पीछे से?
1: नहीं,
0: चलिए बहुत सही जवाब, आपने सात करोड़ जीत लिए हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं तो मैं अमिताभ बच्चन से कहूंगी जाकर के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये बताइए कौन सा गाना है आपका?
1: जय देव जय देव
0: जय देव जय देव। ये जो
1: त्योहार है ना, ये भी महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है, गणेशोत्सव। जो मतलब हमने गणेश चतुर्थी से मनाया और आज अनंत चतुर्दशी है, तो
0: जी, जी।
1: ये बिल्कुल महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये त्योहार। चलिए, तो ये दो सवाल हो गए इससे जुड़े हुए।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप इंजॉय करते रहिए क्वालिटी उन गोंडा। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, आपका दिन शुभ हो।
1: जी
0: तो भैया, आपकी पेटरी के अंदर यानी कि आपकी बारी में कौन सा सवाल आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। तो तैयार रहिएगा, अभी अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, क्योंकि आज श्रीमती के दिमाग में खराबातों की कोई कमी है नहीं। और आपके चैट बॉक्स की तरफ भी चलते हैं, आपके चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस हैं। गुलाबशाह जी ने लिखा था, उसके बाद हमारे रेट्स कुमार जी लिख रहे हैं, आहा तुमको मैं उड़ाने इस दुनिया में आया हूँ। अरे पर उड़ाएंगे कहाँ, क्या आपके पास प्लेन है? मुस्तफ़ा जी ने हमें भेज दिया है बहुत सारी इमोजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं भी भेज सकता हूँ गाने? ऑफकोर्स मुस्तफ़ा जी ने की, और पूछ पूछ आप अपना गाना भेज सकते हैं। एंड गुलाबशाह जी, आप हमें प्लीज़ दोबारा से कॉल कर लीजिए। उस्मान खान लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून आज मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? और लिख रहे हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ भी बारिश बहुत हो रही है भैया, क्यों हो रही है मुझे बस जवाब दे दो इसका कोई। पहले मुझे बारिश बहुत रोमांटिक लगा करती थी, बहुत प्यारी लगती थी कि आसमान से बारिश गिर रही है, आहा क्या मजेदार सीन है। लेकिन फिर मैं गोंडा में आ गई और यहाँ आके मेरी गली में भर गया पानी, तब से मुझे बारिश से नहीं अच्छी लगती है दोस्त। और इसके बाद हमारे नागेश्वर धाकर जी जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार। गुड आफ्टरनून नागेश्वर धाकर जी, कैसे हैं आप? आपका भी वेलकम करते हैं हम क्वालिटी उन गोंडा में। इसके बाद जबरदस्त सॉन्ग, थैंक यू सो मच, बहुत सारी तारीफें हमारे रेट्स कुमार जी की तरफ से आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवास विकास लिख रहे हैं, उन्नति जी गुड आफ्टरनून, बारिश का मौसम आया है, सर्दी ने मुझे बहुत सताया है, मुझे भी सताया है, बिना पंखा एसी चलाए ही मुझे आज रोंगटे खड़े कर देने वाली हालत आ चुकी है, और मेरा मन कर रहा है कि जाके अभी जैकेट निकाल के पहन लूं, लेकिन अभी अगर जैकेट निकाल के पहनेंगे तो मेरी मम्मी कहेंगी चलो बेटा तुम्हारा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा के आते हैं। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो आप एंजॉय करने जा रहे हैं वो होने वाला है पहले तो अविनाश जी का, जिन्होंने हमें कॉल किया था और चीटिंग करते हुए बीच में फ़ोन कट कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, उनका गाना बेहद ही खूबसूरत है। और उसके बाद हम एंजॉय करेंगे हमारे अपने इंदौर से आए हुए जनाब नरेश जी की फरमाइश को। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। आप सुन रहे हैं क्वालिटी उन गोंडा विद आरजी रति, रेडियो ज्ञान 89.6 FM पर।

और ये फरमाइश थी। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। हम आपको बता दें ये फरमाइश थी हमारी अविनाश जी की फ्रॉम त्रिपुरा, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं नरेश प्रजापति की फरमाइश जयदेव जयदेव। मिलते हैं अगले गाने पर जो कि हमारी रीना शर्मा जी की होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो कॉल ट्यून गुंडा।

0: और इसी के बीच में हमारे पास एक और कॉलर जुड़ गए हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं और देखते हैं क्या वो मेरे सवालों के जवाब दे पाएंगे। हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ जी, आपका नाम बता दीजिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अरमान, पटेल नगर मरियाना।
0: अरमान जी, आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में, और आप हमारे साथ सवालों को जवाब देंगे या फिर टंग ट्विस्टर खेलेंगे?
1: सवालों का जवाब।
0: चलिए तो आपसे बात कर लेते हैं हम कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैचू जिसे बोलते हैं?
1: ये तो नहीं पता।
0: ओके, कभी आपने सुना है कि भारत में सबसे हाल फिलहाल में कौन सी स्टैचू बनाई गई है?
1: ये नहीं, आप चलिए गेम ही खेलते जो आप बोली थी, टंग ट्विस्टर वही।
0: चलिए, अगर आप टंग ट्विस्टर की बात करते हैं तो आपके लिए मेरे पास टंग ट्विस्टर है। नीली रील, पीली रील, पीली रील, नीली रील।
1: नीली रील, पीली रील, पीली रील, नीली रील।
0: अब इसको 5 बार बोलना है आपको, जल्दी जल्दी।
1: नीली रील, पीली रील, पीली रील, नीली रील, नीली।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं।
1: नीली रील, पीली रील, पीली रील, नीली रील। ये तो नहीं हो पाएगा।
0: चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बता दीजिए कौन सा गाना है आपका?
1: गाना मुझे कोई बढ़िया जो सुना
0: दीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कॉलर ट्यून गोंडा में, आपका दिन शुभ हो।
1: थैंक यू।
0: तो भाई ये तो थे हमारे अरमान जी, लेकिन अगर आपको पता है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति या फिर सबसे अच्छी स्टैचू कहाँ पर है तो चैट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमुख कुमार जी, आपका स्वागत करते हैं फ्रॉम लुधियाना। और आपने लिखा है कि हमारा कॉल नहीं बजेगा तो आपको करेले की सब्जी मिलेगी। आज ही हम करेले की सब्जी खा लेंगे, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा कॉलर ट्यून गोंडा में, क्योंकि कॉलिंग वाला प्रोग्राम है 6393164299936393314 तभी आपका गाना हम बजा सकते हैं। निखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के हमारे रीना शर्मा जी की बर्थडे विशेष को।

0: हाँ जी, तो हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं थोड़ी देर पहले टिकट पे वहाँ पर लाइन कट हो गई थी नेटवर्क के कारण से, तो फिर जुड़ते हैं।
0: ओके, तो आप जीके के सवालों के लिए तैयार हैं क्या?
1: जी जी, कोशिश करते हैं।
0: चलिए, तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ा स्टैचू जो है वो भारत में कहाँ है और किसका है?
1: जी, वो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भी हम जाने जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल की जो 182 मीटर से जो ऊंची बना हुआ है मूर्ति, वही है।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका। और इसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कहाँ पर है और कौन सा है?
1: तो कुतुब मीनार है, जो कि हम सभी जानते हैं।
0: क्या बात है, दोनों ही जवाब आपने बहुत सही दिए। और आपका नाम एक बार वापस से बताइएगा, प्लीज अपना गाना भी बताइएगा।
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश से बोला हूँ, गाना जो कि
0: आपका प्ले हो चुका है।
1: बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं गाना नहीं सुनूंगा, बस सवाल के लिए चला आया था।
0: चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। हमारे साथ टंग ट्विस्टर तो नहीं खेल पाया था, लेकिन जी के स्ट्रांग होने की वजह से उन्होंने अपना कमबैक कर लिया है। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे लिए बेहद ही स्पेशल है, क्योंकि आज रीना शर्मा जी के हस्बैंड का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू सर, एंड एंजॉय कीजिए आपके लिए सोनू निगम की आवाज़ में ये वाला गाना।

और ये फरमाइश थी हमारे रीना शर्मा जी की। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हम जो आपके लिए सुनाने जा रहे हैं वो है हमारे सुनील जी का, एंड गाने का नाम है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। राजा हिंदुस्तानी से इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने पर। अगली फरमाइश को लेकर के अलका जी और उदित नारायण की आवाज में है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड इसी के साथ आपके चैट बॉक्स की तरफ अश्योर जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। नरेश प्रजापति ने लिखा है सॉरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बिल्कुल सही जवाब था। हमारी रोशनी रावत जी ने हमें सही जवाब दिया था। एंड ओके उन्नति जी, आपका कॉमेडियन भी बहुत सकता है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गुंडा, मिलते हैं इस गाने के उस पार आपके अपने वाले शो, अपने वाले कॉल ट्यून में और आपके अपने रेडियो पर, यानी कि गोंडा का अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस 89.6 FM।

0: और ये हमारी फरमाइश थी सुनील जी की, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास जो आई है वो आई है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की, तो एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा। और ये फरमाइश है आवाज विकास से, आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम विद राजयुनति, और ये आपका कॉलिंग प्रोग्राम फरमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा 2 घंटे यानी कि फ्राइडे स्पेशल। स्टे ट्यून्ड।
1: मुझे भी तुम बहुत पसंद हो।

और ये फरमाइश थी हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फ्रॉम आवास विकास। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना जो हमारे पास आया है वो आया है देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर। वो सुनना चाहते हैं क्या करते थे साजना, तो इंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गुना। और आपको करना पड़ेगा कॉल क्योंकि ये है कॉलिंग वाला प्रोग्राम। अगर आपको करनी है अपनी फरमाइश तो उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429, अपनी फरमाइश हम तक भेज दीजिए। इंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गुना विद राजू नती ओनली ऑन रेडियो ज्ञान 89.6 FM पर।

और ये फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी की, एंड इसी के साथ आते हैं, बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना जो हमारे पास है वो है राज कमल जी की फरमाइश, और इसके बाद हम एंजॉय करेंगे हमारी गुलाबशाह जी की, सुरेंद्र यादव जी की, और ऑफ कोर्स हमारी अगला गाना जो होगा वो है निब्बर जी का, अरविंद जी का, गुलजार जी का, मुमताज अंसारी जी का, विकास तिवारी जी का गाना जो हम प्ले कर चुके हैं ऑफ कोर्स, एंड इसके बाद सुरेश जी का। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा विद योर आरजे उन्नति।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो है गुलाबशा जी की फरमाइश, और वो सुनना चाहती हैं 90s का कोई बेहद ही रोमांटिक गाना। तो आइए इंजॉय करते हैं और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए। अगली फरमाइश हमारे पास सुरेंद्र यादव जी की है, तो एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गुंडा। और अगर आपको करनी है फरमाइश तो करना पड़ेगा कॉल, बिकॉज कॉलिंग नंबर है आपका 6393316429 और ये है कॉलिंग वाला प्रोग्राम। जी हाँ, ज़ारा खान आपका गाना मुझे मिल गया है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस कुछ ही पलों बाद, कुछ ही लम्हों के बाद मैं आपका गाना प्ले करती हूँ, तो बने रहिए, सुनते रहिए।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। सुरेंद्र जी की फरमाइश है, एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। खुददार फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं अलका जी और कुमार सानू की आवाज़ में। 1994 में इस गाने को रिलीज किया गया था एंड इसके बाद हम मिलेंगे हमारे निब्बर जी अरविंद जी की फरमाइश को ले करके। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए कॉल ट्यून गुंडा आपकी अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। अगली फरमाइश हमारे पास आई है निब्बर जी की। ऑफ कोर्स सुनते रहिए आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारी बहुत ही प्यारी निब्बर जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास है अरविंद जी की फरमाइश का। इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारे गुलजार जी का, मुमताज अंसारी जी का, सुरेश जी का और राजू सलमानी जी का होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे अरविंद जी की, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। गुलजार जी की फरमाइश पे आप सुनने जा रहे हैं जीते जी मर गया, एंड इसी के साथ हम मिलेंगे अपने अगले गाने पर। अगली फरमाइश हमारे पास है मुमताज अंसारी जी की, सुरेश जी की, राजू सलमानी जी की, अरमान जी की, एहसान जी की और हमारी गुलफशा जी के लिए एक डेडिकेटेड सॉन्ग है। इसके बाद है हमारे संजय जी की, महेंद्र जी की, विनीत जी की और उस्मान खान जी की। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून को।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास आया है मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। एंजॉय करते रहिए तुम्हारी नजरों में हमने देखा, कल की आवाज 1992 फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं कुमार सानू और आशा जी की आवाज में ये बेहतरीन सा नगमा।

और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश। आइए एंजॉय करते हैं सुरेश कुमार जी की, जो हमें सुन रहे हैं चौक से, उनकी फरमाइश को आई आर ए खिलौने वाला। और इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली गाने की तरफ, जो कि राजू सलमानी जी की होने वाली है, अरमान जी की होगी। एहसान और हमारी एक और प्यारी सी लिसनर, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है लेकिन गाना किसके लिए डेडिकेट किया है ये उन्होंने बताया हुआ है, संजय जी, महेंद्र जी, विनीत जी और उस्मान खान जी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा विद राजू नदी।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अभी आपने एंजॉय किया हमारे सुरेश कुमार जी की फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास आई है राजू सलमानी जी की, सुन रहे हैं मुस्कुराते रहिए। एंड इसी के साथ हम मिलेंगे अगले गाने पर, अगली फरमाइश को लेकर के। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गुंडा गुंडा के अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर विद राजनीति।

और आप बहुत ही बेहतरीन सा नगमा एंजॉय कर रहे थे। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आइए एहसान जी की, और वो एंजॉय करना चाहते हैं, तुझको ना देखूं तो चैन आता है। एंड इसी के साथ एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने की उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: तेरे लिए।
1: और भैया वक्त को मद्देनजर रखते हुए अब करनी पड़ेगी अपनी स्पीड को डबल, क्योंकि टाइम होता जा रहा है आपसे विदा लेने का। और हमारे साथ चैट बॉक्स में अमित जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। 1 घंटे 39 मिनट के बाद आपकी एनर्जी कुछ लो लग रही है मैम। सबने आपसे आपने सबसे पूछा था एक्चुअली कि सबके घर में क्या बना है, सांबा स्टाइल में बताइए, और आपके घर में क्या बना है, कुछ खा के नहीं आई है ना आप। आज ही हम खा कर आए थे और हमने जो खाया था वो बहुत ही हेल्दी था, यानी कि हम बेसन का चीला खा के आए थे। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए कॉल ऑफ गोंडा, और हम मिलेंगे अगले गाने पर अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए आइए एंजॉय करते हैं हमारे एहसान जी की फरमाइश को।

ये फरमाइश थी हमारे एहसान जी की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। गुलाबशाह जी को डेडिकेटेड गाना है, साचन मेरा उस पार है, बहुत ही प्यारे लिसनर्स की तरफ से है और आई होप आप समझ गई होंगी। गुलाबशाह जी, रचना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो मैम, हेलो, कैसी हैं आप? आपका स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गो नाम है। यहाँ धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ से बहुत सारे इमोजीज आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे पास है वो है संजय जी की फरमाइश, दू तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। इंजॉय करते रहिए और सेम काम भैया मेरा माइकल मेरे साथ करता है, कहीं भी रहती हूँ वो मुझे ढूंढ ही लेता है। फिलहाल सबका अपना अपना चांद, सबका अपना अपना आसमान, सबकी अपनी अपनी मोहब्बत की कहानी, एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने पर जो कि हमारे महेंद्र जी की, विनीत जी की और उस्मान खान जी की है। तो बैक टू बैक एंजॉय करते रहिए कॉलेज गुना।

और ये फरमाइश थी हमारे संजय जी की, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगले गाने की तरफ। जुदाई का टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं हमारे महेंद्र जी, एंजॉय करते रहिए। इसके बाद लगातार दो फरमाइशें हमारे पास और हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून कोना में। आज का प्रोग्राम बाकी सारे दिन से बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गुड बाय, टेक केयर मैम, मैं आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, कल जल्दी आ जाऊँगा। ओके, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा विकास जी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून कोना विद राजा नदी।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास है हमारे विनीत तिवारी जी की, तो एंजॉय करते रहिए एंड अब मिलेंगे हम आपसे अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की ओर, जो कि अलका जी की आवाज़ में है, थम के बरस। और ये गाने की फरमाइश आई है हमारे पास उस्मान खान जी की तरफ से। सो एंजॉय करते रहिए, आप एंजॉय कर रहे थे कॉल ट्यून गुंडा गुंडा के अपना FM रेडियो 89.6 FM पर। एंड जाने से पहले ये गाना उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे मुस्तफ़ा जी हैं, हमारे धर्मेंद्र मोहन जी हैं। एंड आज हम माफ़ी चाहेंगे, हम अपने इम्तियाज़ जी की फरमाइश को नहीं प्ले कर पाए थे। तो भैया इम्तियाज़ जी, आपके लिए ये गाना डेडिकेटेड है, तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहूँगी, आपका गाना कल ज़रूर से प्ले कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आप रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे थे कॉल अच्छी उनको ना विदुराज उन्नति, और ये गाना आप सभी के लिए डेडिकेटेड है मेरी तरफ से।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव
2: और मैं रचना शर्मा,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित जन सेवा देश सेवा प्रदर्शनी का आयोजन गोंडा टाउन हॉल के निकट किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं जनहितकारी कार्यक्रमों की जानकारी आकर्षक ढंग से प्रदर्शित की गई है। कई स्कूली छात्र सहित प्रदर्शनी के दौरान अब तक 250 से अधिक लोगों ने पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, तथा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रदर्शनी में योजनाओं से संबंधित पोस्टर, बैनर, चित्र एवं सूचना सामग्री के माध्यम से आमजन को पात्रता, लाभ तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। इस दौरान लोगों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित सामग्री में रुचि दिखाई तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त किया है।
2: गोंडा जिले के तरबगंज विकास खंड की चंदीपुर ग्राम पंचायत में सड़क की हालत बेहद खराब है। बरसात के मौसम में ये सड़क झाड़ियों से घिर गई है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं। रात के समय इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू जैसे जीव जंतुओं का भी डर बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव पंचायत में पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी अक्सर गायब रहते हैं। सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियां जिम्मेदारों की लापरवाही को साफ दिखाती है। ग्रामीणों के अनुसार पीडब्ल्यू विभाग कागजों में तो काम तेजी से हो रहा है, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। संजय, अंकित, कृष्णदेव, विवेक और सुनील जैसे ग्रामीणों ने सड़क की पटरियों और रास्ते पर बने बड़े बड़े गड्ढों में गिट्टी डलवा कर आवागमन आसान बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन कई गांव पंचायत के लोग तरबगंज और रानीपुर इंडियन बैंक तक आते जाते हैं, जिन्हें इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
1: जनपद गोंडा के सहकारी गन्ना विकास समिति भभुआ की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक भभुआ में स्थित सहकारी गन्ना विकास कार्यालय में आयोजित हुई। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष चंद्रेश प्रताप सिंह ओजू ने की। बैठक में बेहतर गन्ना उत्पादन करने वाले 3 किसानों को नगद पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इस दौरान प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किसान भवानी भगत सिंह निवासी भवन मदार माझा को 10,000 रूपए तथा द्वितीय स्थान वाले किसान रामानंद सिंह निवासी बहुवन मदार माझा 750 रूपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शीला देवी को 5,000 रूपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा समिति के सभी डेलीगेट्स को माला पहनाकर सम्मानित किया गया।
2: गोंडा जिले में 29 सितंबर से शुरू हो रहे शिक्षक MLC चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां बुधवार सुबह 10 बजे से तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तहत गोंडा जिले के 2,805 मतदाता इस चुनाव में वोट डालेंगे। वर्तमान में ध्रुव कुमार त्रिपाठी इस क्षेत्र से MLC हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिले में 12 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 2,805 शिक्षक मतदाता नई विधान परिषद सदस्यता के लिए मतदान करेंगे। चुनाव की रूपरेखा तय होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और निष्पक्ष चुनाव करने के निर्देश भी दिए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद रजी ने बताया कि आयोग का कार्यक्रम जारी होते ही प्रशासनिक अमला तैयार हो गया है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया अलग अलग तारीखों में होगी। निर्वाचन अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। इसी दिन नामांकन भी शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर होगी।
1: लेखपालों ने किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश में तहसील में कार्यरत करीब 72 लेखपालों ने एक एक राजस्व ग्राम को छोड़कर अन्य के बस्ते तहसील में जमा कर दिए। इसमें 264 राजस्व गाँव में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। बता दें कि लेखपाल संघ के पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार तिवारी, मनीष कुमार व फयाज अहमद ने बताया कि तहसील के 336 राजस्व गाँव में लेखपाल के 182 पदों के सापेक्ष वर्तमान में केवल 80 की तैनाती की गई है। इसमें 4 मातृत्व अवकाश पर हैं तथा इनके कार्यालय से संबद्ध बस्ता जमा होने से इन अतिरिक्त गाँव में आय, जात, निवास व खतौनी संशोधन समेत अन्य कार्य ठप रहेंगे।
2: गोंडा की नगर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिक विद्यालय से गैस सिलेंडर चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किया गया गैस सिलेंडर, लोहे की रेती और 1150 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान समीर खान के रूप में हुई है। मामला 20 सितंबर की रात का है। शिक्षा क्षेत्र झंझरी के प्राथमिक विद्यालय परेड सरकार की रसोई का कुंडा काट कर ताला तोड़ दिया गया था। इसके बाद रसोई में रखा गैस सिलेंडर चोरी कर लिया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। 22 सितंबर को जेल रोड चौकी प्रभारी शुभांशु पाठक की टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद बोरे में गैस सिलेंडर लेकर नया पूर्वा तिराहे की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से लाल रंग का गैस सिलेंडर, लोहे की रेती और 1150 रुपए नकद मिले। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने प्राथमिक विद्यालय से सिलेंडर चोरी करने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपी समीर खान आसरा आवास सिविल लाइन पंतनगर का रहने वाला है।
1: जनपद गोंडा में 29 सितंबर से ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की तैयारियों के क्रम में जनपद गोंडा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC 29 सितंबर 2026 शुरू होगी। यह कार्य ईवीएम वेयरहाउस कलेक्ट्रेट परिसर गोंडा में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जाएगा। बता दें कि अपर जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के लिए आवंटित ईवीएम के मेक M3 मॉडल ईवीएम एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग कराई जानी है। FLC की प्रक्रिया के दौरान जनपद के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारी अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। FLC हाउस में प्रवेश के लिए राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को फोटो युक्त पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पर अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर तथा 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो 26 सितंबर 2026 तक जिला निर्वाचन कार्यालय गोंडा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2: गोंडा के विकास भवन परिसर में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर सेवा पखवाड़ा जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य विकास अधिकारी CTO दयानंद प्रसाद ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली आयुष मंत्रालय की इस साल की थीम स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद के तहत आयोजित की गई। इसका मकसद लोगों को पारंपरिक चिकित्सा, अच्छी दिनचर्या और आयुर्वेद के महत्व के बारे में जागरूक करना है। रैली शुरू करते समय CTO ने वहां मौजूद लोगों और युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज का तरीका नहीं बल्कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की कला है। उन्होंने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत साफ सफाई, अच्छे स्वास्थ्य और प्राकृतिक इलाज को अपनाने पर जोर दिया। इस जागरूकता रैली में आयुष विभाग के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, विकास भवन के कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। रैली विकास भवन परिसर से शुरू होकर शहर के कई रास्तों से गुजरी। यहाँ नारे और बैनर के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और औषधीय पौधों को बचाने का संदेश दिया गया।
1: जनपद गोंडा में चंचल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। वैज्ञानिक खेती, फसल प्रबंधन अनुसंधान एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादों के प्रयोग पर हुआ प्रशिक्षण। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा C2 हार्वेस्ट योजना के अंतर्गत विकास खंड तरबगंज के ग्राम पिपरी नारायणपुर में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को वैज्ञानिक खेती, संतुलित उर्वरक, फसल प्रबंधन तथा विभिन्न कृषि उत्पादों के उपयोग के संबंध में जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ग्राम प्रधान नारायणपुर विजय वर्मा ने किसानों को फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करने तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के विपणन प्रबंधक नमन पांडे ने किसानों को मृदा प्रशिक्षण की संस्तुति के आधार पर खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कंपनी के विभिन्न उत्पादों की उपयोगिता एवं उनके प्रयोग की जानकारी देते हुए खेती एवं उत्पादों से संबंधित जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800180555 पर संपर्क किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र मनकापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामलखन सिंह ने धान, खरीफ, मक्का एवं गन्ने में समसामयिक कृषि कार्य, तरोई, सरसों, रबी मक्का एवं शरदकालीन गन्ने की खेती वैज्ञानिक ढंग से बताया गया।
2: गोंडा में गुरुवार सुबह खराब मौसम और तेज बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद BSA अमित कुमार सिंह ने सुबह 7 बजे से जिले के सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के साथ एडेड मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और CBSE ICSE बोर्ड के स्कूलों पर भी लागू होगा। सुबह स्कूल जाने के समय बारिश होने से छोटे बच्चों और अभिभावकों को परेशानी हो रही थी। कई जगह पानी भरने और फिसलन की स्थिति बनने के कारण बच्चों के गिरने और चोट लगने का खतरा बना था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल छुट्टी का आदेश जारी किया है।
1: नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए करें आवेदन। बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2027 एवं 28 में कक्षा 9 एवं 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट TEST 2027 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी किया है। नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य लालता प्रसाद शर्मा इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी तथा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
2: गोंडा जिले के शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में बुधवार दोपहर 2 बजे विकसित भारत 2047 पर एक रंगोली प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित की। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के बच्चों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अलग अलग रंगोलियां बनाई। इन रंगोलियों के जरिए विकसित भारत 2047 का सपना दिखाया गया। तीनों विभागों द्वारा इस अभियान के तहत किए जा रहे कामों की भी प्रदर्शनी लगाई गई।
1: जनपद गोंडा में दिव्यांगजनों ने पेंशन न मिलने पर किया जोरदार प्रदर्शन। 6 माह से पेंशन न मिलने से परेशान दिव्यांगजनों ने कलेक्ट्रेट के टीन शेड में प्रदर्शन किया है। दिव्यांगों का कहना है कि पेंशन नहीं मिलने से राशन, इलाज और बिजली बिल का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश सचिव निशक्त जन प्रकोष्ठ अरुण तिवारी के मुताबिक कई दिव्यांगों को पिछले 6 माह से 1000 रूपए प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने पेंशन बढ़ाकर 5000 रूपए करने और रोजगार की व्यवस्था की मांग की है। दिव्यांग मुकेश कुमार चौहान, मोहम्मद शफीक आदि ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। समस्याओं का समाधान न होने पर अंबेडकर चौराहा जाम कर आंदोलन की चेतावनी भी दिया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी माधवी पांडे ने बताया कि तकनीकी कारणों से पोर्टल संचालन में समस्या आ रही है। दिव्यांगजनों को जल्द ही पेंशन बहाली हो जाएगी।
2: गोंडा के कटरा बाजार में बुधवार तड़के 12:30 बजे पुलिस और SGO टीम की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ बनगांव से कटरा बाजार आने वाली सड़क पर हुई। पुलिस ने गौकशी करने वाले मुख्य आरोपी कबीउल्लाह के साथ उसके 2 साथी सुहेल और शमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी कबीउल्लाह के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
1: जनपद गोंडा में वेतन विसंगत के मुद्दे पर चिकित्सक ने किया मुखर। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री योगी को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंप कर वेतन विसंगत दूर करने की मांग किया है। आयुष डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर फारूक सगीर, महामंत्री चंदन यादव और कोसा अध्यक्ष डॉक्टर रमेश मौर्या के नेतृत्व में चिकित्सकों ने सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा और CMO डॉक्टर संतलाल पटेल को ज्ञापन सौंपा है। चिकित्सकों ने कहा कि वर्ष 2010-11 में MBBS और आयुष चिकित्सक को 24,000 रुपए समान वेतन मिला था। वर्तमान में MBBS चिकित्सक को करीब 1,00,000 रुपए जबकि आयुष चिकित्सक को 32,000 रुपए वेतन मिल रहा है। उन्होंने वेतन विसंगत दूर करने की मांग उठाई है।
2: जनपद गोंडा में नुक्कड़ नाटक से योजनाओं का प्रचार। गोंडा में सेवा संकल्प अभियान के तहत महनौन विधानसभा क्षेत्र के खरगोपुर बस स्टॉप चौराहा और भवानीपुर उपाध्याय चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। कलाकारों ने रोचक संवादों के जरिए केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ बताए गए। पात्र लोगों को संबंधित विभागों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसी दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
1: जनपद गोंडा के बाढ़ प्रभावित गांवों में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। जनपद की तहसील तरबगंज एवं करनेलगंज के बाढ़ प्रभावित गाँव में बाढ़ का पानी उतरने के बाद संक्रामक बीमारियां एवं प्रभावित महामारियों की रोकथाम के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग के समन्वय से सफाई कर्मचारियों की विशेष टोलियां गठित कर प्रभावित गांवों में लगातार साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। बाढ़ के बाद जलभराव वाले क्षेत्रों में गंदगी, कीचड़ तथा मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ रही है, जिससे विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। साफ सफाई कर्मचारियों की टोलियों तथा गाँव में गलियों में सार्वजनिक स्थलों पर तथा अन्य चिन्हित स्थानों की साफ सफाई के साथ साथ चूना छिड़काव का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। जलभराव वाले स्थानों पर मच्छर के संभावित प्रजनन स्थलों को चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है, ताकि मच्छर जनित एवं अन्य संक्रामक बीमारियों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने तहसील तरबगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की सुनी समस्याएं। संपूर्ण समाधान दिवस तरबगंज में 144 शिकायतों में से 15 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिए गए हैं। बता दें कि शासन की मंशानुरूप जनसामान की शिकायतों एवं समस्याओं का एक ही स्थल पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तहसील तरबगंज में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा शिकायतों का त्वरित एवं समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया है। जन सुनवाई के दौरान तहसील तरबगंज में कुल 114 प्रार्थना पत्र मौके पर प्राप्त हुए, जिसमें 15 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। शेष 99 प्रार्थना पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु आख्या समय से तहसील में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनपद में मनरेगा के तहत निर्मित तालाब का किया गया स्थलीय निरीक्षण। खानपुर में विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता की ली जानकारी। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि विकास खंड तरबगंज की ग्राम पंचायत खानपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 एवं 21 में निर्मित तालाब का जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तालाब की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए मौके पर उपस्थित डीसी मनरेगा एवं खंड विकास अधिकारी तरबगंज से तालाब के निर्माण तथा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारियां प्राप्त की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से तालाब के निर्माण की स्वीकृति, कार्य की लागत, कार्य दिवस के सृजन एवं उनके ग्रामीणों को प्राप्त होने वाले लाभ के संबंध में जानकारियां हासिल की। उन्होंने तालाब के रखरखाव, जल संचय की स्थिति तथा वर्तमान उपयोगिता का भी अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह भी जानकारी प्राप्त किया कि मनरेगा के अंतर्गत निर्मित इस परिसंपत्ति का ग्रामीणों को किस प्रकार लाभ मिल रहा है। खेलों से होता है सर्वांगीण विकास, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा। विद्या भारती के मार्गदर्शन में चल रहे 37वें खेलकूद समारोह का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोंडा में संपन्न हुए खेल समारोह के समापन अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका

0: सर्वाग्र विकास होता है। समारोह का वृत्त निवेदन प्रदेश निरीक्षक रामजी सिंह ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित विभाग प्रचारक प्रवीण ने अपने संबोधन में कहा कि खेल हमें आत्मीयता अनुशासन की सीख देते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान करते हुए कहा कि अपने खेल विधा में निरंतरता लाते हुए समाज के लिए संकल्पित रहें। चार दिवसीय इस खेल समारोह में अवध प्रांत के 13 जनपदों में 251 बालक, 184 बालिका, 52 संरक्षक, 26 निर्णायक एवं 4 दर्जन से अधिक व्यवस्था से जुड़े लोगों ने प्रतिभाग किया है। जनपद गोंडा में गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद निर्वाचन 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद गोंडा में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया गया है। गठित समिति के अध्यक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी गोंडा होंगे। समिति में समस्त उप जिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी तथा अभियांत्रिक सहायक दूरदर्शन केंद्र गोंडा को सदस्य बनाया गया है। जनसंपर्क अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी गोंडा समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के द्वारा निर्वाचन के दौरान मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित समाचार, विज्ञापन तथा अन्य प्रचार सामग्री की निगरानी की जाएगी। विशेष रूप से पेड न्यूज की सघन जांच करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।
1: गोंडा में मान्यता के नियमों की अनदेखी करने वाले निजी स्कूलों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तय मान्यता से ज्यादा कक्षाएं चलाने वाले 6 स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। विभाग की पहली हुई जांच में इन स्कूलों में मान्यता से ऊपर की कक्षाएं संचालित मिली थी। इसके बाद प्रबंधकों को नोटिस देकर ऐसी कक्षाएं तत्काल बंद करने का और उनमें पढ़ रहे बच्चों का दाखिला नजदीकी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कराने के निर्देश दिए गए थे। कुछ प्रबंधकों ने शपथ पत्र देकर नियमों का पालन करने का भरोसा भी दिया था। दोबारा शिकायतों और जांच में कक्षाएं चलती मिलने के बाद विभाग ने अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मनकापुर तहसील के लेखपालों ने मंगलवार को अतिरिक्त गांवों का राजस्व काम करने के विरोध में अपने बस्ते तहसील में जमा कर दिए। लेखपालों ने अपने मूल तैनाती वाले गांवों के साथ सौंपे गए अतिरिक्त गांवों के राजस्व रिकॉर्ड भी जमा किए हैं। इस कदम से अतिरिक्त प्रभार वाले गांवों में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और दूसरे राजस्व से जुड़े काम पर असर पड़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के कहने पर तहसील के कई लेखपाल अपने अतिरिक्त काम वाले इलाकों के खसरा खतौनी समेत दूसरे राजस्व रिकॉर्ड लेकर तहसील पहुंचे। मीटिंग हॉल में संघ के अध्यक्ष स्वामीनाथ शुक्ल और मंत्री रामपूजन सिंह यादव की देखरेख में सभी बस्ते जमा किए गए। लेखपाल संघ ने पहले भी अपनी कई मांगों को लेकर SDM उदित पवार को एक ज्ञापन दिया था। ये ज्ञापन मुख्य सचिव को भेजा गया था। इसमें साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो जिले और तहसील के लेखपाल अतिरिक्त काम नहीं करेंगे, वो अतिरिक्त गांवों के राजस्व रिकॉर्ड भी जमा कर देंगे। संघ के मुख्य मांगों में अंतरमंडलीय ट्रांसफर, 2800 रुपए ग्रेड पे के लिए और परीक्षा परिणाम व प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है।
0: तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं इंद्रेश।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य

0: राशि उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, मैं हूं आपकी फेवरेट आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सांझी विरासत। सांझी विरासत, जहां हम सहेजने वाले हैं भारत की कला को। आज हम बात करने वाले हैं मधुबनी कला के बारे में, यानी मधुबनी चित्रकला। पुराने समय से ही भारत को कला और संस्कृति का देश माना गया है। आज हम उसी कला और संस्कृति को सहेजने का एक छोटा सा प्रयास करने वाले हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है सांझी विरासत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चित्रकला की जो सदियों पुरानी है, मगर उसकी खोज अभी हाल ही में हुई, कुछ वर्षों पहले। मगर अगर बात की जाए उस कला की, यानी उस चित्रकला की, तो ये लोक चित्रकला काफी ज्यादा पॉपुलर रही है और आज मॉडर्न लोग भी इसे अपना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मधुबनी की। मधुबनी भारत के बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। मधुबनी दो शब्दों से मिलकर बना है, मधु और बनी। मधु का मतलब है शहद और बनी का मतलब है जंगल, यानी शहद का जंगल। ये पेंटिंग बिहार के मधुबनी जिले की एक स्थानीय कला है, जिसकी वजह से इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये पेंटिंग बिहार की एक प्रमुख चित्रकला है। कहा जाता है कि इस कला की शुरुआत रामायण के युग में हुई थी। उस समय राजा जनक ने माँ सीता के विवाह के अवसर पर इसे गांव की औरतों से बनवाया था। मधुबनी पेंटिंग में ज्यादातर कुल देवी देवताओं का चित्रण देखने को मिलता है और ये पेंटिंग मूलतः दो प्रकार की होती है, भीक्ति चित्र और अरिपन यानी अल्पना। आपको बता दें कि मधुबनी पेंटिंग को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलाओं में से एक माना गया है। पहले इस पेंटिंग को महिलाओं के द्वारा केवल दीवारों, पत्थरों पर ही बनाया जाता था, परंतु वक्त के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता चला गया और अब इसे कपड़ों और पेपर पर भरपूर मात्रा में बनाया जाने लगा है। साथ ही अब यह कला महिलाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुरुष भी इस कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पेंटिंग मानव विचार के लिए अभिव्यक्ति का एक तरीका है। भारतीय संदर्भ में कला का उदय तब हुआ जब होमो सैपियंस यानी कि इंसान मिट्टी की सतह पर टहनियों, उंगलियों या हड्डी के बिंदुओं के माध्यम से चित्रित किए गए, जो समय के विनाश का सामना नहीं कर सके, और वो कलाएं आज भी प्रचलित हैं। मध्य पाषाण काल की गुफाओं से मिले शुरुआती उपलब्ध उदाहरण ने लोगों के दैनिक जीवन में उनकी निरंतर उपस्थिति के साथ अपना रास्ता विकसित किया। इस प्रकार भारत की दीवार चित्रकला परंपरा का विकास हुआ, जिसका मधुबनी एक प्रसिद्ध नाम है। मशहूर मधुबनी पेंटर आरती दयाल कहती है कि उनकी तीन पीढ़ियां मधुबनी आर्ट में पारंगत रही हैं, और उनके कहने के मुताबिक मधुबनी आर्ट यानी कि मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला, जिस भी नाम से आप उसे पुकार लें, वो बहुत ही अहम है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, यही सेम शब्द उनके रहे हैं। वो कहना चाहती हैं कि जो भी भाव आपके मन में होंगे वो आप अपनी मधुबनी चित्रकला में प्रदर्शित करते हैं। एक किस्सा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार उनकी माँ थोड़ा सा निराश महसूस कर रही थी, और उस दिन मधुबनी पेंटिंग करते वक्त उनकी राधा मुस्कुराई नहीं। वो ये कहना चाहती हैं, मधुबनी पेंटिंग जो है वो एक सच्चा भाव व्यक्त करती है। अगर आप मन से प्रसन्न हैं, अगर प्रसन्नचित होकर आप पेंटिंग बना रहे हैं, तो आपकी पेंटिंग भी मुस्कुराएगी, वरना नहीं मुस्कुराएगी। बिहार के मधुबनी जिले की अगर बात की जाए तो आरती दयाल जी के मुताबिक कई सारे ऐसे वहाँ पर मधुबनी के कलाकार हैं जो ये कहते हैं कि वो पेंटिंग नहीं बना रहे, वो रंग नहीं भर रहे, बल्कि वो लिख रहे हैं। वो उनकी कहानी कहने का एक तरीका है। तो आइए हम जानते हैं कि मधुबनी आर्ट यानी कि मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट इज सच अ फैसिनेटिंग आर्ट कंपोज्ड ऑफ मैजिकल कलर्स एंड डिवाइन फीलिंग्स। मधुबनी चित्रों की उत्पत्ति उत्तर भारतीय मिथिला के मधुबनी नगर बिहार राज्य से मानी जाती है। मधुबनी कला की उत्पत्ति का सटीक कारण या समय अज्ञात है। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि ये रामायण युग से चली आ रही है, यानी कि त्रेता युग। मधुबनी कला बिहार के मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिलों में सबसे अधिक प्रचलित है। इस कला में गहरे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें धातु रंग अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है। मधुबनी कला में मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा बनाए जाने वाले चित्र होते हैं, जो पौधे, फूल, पक्षियों, जानवरों और जानवरों के पूजन आदि के विषय पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा मधुबनी कला में कुल देवी देवता जैसे लक्ष्मी, गणेश, कृष्ण, राधा, सीता, राम और पार्वती, शिव जैसे देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। वहीं अपनी भाषा को या अपने भाव को व्यक्त करने के लिए मछली, मोर, हाथी, चांद और सूरज ये बहुत ही अहम सिंबल माने जाते हैं। कहा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग राजा जनक की बेटी माँ सीता के जन्म स्थान मिथिला के प्राचीन शहर में विकसित हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मिथिला पेंटिंग राजा द्वारा अयोध्या के भगवान श्री राम से अपनी बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। इसे कुलीन कला या शुद्ध जातियों की कला के रूप में मान्यता आगे जाकर मिल चुकी थी। ये मुख्य रूप से सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाओं यानी सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस के रूप में घरेलू कला के रूप में हलती पुलती रही। इस कला की बढ़ती मांग के कारण कलाकार खुद को दीवारों तक सीमित रखना बंद कर कैनवस, कागज और कपड़े तथा अन्य वस्तुओं पर पेंटिंग करना शुरू कर दिए। हालांकि ये कला अभी भी हमें धीरे धीरे लुप्त होती दिखाई पड़ रही है। दार्शनिक रूप से मधुबनी पेंटिंग द्वैतवाद के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डुअलिज्म पर आधारित एक जीवित परंपरा है, जहां विपरीत द्वैतवाद में चलते दिन हो या रात, सूर्य या चंद्रमा आदि, वे एक समग्र ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते और देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा, वनस्पति और जीव इन सब से लबरेज है। इसमें बौद्ध धर्म, तांत्रिक प्रतीक, इस्लामी सूफीवाद और शास्त्रीय हिंदू धर्म के प्रतीक भी शामिल हैं। हम ये तो जान गए कि मधुबनी पेंटिंग यानी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका ओरिजिन क्या था, मगर अब बारी आती है ये जानने की कि इसकी खोज कैसे हुई। हम ये तो जानते हैं कि ये रामायण युग की है, मगर त्रेता युग बीते कई युग बीत गए और अब कलयुग है, तो कलयुग में कैसे डिस्कवर हुई मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। आई इस बारे में जानते हैं। वर्तमान संदर्भ में मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला परंपरा की खोज 1934 में मधुबनी जिले के एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम जी आर्चर ने की, जब बिहार में एक बड़ा भूकंप आया था। उन्होंने इन चित्रों को घर की भीतरी दीवारों में देखा था। उसके बाद उन्होंने बेहतर गुणवत्ता और व्यापक थीम वाले मधुबनी चित्रों का भंडार रखा। अगर हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग के इतिहास की और उसके शुरुआती दौर की, तो आपको बता दें कि साल 1934 से पहले मधुबनी पेंटिंग को केवल गांव की एक लोक कला के रूप में जाना जाता था, लेकिन साल 1934 में मिथिलांचल में आए भूकंप के बाद से ये केवल लोक कला के तौर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कला के तौर पर जाना जाने लगा। कहा जाता है कि जब विलियम आर्चर, जो उस समय मधुबनी के ब्रिटिश ऑफिसर थे, भूकंप से हुए भारी भरकम नुकसान को देखने के लिए गए, तब उन्होंने वहाँ पर अलग अलग प्रकार की खूबसूरत पेंटिंग देखी जो उनको एकदम नई और अनोखी सी लगी। उसके बाद उन्होंने उन सभी पेंटिंग्स की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें निकालनी शुरू कर दी, जिसे मधुबनी पेंटिंग के इतिहास में अब तक की सबसे पुरानी तस्वीरों में से एक माना जाता है। साल 1949 में उन्होंने मार्ग के नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की खासियत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। उनके इस आर्टिकल के बाद पूरी दुनिया को मधुबनी पेंटिंग की सुंदरता और खासियत के बारे में पता चलने लगा, यानी कि अब हमारी मधुबनी चित्रकला दूर दूर तक पहुंचने लगी। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये कला बिहार के मिथिला क्षेत्र में फली फूली, चमकीले रंग और कंट्रास्ट या पैटर्न से भरे रेखा चित्र इसकी विशेषता हमेशा से रही है। पेंटिंग की ये एक ऐसी शैली है जो परंपरागत रूप से क्षेत्र की महिलाओं द्वारा की जाती रही है। हालांकि आज मांग को पूरा करने के लिए इसमें कुछ पुरुष भी शामिल हो चुके हैं। ये पेंटिंग अपने आदिवासी रूपांकन और चमकीले मिट्टी के रंग के उपयोग के कारण काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ये चित्र कलाकारों द्वारा तैयार किए गए खनिज रंजक से बनाए जाते हैं। ये काम ताजा प्लास्टर, मिट्टी की दीवार, इस पर भी किया जाता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम सांझे विरासत में। हम बात कर रहे थे कला को सहेजने की, और इसी कला की फेहरिस्त में आज हम बात कर रहे हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। अभी तक हमने इसकी ओरिजिन के बारे में जाना, इसकी खोज के बारे में जाना, इसके बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय भी हमने जाना। अब हम जानने वाले हैं कि ये कला कैसी है, कैसे बनाई जाती है, या ये किस तरह से लोगों तक पहुंची। मधुबनी की दीवार चित्रों को आलंकारिक और गैर आलंकारिक दीवार चित्रों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व अधिक रंगीन और प्रतीक इसमें समृद्ध है। कोबर में सबसे शानदार दीवार चित्र है ये तीन प्रकार का होता है। उत्तर बिहार मधुबनी शैली का कोबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोबर लता रूपांकन के साथ सीमा चित्र। परंपरागत रूप से ये पेंटिंग ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं द्वारा की जाती थी। 1970 के दशक तक कला रूप की सराहना नहीं की गई। कला डीलर के आगमन और राष्ट्रीय पहचान ने ग्रामीणों की आय के नए स्रोत प्रदान किए। आगे की शोध से पता चला कि हरिजन महिलाओं ने भी अपनी झोपड़ियों की दीवारों को एक ऐसे चित्रों से सजाया था। हालांकि उनकी पेंटिंग शैली और सामग्री के मामले में भिन्न है। ब्राह्मण महिलाएं चमकीले रंग के साथ एक मुक्त रचना पसंद करती हैं। कायस्थ महिलाएं रेखा चित्र और व्यक्तिगत दृश्यों को घेरे पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन पारंपरिक रूप से भिन्न शैलियों ने अब अपने चित्रण को काफी हद तक मिला दिया है। समय के साथ कुछ महिलाओं ने अपने लिए एक नाम और पहचान बनाई है, जैसे छिरी गांव की गंगा देवी, राठी गांव की जगदम्बा, जितवारपुर गांव की सीता देवी और यमुना देवी, और वहीं आरती दयाल, मशहूर मधुबनी आर्टिस्ट। मिट्टी और गाय के गोबर की पतली परत का उपयोग सतह को कोट करने के लिए किया जाता है। ये एक परिरक्षक और एक मजबूत बनाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसे शुभ और समृद्धि का अग्रदूत भी माना जाता है। इसके बाद पिसी हुई चावल और उंगलियों, बांस की टहनी, सूती कपड़ा और आजकल कलम का उपयोग करके पेंट किया जाता है यह विशिष्ट मधुबनी चित्रकला। परंपरागत रूप से पेंटिंग में कोई जगह नहीं छोड़ी जाती है। ये फूल, पक्षी, जानवर, टैटू डिजाइन आदि से भरा हुआ होता है। प्रकृति और पौराणिक कथाओं के आंकड़े उनकी शैली के अनुरूप अनुकूलित किए जाते हैं। व्यापक रूप से चित्रित किए गए विषय और डिजाइन हिंदू देवी देवता जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य और चंद्रमा, तुलसी के पौधे, अदालत का दृश्य, शादी का दृश्य, सामाजिक घटनाएं आदि हैं। पुष्प, पशु और पक्षी रूपांकन, ज्यामितीय डिजाइन सभी अंतराल को भरने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका रचना कौशल आगे की पीढ़ियों को सौंप दिया जाता है और इसीलिए पारंपरिक डिजाइन और पैटर्न व्यापक रूप से बनाए रखा जाता है। अगर हम बात करें कि मधुबनी आर्ट में यानी मधुबनी पेंटिंग्स में क्या थीम होती है, कैसे रंग भरे जाते हैं या क्या अहम सिंबल्स यानी प्रतीक होते हैं, तो पेंटिंग्स के लिए विषय समारोह या उस घटना के आधार पर ये सभी भिन्न होते हैं जिसके लिए उन्हें चित्रित किया जाता है। यानी अलग अलग ओकेशंस के लिए अलग अलग स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। हालांकि इसके जो केंद्रीय विषय हैं वो प्रेम और उर्वरता पर ही बने हुए हैं। हिंदू देवी देवता और ग्रामीण स्थानीय परंपरा, इन सभी का एक अद्भुत संगम और समायोजन मधुबनी कला में पाया जाता है। कुछ पसंदीदा विषय हैं मछलियाँ, हाथी और अन्य शुभ प्रतीक, घिरी हुई दुल्हन, शादी के मुकुट, शिकार और हल चलाने का दृश्य, पेड़, जानवर, पक्षी इत्यादि। विवाह समारोह के दौरान कोबर नामक एक विशेष कक्ष बनाया जाता है। कभी कभी फर्श को भी रंग दिया जाता है जिसका उद्देश्य बंगाल की अल्पना के समान होता है। यानी कि हम जिस मधुबनी पेंटिंग की बात कर रहे थे जिसका दूसरा भाग था अरिपन यानी अल्पना, इन चित्रों के विषय वस्तु को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले देवता जो दुल्हन की जोड़ी के लिए अपना आशीर्वाद लाते हैं, शिव और काली और गणेश जी। इनमें कभी कभी दूल्हा दुल्हन और उनके परिचारक के आंकड़ों को भी जोड़ा जाता है। दूसरे स्थान पर समृद्धि के विभिन्न प्रतीक हैं, जैसे हाथी, मछली, तोता, कछुआ, सूर्य, चंद्रमा, बांस का पेड़, एक गोलाकार कमल का फूल। ये आशा की जाती है कि ये प्रतीक युवा जोड़े के लिए सौभाग्य लाएंगे और आशीर्वाद लाएंगे। परंपरागत रूप से रंग महिलाएं द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है। जले हुए ज्वार काजल का उपयोग काले रंग के लिए किया जाता है। पीले रंग के लिए बरगद के दूध में हल्दी या चूना मिलाकर, नारंगी के लिए पलाश का फूल, लाल रंग के लिए कुसुम का फूल, हरे रंग के लिए बेल पत्र। हालांकि आज बाजारों के रेडीमेड रंगों का उपयोग भी किया जाने लगा है, इससे एक समृद्ध और व्यापक पैलेट भी बन चुका है। रंग जीवन के 5 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन्हें विभिन्न रंगों द्वारा निरूपित किया जाता है। पीले रंग से पृथ्वी, सफेद रंग से पानी, लाल रंग से आग, नीले से आसमान और काले से हवा। इन तत्वों को 3 मूल रूप त्रिभुज, वृत्त और वर्ग का उपयोग करके समझाया गया है। एक त्रिकोण जिसका सिरा आकाश की ओर है वह अग्नि को दर्शाता है और जिसका सिरा नीचे की ओर है वो पानी को दर्शाता है। वर्ग पृथ्वी को दर्शाता है। वृत्त और वृत्त की परिधि का उपयोग वायु को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि भीतरी भाग आकाश को दर्शाता है। आकाश, वायु, अग्नि और जल परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। ये सभी रूप एक बिंदु से निकलते हैं जो शिव और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें एक बिंदु बनता है जब निराकार शिव शक्ति में अपने रूप की कल्पना करते हैं। अलग अलग समय और स्थान को इंगित करने के लिए चित्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खंड से विभाजित किया गया है। भीत चित्र और लघु शैली के बीच चित्रों की गुणवत्ता अलग अलग होती है। उनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा आम हैं जो आजकल काफी ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे मछली और हाथी वाली मधुबनी पेंटिंग्स, राधा कृष्ण वाली मधुबनी पेंटिंग और गणेश जी वाली मधुबनी पेंटिंग। अब आते हैं मधुबनी कला के आधुनिकरण पे, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मधुबनी आर्ट। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत के त्योहारों ने यूनाइटेड किंगडम में कई सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से जनजाति और लोक चित्रों को प्रोत्साहन दिया। आज आधुनिक मधुबनी पेंटिंग साड़ी, स्टोल, बैग, घड़ी, दुपट्टा आदि पर देखी जा सकती है। मिथिला की ये कला अद्वितीय है क्योंकि यहाँ हम सब संस्कृत और संस्कृति के ज्ञान, शब्दावली और आइकोनोग्राफी का एक अनूठा मिश्रण देख सकते हैं। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अब कागज, कपड़े, कैनवस आदि पर मधुबनी का काम किया जाता है। गैर कृषि आय का एक बड़ा स्रोत बनाने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड और भारत सरकार व्यावसायिक बिक्री के लिए महिला कलाकारों को हस्त निर्मित कागज पर अपनी पारंपरिक पेंटिंग बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती है। मधुबनी पेंटिंग सैकड़ों परिवारों के लिए आय का एक प्राथमिक स्रोत बन चुकी है। बिहार सरकार के मुताबिक मधुबनी पेंटिंग का सालाना कारोबार, एनुअल टर्नओवर ऑफ मधुबनी पेंटिंग, इसे 50 करोड़ रुपए माना गया है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी आदि जिलों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अभिमन्यु श्रीवास्तव, उप विभागीय मैजिस्ट्रेट मधुबनी द ऑब्जर्वर को बताया है, बिहार सरकार जल्द ही पेंटिंग और कलाकृतियों को बेचने के लिए एक स्वदेशी ऐप भी शुरू करने वाली है। दुनिया भर में मधुबनी पेंटिंग का एक अच्छा कारोबार होता है, हालांकि ये कलाकार धीरे धीरे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और शायद यही कारण है कि मधुबनी चित्रकला अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। मधुबनी हैज बिकम अ डाइंग आर्ट दीस डेज। दुनिया भर में मधुबनी पेंटिंग का कारोबार होता है। निर्यात विश्लेषण पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 24 देश और क्षेत्र हैं जो सक्रिय रूप से भारत से मधुबनी पेंटिंग का आयात करते हैं। कुल निर्यात का संयुक्त मूल 0.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, भारत से मधुबनी पेंटिंग का सबसे बड़ा आयात करता है। 6.7 मिलियन डॉलर की मधुबनी पेंटिंग में से 50% मधुबनी पेंटिंग शिपमेंट संयुक्त अरब अमीरात को की जाती है। भारत से मधुबनी पेंटिंग आयात करने वाले 5 टॉप कंट्रीज के जो नाम है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नीदरलैंड्स, USA, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। हमने इतना सब कुछ जान लिया मधुबनी आर्ट के बारे में, भाई जानते हैं कि इसकी स्पेशल पॉइंट्स क्या है, यानी इसकी खासियत क्या है। आधुनिक ब्रश के बजाय चित्र बनाने के लिए पतली टहनी, माचिस, उंगली और परंपरागत वस्तु का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें ब्रशेस का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया जाता था। हालांकि मॉडर्न मधुबनी पेंटिंग्स में अब कलाकार ब्रशेस का इस्तेमाल करने लग गए हैं। मधुबनी चित्रकला की 5 शैलियां मुख्य हैं, भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोधना और कोहबर। हालांकि मुख्य रूप से मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, भीगती और अरिपन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बताया था। भीगती चित्र विशेष रूप से घर में 3 स्थानों पर मिट्टी से बनी दीवारों पर की जाती है, जिसमें कुल देवता, लोक देवता, नए विवाहित जोड़े के कमरे में और ड्राइंग रूम में की जाती है। अरिपन यानी अल्पना या मांजना, जिसको चित्रित करने के लिए आंगन या फर्श पर लाइन खींचकर सुंदर रंगोली जैसी बनाई जाती है। अरिपन पूजा समारोह जैसे पूजा, व्रत और संस्कार आदि के अवसर पर की जाती है। मधुबनी चित्रकला में पौराणिक घटनाओं का वर्णन ज्यामितिक आकार और डिजाइन से किया जाता है। चित्र के खाली स्थानों को अधिकतर फूल, पत्ती, बेल, बुट इन सब से भर दिया जाता है। इन चित्रों में कमल, बांस, शंख, चिड़िया, सांप आदि की कलाकृति भी मिलती है। इस चित्रकला का फोकस खास तौर पर रामायण, महाभारत और पौराणिक ग्रंथों की कथाओं के साथ ही हिंदू उत्सव, संस्कार, राज दरबार, विवाह आदि सामाजिक कार्यक्रम के इर्द गिर्द ही रहता है। मधुबनी शहर में एक स्वतंत्र कला विद्यालय मिथिला कला संस्थान MAI की स्थापना जनवरी 2003 में EAF द्वारा की गई थी, जो कि मधुबनी चित्रों के विकास और युवा कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था। और मिथिला संग्रहालय जापान के निगाटा प्रांत में टोकामाची पहाड़ियों में स्थित एक टोक्यो हसेगावा की दिमागी उपज है, जिसमें 15,000 अति सुंदर, अद्वितीय और दुर्लभ मधुबनी चित्रों के खजाने को रखा गया है। दरभंगा में कलाकृति मधुबनी में वैधी मधुबनी जिले के बेनीपट्टी और रंती ग्राम में विकास परिषद मधुबनी चित्रकला के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, जिन्होंने इस प्राचीन कला को जीवित रखा है। एक विशेष खासियत जो कि मधुबनी कला में देखने को मिलती है, इस कला का उद्यानवटी रूप इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध करता है या उन स्थानों में विख्यात है जहां महिलाओं को अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। मधुबनी कला के माध्यम से ये महिलाएं अपने समाज में स्थान बनाती हैं और स्वतंत्रता का एहसास दिलाती हैं। इसके अलावा मधुबनी कला के चित्र से शांति और समसरता का संदेश भी दिया जाता है। हम देख रहे हैं कि आजकल हम मॉडर्न लो यानी हम आधुनिक लो मधुबनी कला को सहेजने और सवारने में कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो आइए आगे बढ़कर हम साथ देते हैं और भारत की इस अनोखी कला को सहेजते हैं। एक गुजारिश जो आपसे करना चाहूंगे वो ये है कि जब भी आपको कहीं कोई भी ऐसी भारत की अनोखी, अनूठी सी, विशेष सी लोक कला दिखे तो उसे सहेजने का पूरा पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।

0: छोटे, आजकल तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: अरे बड़े भाई, तो पता नहीं चला कि चलते चलते कितने दूर चले गए।
0: ओए क्या?
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
7: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
8: मत जोड़िए मुझसे रिश्ता, मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते।
9: पुरानी जानकारियां तो कंपनियों को चाहिए होती हैं, मोहब्बत अपनी नई दास्तान लिखती है।

आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी शाम में। और क्या कहूँ, आज बारिश के मौसम ने मौसम की जो कहते हैं ना कि रुख बदल के रख दिया है। जो अंदाज है मौसम का वो तो खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन हाँ काफी दिनों बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। मैं तो बस ये कहूँगी कि भाई अब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि जो यातायात है, लोगों का आवागमन है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। और कहते हैं कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे का मतलब क्या होता है आपके लिए? क्या होता है फ्राइडे का मतलब? शुक्रवार? नहीं, फ्राइडे का मतलब है शुक्रवार, यानी कि वीकेंड की शुरुआत। शुक्रवार यानी काम से थोड़ा आराम, शुक्रवार यानी दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती, शुक्रवार यानी कि बॉलीवुड लवर्स के लिए नए गाने, नई मस्ती और नई कहानियां। यार शुक्रवार का मतलब तो समझो। तो आज अगले कुछ मिनटों तक मैं बात करूंगी उन फेमस फिल्मों की जो आने वाली हैं। और भाई बैक टू बैक हमारे प्यारे यार इमरान हाशमी की मूवीज आ रही हैं, तो मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ कि थोड़ा सा दौर वापस पुराना वाला आ रहा है। और कुछ पुराने और कुछ नए गानों की बात होगी, और कुछ आने वाली फिल्मों का जो बेसब्री से इंतज़ार है उनके बारे में बताऊंगी कि वो इंतज़ार कब ख़त्म होगा। वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज मूड थोड़ा सा रिलैक्स है और पिक्चर अभी मेरे दोस्त बाकी है। तो कहते हैं ना शुक्रवार का दिन अपने आप में कुछ अलग है। सोमवार कहता है काम करो, मंगलवार कहता है थोड़ा और काम करो, बुधवार पूछता है हफ्ता कब ख़त्म होगा, गुरुवार कहता है बस एक दिन और शुक्रवार आते ही दिल में आ जाता है वीकेंड शुरू होने की शुरुआत। तो भाई सिनेमा लवर्स जल्दी से अपनी एनर्जी का जो लेवल है उसको बढ़ा दो, क्योंकि आज बातें थोड़ी हाई बीट्स होंगी। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों से पहले सवाल ही कर लेती हूँ कि आपको किस जेन्योर की मूवीज़ पसंद है, मतलब कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, थ्रिलर या फैमिली एंटरटेनमेंट। अगर मेरी बात करें तो मैं सस्पेंस वाली मूवीज़ ज़्यादा पसंद करती हूँ, थ्रिलर हो, ड्रामा हो थोड़ा उसमें। ठीक है, मैं कॉमन लव स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं पसंद करती। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। लेकिन अरे यार एक गाना जो चल रहा है उसको थोड़ा मैं भी आप लोग के साथ गुनगुना लूँ। अरे भाई अक्सर मन करता है ना कि ऐसे गानों को गाने का, और अभी मेरे दिमाग में भी आ गया, मैंने कहा यार चलो गाते हैं यार, ये गाना इतना स्पेशल है।

तो चलिए अब वो गाना बजा देते हैं मिर्जापुर से, जिसने आप सबकी और मेरी नहीं पूरे जो रील बनाने वाले लोग हैं उनकी नींद उड़ा रखी है, वारू। अगर वारू पसंद है तो आपको अभी जल्दी से मैं बहुत सारी नजरें वार दूं। और मेरे साथ चैट रूम में दिख रहे हैं कौन, धर्मेंद्र दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर से तो कोई नहीं दिख रहा है। जल्दी से उठिए तब बातें करते हैं।

नज़र तो नहीं लगनी चाहिए आप लोगों को बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग सच में एक सुरीला गीत हैं। जी हाँ, वो गीत जिसे हर कोई गुनगुनाना चाहता है, आप वो अंदाज हैं जिसे हर कोई सुरमई बनाना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे आरजे बीना आज आप इतना क्या बता रही हैं, क्योंकि देखिए बातें करते करते पता नहीं चलता है कि हम लोग कब कितने खास एक दूसरे के लिए बन जाते हैं। तो भाई आज की फिल्म सबसे पहले जिसका नाम टॉप लिस्ट पे है, जिसके बारे में बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, हो चुकी है रिलीज, यानी कि द दीवान, ठीक है, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ सारअली खान। हॉरर है, थ्रिलर है, लेकिन मज़ेदार है, आपको देखने के बाद एक बार और देखने का तो मन जरूर करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है देव शर्मा, अंजलि अरोरा, रजनीश दुगल, शील वर्मा की फिल्म ड्रामा और हिस्ट्री से जुड़ी हुई, यानी कि महाकाव्य श्री रामायण कथा। ये भी आप देख सकते हैं, मज़ेदार है, ऑब्वियसली आपके इतिहास को आपके सामने लाती है। रामायण से जुड़ी कई सारी फिल्में देखी हैं तो कंपेयर करने का भी एक मौका मिल जाता है कि क्या काम कैसा किया गया है, ठीक है। जैसे हाल ही में आई हनुमान अंश की जो कथा है उसे कई और फिल्मों में भी दिखाया गया, लेकिन इस फिल्म को जितना पसंद किया गया बाकियों को नहीं, क्योंकि फिल्में वही पसंद आती है लोगों को जो दिल तक कनेक्ट होती हैं या फिर जो आपको फुल एंटरटेन करती हैं। तो दिल तक कनेक्ट होने वाली फिल्म तो ऑब्वियसली एंटरटेन भी करेगी, लेकिन जो फिल्म ना एंटरटेन कर पा रही है ना दिल तक कनेक्ट हो पा रही है तो वो आपकी लिस्ट में तो नहीं होगी। अगली जो मिलने वाली फिल्म है आपको इस हफ्ते की, वो है लव लॉटरी। अक्षय ओबराय, हैरी दालूवाला एंड कबीर दुहान सिंह एंड विजय जीत की ये फिल्म आपको फुल्ली एंटरटेन करने वाली, अरविंद पांडे के डायरेक्ट

एक्शन में ये फिल्म आपको रोमांस ड्रामा और थ्रिलर के साथ एंटरटेन करेगी। ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, क्यों आ रही है ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। आगे जो फिल्म है उसकी बातें मैं करूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। दायरा के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि पृथ्वीराज, सुकू मारन, करीना कपूर की ये फिल्म आपको फुल ड्रामा और थ्रिलर के साथ एंटरटेन करेगी। मेघना गुलजार की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अच्छी स्टोरी के साथ है, लेकिन उतना पावरफुल पैकेज नहीं है जितना उम्मीद किया जा रहा था करीना से होगा। लस्ट स्टोरीज 3 अगेन लस्ट से भरी हुई फिल्म, राधिका आप्टे, कोंकणा सेन, विजय वर्मा, ड्रामा और रोमांस कुछ ज़्यादा ही है और आजकल लोगों को ड्रामा और रोमांस थोड़ा कम पसंद है, तो ये तो लोगों को कम पसंद आने वाली है। अगली जो मैं वेब सीरीज की बात करूँगी एक, और ओम का हैरी भी आ चुकी है, 5/5 रेटिंग मिली है इसको। अंशु मांझा, रघुवीर यादव, आयशा कपूर, प्रमोद, कॉमेडी और ड्रामा है, मतलब वन टाइम है। अगर आपको कुछ बढ़िया हंसने वाला देखने का मन करा है तो ओम का हरी देख लीजिए, 18 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। अब मैं बात करने वाली हूँ वेटिंग है, एक वेब सीरीज जिसने धमाल कमाल मचा के रखा है, लेकिन मुझे मतलब अगर इसको पर्सनल और जेन्युइन रिव्यू करना हो तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से रिव्यू करूँगी। वेडिंग है 2026 की हिंदी क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, ठीक है, जो कि सितंबर 16 को रिलीज हुई है। अमेजोन प्राइम वीडियो, अमेजोन एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। जेन्युइन इसका बता दिया मैंने कि क्राइम है, कॉमेडी है, ड्रामा है। 7 एपिसोड हैं, एक एपिसोड लगभग 35 से 38 मिनट का है। डायरेक्टर हैं समीर विद्वान, और अगर प्रोडक्शन की बात करूँ तो जियो स्टूडियोज की प्रोडक्शन है। पर मैं अगर कास्ट की बात करूँ तो इसमें आपको देवेंदु दिखेंगे एज अ सुगम मिश्रा भाई, इनका सिलेक्शन हो जाता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। मतलब मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, लेकिन मूवी के जो डायलॉग्स हैं, मतलब इतना भी आपको पब्लिक के अंदर घुस के डायलॉग लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि आप घर बैठ के ये वेब सीरीज़ ना देख पाओ। शब्दों की अभद्रता इस वेब सीरीज़ में आपको बढ़िया से दिखेगी। मतलब उन शब्दों को तो मैं शायद सपने में भी नहीं बोल सकती, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब पहले एक नियम चलता था कि जहाँ भी अभद्र शब्द आते थे वहाँ म्यूट किया जाता था, पीप साउंड लगा दी जाती, अब तो वो सब बंद है, खुलेआम ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि हमारी जनरेशन भी सीखे कि क्या क्या नई नई लैंग्वेजेस हैं जो हम अपनी भाषा में इंसर्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यूपी बिहार की छवि को धूमिल करने की भी कोशिश मुझे लगता है इसमें की गई है। हाँ ठीक है, जो चीज़ रियलिटी है उसकी बात करिए, लेकिन शब्दों को थोड़ा सा तो आप मॉडिफाई, आप लिखने वाले थे तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि डायलॉग्स लिखते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। आप देखेंगे तो आप मुझे खुद ही बताएंगे। तो मैं स्टोरी की बात करूँ, स्टोरी बढ़िया है, सुगम मिश्रा की एक्टिंग बढ़िया है, और नया मतलब कैरेक्टर जैसे लगता है कि इनके अंदर घुस गया हो, तो जैसे न्यूली ज्वाइन किए हैं इन्होंने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF में, और कॉन्स्टेबल के पद पर हैं, पटना से इनको मिला है मौका, और ये बड़ा टिकट रैकेट जो चल रहा है अभी भी चल रहा है भाई, मूवी आने से ऐसा थोड़ी टिकट रैकेट बंद हो जाएगा। वेटिंग है, वेटिंग चल ही रही है भाई, पैसा दे दो तो टिकट मिल जाती है। और वहीं आप जेन्युइनली जब आप बैठ के लीगली टिकट बुक करते हो तो आपकी टिकट नहीं होती, और ये फुल हो गया आ जाता है, और कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम क्या, सरकारें भी इन्वॉल्व हैं। एनीवे आगे बात करूंगी भुवन अरोड़ा की, जो कि अफरोज हमजा बने हुए हैं, एक मतलब कह सकते हैं नेगेटिव रोल में ही है ये, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के मास्टरमाइंड, हैक कर लेते हैं पूरा रेलवे सिस्टम और बाईपास सॉफ्टवेयर से तत्काल टिकट बुकिंग में अपना जो कहते हैं ना झांसा की तरह, मतलब अपने जो जाल है उसको बिछा देते हैं। बढ़िया है, ठीक है। अब बात करूंगी इसमें कुमुद मिश्रा की, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है इन्होंने। आगे मैं बात करूंगी हर्षिता गौर की, जो प्रिंसी बनी है, बहुत अच्छी लग रही हैं, सुगम्स की वाइफ यानी कि सुगम की पत्नी बनी हुई हैं, और विजय मौर्य एज अ मामा बन के आए हैं, ठीक है, अफरोज के अंकल हैं जो कि नेगेटिव रोल में ही है अगेन, ठीक है। तो बाकी मतलब सबकी एक्टिंग बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, फुल मतलब आपको एंटरटेन करेगी वेब सीरीज, शुरू से लेके अंत तक देखिए, बोर नहीं होंगे आप, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ यहाँ वीक चला गया, लेकिन एंटरटेनमेंट आपका फुल होगा इस वेब सीरीज में। लेकिन मैं यहाँ डायलॉग की बात कर रही हूँ, मुझे इस वेब सीरीज के डायलॉग से सख्त नफरत है, ऐसे मतलब डायलॉग्स अगर मूवीज़ में होंगे, वेब सीरीज़ में होंगे, तो डेफिनेटली सब इसको आम बोलचाल की भाषा समझ के कॉमनली यूज़ करेंगे, जैसा कि मतलब गालियों को एकदम एज अ कॉमन डायलॉग की तरह इसमें यूज़ किया गया है। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए सुनते हैं ये।

अब बात करूंगी कुछ ऐसे अंडररेटेड गानों की जिनके बारे में आप लोग शायद जानते भी नहीं है, और जानने के बाद मुझे लगता है सुनना छोड़ेंगे भी। फिलहाल जो ये गाना आप सुन रहे हैं ये है फिल्म आपके पसंद की सुल्तान से, भुलिया, जिसको सुन के दिल कहता है यार इतनी पॉजिटिव वाइब तो आ ही नहीं सकते। तो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ऐसे बैक टू बैक अननोन से नोन गाने तक पहुंचने के लिए सब

तो चलिए एक और अननोन से नोन की तरफ चलते हैं, और ऐसा गाना जिसको सुन के आपकी रूह कहेगी यार, मतलब यार ये गाने कहाँ कहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिलहाल ये गाना जो प्ले हो रहा है ये भी काफी अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाऊंगी जो काफी फेमस है और लोगों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए सुन के बताइए, फिर आपसे हम जिक्र करेंगे इस गाने का। ये वैसे तो पाकिस्तानी सॉन्ग है, लेकिन इसकी लिरिक्स कोई ऐसा इंसान शायद ही होगा कहीं से भी जिसके

और सभी आपने जो गाना सुना ये पाकिस्तानी गाना था, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज़ में आपके पसंदीदा सिंगर राहत फ़तेह अली खान ने गाया था। और देखिए कुछ ऐसे गाने बन जाते हैं जो दिल को छू के चले जाते हैं। तो फिलहाल एक और गाना जो कोक स्टूडियो भारत से है, एक हरियाणवी सॉन्ग है, लेकिन इश्क बावला सुनने के बाद आप सच्ची बावले हो जाएंगे। और सवालों का जवाब देने के लिए अगर उठ चुके हैं दीपक, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, बारिश बहुत हो रही है। गुड इवनिंग धर्मेंद्र, गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं कुछ सवाल करती हूँ, उसका जवाब अगर आप लोग दे लेते हैं तो मैं समझूंगी कि आपको गाने बहुत सारे पसंद हैं। तो ये बताइए सही आ रहा।

तो भाई कौन बन गया है आंसर देने वाला और कौन सुनने वाला है अपनी पसंद का गाना? आओ हो, सवाल बस यही तो था। सवाल था कि सैयारा सॉन्ग किस फिल्म का है और उसमें एक्ट्रेस कौन है। अब हिंट दे देती हूँ, उसमें सलमान खान है साथ में। अब आप सोच के बताइए, गीता जी पूछ रही हैं, सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग प्रीति जी, कैसी हैं? और ओ सेम टाइम सेम जगह अगले वो दिन, चलिए यही गाना सुन लेते हैं। और ये गाना भी भाई अपना मतलब लुक वाला गाना है और बारिश स्पेशल गाना तो नहीं है, लेकिन हाँ जब किसी से मिलना होता है तो आप सेम टाइम सेम जगह पहुंच जाते हो, क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि वो इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपको समय और टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए सेम टाइम सेम जगह अगले दिन फिर मर जानिया के छत पे खड़ी, यानी कि उसी टाइम उसी जगह वो लड़की फिर से वही मिली जो आपको चाहती है। आहा।

गाने में जो शब्द का मतलब ना समझ में आए वो जल्दी बताएंगे। एक था टाइगर, मूवी का नाम सैयारा। ओ जिसने भी आंसर दिया एक था टाइगर वो सही है, सही है, सही है, सही है बॉस। गीता जी एंड प्रीति जी दोनों अपनी पसंद का गाने सुनेंगे। वैसे मैं आज बारिश की खुशी में आप लोग को अपनी पसंद के गाने सुनाने वाली हूँ, तो सब लोग फ्यूजन वाले बढ़िया बढ़िया नए पुराने गाने डिमांड करिए, ना तो सिर्फ एकदम पुराने, ना तो सिर्फ एकदम नए, नए पुराने मिक्स वाले गाने जिसको सुन के लगे कि हाँ आज कुछ मिक्स वेज टाइप बन रहा है और उसको हम पकौड़ी बना देंगे बाद में। कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं और जब फ्रीज में कोई मनपसंद की सब्जी नहीं दिखती तो हम बैगन का पकौड़ा, लौकी का पकौड़ा, सबके पकौड़े बना देते हैं, इवन टमाटर का भी कभी कभी पकौड़ा बन ही जाता है। एनीवे चलिए देखते हैं।

बहुत कम होता है जिसे आप पसंद करें रिश्तेदारी में, उसके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए, लेकिन कभी कभी ये मेल खुदा मिला देता है। और जैसा अभी गाने में सुन रहे हैं, वहाँ पे शादी फिक्स हो गई, इसीलिए अगले दिन छत पे लड़की नहीं आई। और चलिए हम सुनते हैं गाना, गीता जी का मेरा सॉन्ग है भाई, चले थे साथ मिलकर हो, मेरा फेवरेट गाना बजाने, मतलब सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बढ़िया बढ़िया गाने मांगते हो, मतलब वो मेरी प्लेलिस्ट के पुराने वाले गानों में से एक होते हैं, तो मुझे मजा आ जाता है। चलिए सुनते हैं, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर। और ये बड़ा अच्छा गाना है, इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार कहाँ चले गए हम। शशि कपूर और आपकी पसंदीदा हीरोइन, जिनको देख के, जिसको जान के दिल डाउन से अप हो जाता था, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, और उसी फिल्म का ये गाना है, चले थे।

मीका सिंह सिंगर का नाम तो सुना होगा आपने। मीका सिंह का ऐसा कौन सा बारिश का गाना है जिसे सुन के शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पैर ना हिले। आप सोच के बताइए गाने का नाम और मैं तब तक सुनती हूँ गीता जी का गाना।

अगला गाना सुनते हैं, कौन सा है भाई? हाँ भाई यार, महबूब के पास जाना है कि नहीं, लेकिन हाँ घर जाना है, सुनती लेके जाना है, बड़े काम है वो जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना अलका याग्निक की आवाज में, थम के बरस, और भाई आम।

उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

भाई दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और सावन में नाचोगे तो आग लगेगी, लेकिन बहुत लोग नाच रहे होंगे सड़क पे लेकिन आग अभी तक लगी नहीं। वेल कोई बात नहीं, दूध उबालोगे तो फट जाएगा ऐसा तो नहीं कभी होता, दूध उबालोगे तो झाग ही उठता है, पता नहीं कैसे आप लोग उबालते हैं। तो हमारी आशु जी को गाना सुनना है, ए नरगिसी मस्ता बस इतनी शिकायत। भाई कहाँ कहाँ से आप लोग गाने लेके आते हैं, ओह आरजू से। तो चलिए इस धमाकेदार गाने के बाद एक और हार्ट टचिंग गाना सुनते हैं जिसको सुन के दिल घूम घूम घूम जाएगा।

बचे हुए लोग अपनी फरमाइश का गाना कर सकते हैं, लेकिन गाना बारिश से जुड़ा होना चाहिए। आपका गाना सुनाएंगे आज आरजे बीना, लेकिन गाने के साथ फिल्म का नाम और सिंगर का नाम भी बताना होगा, क्योंकि आज बॉलीवुड डे है, तो कुछ बातें भी होनी चाहिए उस फिल्म और उस गाने के बारे में। जैसे कि ये गाना आप सुन रहे हैं नरगिज़े मस्ताना, इस फिल्म को देखने के लिए आपको 1965 के दौर में जाना पड़ेगा, मतलब खुद नहीं जाना पड़ेगा, फिल्म को लगाना पड़ेगा। आरजू फिल्म का गाना है, साधना और राजेंद्र कुमार की ब्यूटीफुल एक्टिंग। एंड सच्ची बताऊं, राजेंद्र को अगर इस दौर में भी देखते ना, तो आप वो इस दौर में फिट हो जाते, इतने मुझे पसंद थे वो। तो फिलहाल के लिए चलिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गाना आपके सामने। फरमाइश किया आशीष।

तो मेरे एक लिसनर जिनकी फरमाइश है ये, उन्होंने कॉल करके स्पेशली ये फरमाइश किया है, जिनका नाम है राहुल। तो राहुल सुनना चाहते थे ये गाना, उन्हें जाते समय सुनाई दिया भी रेडियो, तो उन्होंने सोचा कि फरमाइश हो रही है तो मैं भी क्यों ना फरमाइश कर लूँ। तो भाई ताल से ताल मिला, कौन नहीं पसंद करता है, सब पसंद करते हैं, तो सबकी पसंद का गाना है ये, तो चलिए सुनते हैं एंड ताल से ताल मिला लेते हैं। हाँ

दो बड़े अच्छे अच्छे से एक्टर्स यानी कि अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय, थोड़ा लव ट्रायंगल टाइप का दिख जाता है, लेकिन भाई मुझे तो अक्षय का कोई रोल मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। मेरा तो मन था कि अनिल की शादी ऐश्वर्या से इस फिल्म में

0: जान
1: यार, ये तो मेरी वाली लाइन थी एक आरजे की लिसनर के लिए, यही तो लाइन होगी। तू मुझको जान ले, और 89.6 FM के पास आ, तभी तो जानेंगे अपने आरजे को करीब से।

तो चलिए अगले गाने की ओर भी रुख करते हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बहुत सारे लोग निकल लेते हैं अपनी तन्हाई दूर करने। फिलहाल आज मंदी के लिए बारिश तेज हो रही है, जुकाम पकड़ लेगा, फिर तन्हाई में डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी।

0: जमाना था इस गाने को सुनने के लिए लोग पगलाए रहते थे। मतलब कोई घर से बाहर निकलता बाद में गाना पहले ये गाता था, बारिश आने का इंतजार किया जाता था क्योंकि ये गाना सुनने को मिलेगा।
1: अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो।
0: मैं पीने से तात्पर्य कवि का कुछ भी हो लेकिन मेरा तो यही है कि चाय

कौन कहता है कि हर गाना बारिश का, बारिश या बरसात सबसे शुरू होना चाहिए। कुछ गाने ऐसे भी हैं जो बिना बारिश शब्द के शुरू हुए भी पूरी बारिश का एहसास दिलाते हैं। तो ये गाना फिल्म है सत्यमेव जयते से पानियों सा। इस गाने को सुनने के बाद मुझे तो बिल्कुल बारिश वाली फीलिंग आती है, और आप लोग बताइए आपको कैसी फीलिंग आती है। और भाई जिसने गाना नहीं सुना वो और डिमांड कर सकता है, लेकिन एक ही गाने की फरमाइश की आज आपको वो है मतलब परमिशन। तो चलिए ये वाला

तो भाई ये तो गाना हुआ जिसने पानी से बारिश की फीलिंग आपको दिलाई कि नहीं दिलाई। मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसको सुन के आप कहेंगे यार ये भी बारिश के लिए बहुत बढ़िया सा गाना था। एक बहुत पुराना सा गाना है जिसे मैंने अपने बचपन में सुना था। बचपन मतलब मैं बहुत छोटी रही होंगी, फर्स्ट क्लास में रही होंगी, उस समय मैंने इस गाने को सुना था। और लिरिक्स क्या बात है, मतलब लिरिक्स तो मेरे पल्ले बहुत पड़ी नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगा था। मतलब इसकी राइमिंग्स बड़ी अच्छी सी थी, ऐसे थी मतलब जा रे कारे बदरा बलम के पास, वो है ऐसे बुद्धो जो समझे ना प्यार। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे किसने ये गाना पहले नहीं सुना था। ये आशु जी, गीता जी, प्रीति जी, इन लोगों ने तो सुना होगा, बाकियों की बात कर रही हूँ कि किसने और ये गाना नहीं सुना। वैसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और बड़ा प्यारा सा गाना है, लता जी की आवाज़ का गाना है, सुन के मतलब दिल खुश हो जाएगा। और मतलब थोड़ी और लिरिक्स में सुना देती क्योंकि मुझे ये गाना पसंद था और कभी कभी मैं वो गा लिया करती थी। ऐसा कुछ था, लिरिक्स मुझे बहुत तो नहीं याद है लेकिन हाँ पहरा पहरा जो है वो याद है मुझे, पैराग्राफ कि जा रे कारे बदरा बलम के पास, वो है ऐसे बुद्धो जो समझे ना प्यार, जिनके पलक मेरी उलझी, जिनके पलक में पलक मेरी उलझी,

0: चलिए अब मेरे जाने की बारी भी आ चुकी है और चलिए सुनते हैं ये गाना अगेन। ये भी बारिश को डेडिकेटेड है। अब आप सुन के बताइए गाना अच्छा है या नहीं। मैंने कहा ना मैं नए गाने पुराने गानों का फ्यूजन लेके आई हूँ और कभी मैं एक गाने सुना के आप लोग को एक डायरेक्शन में नहीं ले जाऊंगी। ये गाना सुन के बताइए कैसा है। ये भी बारिश को डेडिकेटेड है। अब कल फिर मिलेंगे डॉक्टर लव के साथ। आप लोग जुड़ जाइएगा समय के साथ क्योंकि सवाल आपके होंगे जवाब हमारे होंगे। तो अगर आप कुछ बेहतरीन सुरीला और बिजली गिराने वाला सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आरजेबीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजेबीना वाला सुन रहे हैं अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 89.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन।
1: मेरे लिए हाँ चालक हाँ बंद कर। ए मैं दूसरी औरत दे अपनी जिंदगी चलाया।
2: दूसरी?
1: हाँ
2: ते पहली कौन सी?
1: मेरी बेबे।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9018353594 और 8072168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: अरे सुना?
5: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
7: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं, क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
8: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात। Thought of the day and what happened to this day. जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने ऐसी ही तड़कती भड़कती सी प्लेलिस्ट में से प्यारा सा गाना नहीं टटोला है, अपनी फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नंबर टटोल लीजिए और लाके अपनी चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद, क्योंकि शो आपका गीत आपके जज्बात आपके और आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। कैसा लगा आप सभी को आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की फरमाइशी प्लेलिस्ट का ये पहला नगमा, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मोहित मालवीय नगर गोंडा से, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, उदालक शर्मा मनकापुर से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, रौनक तिवारी गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास गोंडा से, राजू सीतापुर से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, उत्कर्ष कश्यप गोंडा से, मीनू कश्यप गोंडा से, रितेश साहू आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, निबर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। सो दोस्तों क्या हाल चाल है। ये जो गाना मैंने अभी बजाया था ना, इस गाने के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी, फिर आज की हम अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी ये है कि ये गाना मुझे बचपन से बहुत पसंद है, बचपन से सुनते आई हूँ, पहले अपने भाइयों की प्लेलिस्ट में फिर अपनी प्लेलिस्ट में। और जब मैं नोएडा गई और नोएडा में दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने दोस्तों के साथ में इस गाने पे जब हमने मेट्रो नोएडा के मेट्रो में इस गाने को बजाया और मैंने अपने मित्रों के साथ में नोएडा के मेट्रो में इस गाने पे बहुत डांस किया है, वो दिन मुझे आज भी याद आता है। जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ मुझे नोएडा के मेरे दोस्त याद आते हैं, मुझे मेरा कॉलेज टाइम याद आता है, मुझे वो मेट्रो याद आता है, जो मेट्रो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन वो मेट्रो हमेशा के लिए यादगार बन गया बस एक दो मिनट के गाने पे डांस करने के लिए। सो आप लोगों की भी स्टोरीज होती होंगी ना दोस्तों ऐसी ही कुछ, जो मतलब अलग सी होती होंगी, अतरंगी सी होती होंगी लेकिन हमेशा दिल में रह जाती होंगी। सो चलिए एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के। इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, शुभम यादव लखनऊ से आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी, महेंद्र की राजस्थान से। और महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना करतुंड कटंकर। सो एंजॉय करते हैं ये शायद डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारे महेंद्र की फरमाइश पर जो की है राजस्थान से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। और बरसात का मौसम कैसा है मेरे मित्रों, हर तरफ बस पानी ही पानी, बूंदे ही बूंदे।

0: हमने एंजॉय किया ये बहुत ही अतरंगी सा डिवोशनल सॉन्ग, और मुझे तो ये गाना बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच हमारे महेंद्र जी राजस्थान से। इस गाने को मैंने तो अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लिया है, और आई एम श्योर इट्स कुमार की भी प्लेलिस्ट में ये ऐड होने वाला है, और इसी के साथ में महेंद्र की भी प्लेलिस्ट में ये गाना डैम श्योर ऐड होने वाला है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। अच्छा जी, न तुम जानो न हम। वैसे बंधन अनजाना रहता है तब तक बड़ा मजा आता है, जब ये बंधन जानने वाला बन जाता है तब तो बड़ा ही लोचा हो जाता है। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। आए हाय, एक दूजे के लिए पिक्चर का। स्टे ट्यून्ड एवरीवन,
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी।
0: नहीं करना डाउनलोड, क्यों करे डाउनलोड, है ना दोस्तों, कुछ भी। स्टे ट्यून्ड।

0: ओहो अपड़िया
1: जैसे सब समझ गया।
2: तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमारी आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। और इस गाने को सुनने के बाद में आशु जी बस यही कहना चाहूंगी कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले इस फरमाइशी गीत के लिए इट्स कुमार का एमपी रीवा से कहना है कि बेहद दर्द एवं सौम्यता का उत्कृष्ट परिचायक है ये नगमा। ओह माय गॉड, इतने भारी भारी शब्द कि मैं एकदम बाउंस कर गई। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। इन दोस्तों कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए और चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आ जाइए, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद में कोई भी कुर्सी पे रुकने वाला नहीं है, किसी के पैर टिकने वाले नहीं है। उछल उछल के डांस करने का ही मन करेगा दिल का, और दिल हो जाएगा एकदम गार्डन गार्डन। सो एंजॉय करते हैं धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश में ये गाना। ओ हो हो आय हाय ओ हो आई लव दिस सॉन्ग, फुल ऑफ दिस सॉन्ग। Floor, everybody.

किसका इश्क आपको बार बार और इतना ज्यादा तड़पा रहा है कि आपको हिंदी मीडियम का गाना सुनना पड़ रहा है, धर्मेश त्रिपाठी जी मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी ने ठान लिया था कि अगर इतने तड़कते भड़कते गाने बजने वाले हैं तो मैं सबको थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम जरूर देने वाला हूं। इसीलिए उन्होंने लता मंगेशकर जी की आवाज को चुना और आज फरमाइश की है उन्होंने इस गाने की, जिंद ले गया वो दिल का जानी। सो इंजॉय करते हैं आपके साथ पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा सुरीला सा सैड सा नगमा लता जी की आवाज में, और देखते हैं हम सभी कौन सी फ्लैशबैक में आखिर जाते हैं इस गाने को सुनने के बाद में। और ये फरमाइश है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से हमारे जग्गू दादा की।

जिंद ले गया वो दिल का जानी। हमने एंजॉय किया ये सैड सैड सैड सॉन्ग लता जी की बहुत ही सुरीली सी दर्द भरी सी आवाज में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर जो की है एमपी से। बढ़ेंगे अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इस गीत को सुनने के बाद में मैं कुछ कहना चाहूंगी अपने नौजवानों से, मेरी उम्र के नौजवानों से, कि सैर कर दुनिया की, गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की, गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो, ध्यान से सुनना, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से, और उनको सुनना है गाना। जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, आय हाय मेरी नींदों में तुम। सो एंजॉय करते हैं अनुराधा जी की और उदित नारायण जी की आवाज में हाउ रोमांटिक नगमा हमारी, हाउ रोमांटिक गीता जी की फरमाइश। बस स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आहा।

तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। सो एंजॉय कर ये गाना गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर हम सभी ने जो की है गोंडा सेन। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गीता श्रीवास्तव जी। एंजॉय करते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवे नगर गोंडा से, और मोहित को मालवे नगर गोंडा से सुनना है गाना। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम सच में बड़ा बेईमान है मोहित जी। सो एंजॉय करते हैं लोपर पिक्चर का ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पर जो की है मालवे नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। डाउनलोड

मौसम बड़ा बेईमान है। तो लोफर पिक्चर का ये गाना हमने इंजॉय किया है और इस गाने के थ्रू हमारे मोहित जी मालवीय नगर से यही कहना चाह रहे थे हम सभी से कि आज मौसम सच में बड़ा बेईमान है और इनका दिल बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सो इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं, अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं, किस हाल में है किसी को पता ना चले, दिखावे के लिए खुशनुमा मंजर रखते हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है उदालक शर्मा की मनकापुर से, और उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना बरसात का मौसम, यहाँ हम यहाँ तुम। सो एंजॉय करते हैं सजनी को मिल गया साजन, सिर्फ और सिर्फ उदालक शर्मा की फरमाइश पे, जो कि है मनकापुर से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जेके शाहजी, आपका स्वागत है। और जेके शाहजी का कहना है कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसको आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वेलकम इन माई शहर, स्टे ट्यून। बहुत सुकून है, कुछ हो चाहे ना हो, फरेब तो नहीं है, धोखा भी नहीं है, बेवफाई भी नहीं है, क्योंकि इस आरजे सिंपल को कुछ पसंद हो चाहे ना पसंद हो, लेकिन वफा बहुत पसंद है।

0: मालूम
1: नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदालक शर्मा की फरमाइश पर, जो की है मनकापुर से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों एक मम्मा के शैतान बच्चे की। आई मीन हम तो सब मम्मा के बच्चे हैं, लेकिन कोई शांत होंगे, कोई शर्मीले होंगे और कोई शैतान होंगे। तो इसी तरह हमारे एक लिसनर हैं, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, और उन्होंने अपनी मम्मा के लिए गाना यहाँ फरमाइश किया है, तेरी उंगली पकड़ के चला। सो एंजॉय करेंगे इट्स कुमार की मम्मी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इट्स कुमार इस नगमे के थ्रू अपनी मम्मा को बोलना चाह रहे हैं सॉरी। तो आंटी जी अगर आप सुन रही हैं तो ये बहुत शैतान बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए, और इसकी तरफ से और हम सब की तरफ से ये गाना एंजॉय करिए। लव यू सो मच। एंजॉय करते हैं इट्स कुमार की फरमाइश पे ये वाला गाना, इट्स कुमार की मम्मा के लिए और मेरी तरफ से हम सब की मम्मा के लिए। स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही खूबसूरत सनक मार्गी फरमाइश पर जो कि है से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और कैसा लगा आप सभी को ये गाना, आई लव दिस सॉन्ग। इस गाने को तो मुझे हजारों लाखों करोड़ों बार सुनाया जाएगा तब भी मेरा लग रहा है पेट नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा, दिल नहीं भरेगा, दिमाग भी नहीं भरेगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों रौनक तिवारी की, और रौनक तिवारी को सुनना है गाना फूलो सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है और रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा अनारी पिक्चर का उदित नारायण की आवाज में सिर्फ और सिर्फ रौनक तिवारी की फरमाइश पर। और आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल इस गाने को डेडिकेट करना चाहती है हमारी बहुत ही प्यारी सी और हमारी बहुत ही पुरानी सी लिसनर वंशिका को, जो आज बहुत दिनों बाद मुझे चैट बॉक्स में दिखाई है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अनारी पिक्चर का ये गाना उदित नारायण की आवाज में हमने एंजॉय किया है। रौनक तिवारी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से, और इस गाने को आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल ने डेडिकेट किया था हमारी बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही पुरानी सी लिसनर वंशिका को। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और कविता कृष्णमूर्ति की और कुमार सानू जी की आवाज में आवाज विकास गोंडा से धर्मेंद्र मोहन जी को सुनना है गाना चुनरी प्यार की। सो एंजॉय करते हैं ये गाना धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। रचना शर्मा आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

करके उड़े हमने एंजॉय किया है ये गाना धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से। अच्छा जी, आपके प्यार की चुनरी उड़ती भी है, प्यार की चुनरी भी है, ये तो मुझे नहीं पता था। प्यार के नाम के लिफाफे, प्यार के नाम के फूल, प्यार के नाम के खत, प्यार के नाम के छल्ले, प्यार के नाम की अंगूठी, प्यार के नाम का नगीना, ये सब सुना था, चुनरी नहीं सुनी थी। आए हाय, सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है दोस्तों, राजू की सीतापुर से। राजू को सीतापुर से सुनना है गाना मैंने तुझसे प्यार किया है। सो एंजॉय करते हैं ये गाना अनुराधा जी की और मोहम्मद अजीज की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ राजू की फरमाइश पर जो की है सीतापुर से। और दोस्तों इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे ना हमारी अपनी आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों मिलते हैं सीधे 9 बजे मिलेंगे, और जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाके पेट पूजा भी कर लेना, क्योंकि पेट भरा रहेगा तो दिल ऑटोमेटिक खुश रहेगा, और दिल को खुश रखने का तो हम सब सिर्फ और सिर्फ महज और महज एक बहाना ही ढूंढते हैं ना दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं ये गाना राजू की फरमाइश पर, मिलते हैं सीधे 9 बजे, स्टे ट्यून्ड। ऐसे 9 आजकल कुछ जल्दी नहीं बच जाता दोस्तों।

0: एक आकाशवाणी दिल्ली का इंडिया प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
3: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
2: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
3: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
3: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
7: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
1: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
9: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
10: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
9: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलेंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। आपका स्वागत है, मुमताज अंसारी जी, निब्बर जी, वेलकम इन योर शो। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। बिना किसी देरी के अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग से। राजेश कुमार को सिंचाई विभाग से सुनना है गाना मेरे घर का पता। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण जी की आवाज में राजेश कुमार जी की फरमाइश पे ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों, मेरे घर का पता तुझे याद है क्या? सिंचाई विभाग गोंडा से हमने एंजॉय किया है ये फरमाइशी गीत, राजेश कुमार जी की फरमाइश पर। एंजॉय करते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत, जो कि है दोस्तों बीप्राक की आवाज में। एंजॉय करते हैं निशा की फरमाइश, और निशा है पटेल नगर गोंडा से। निशा को सुनना है गाना मन भरिया। सो एंजॉय करते हैं बीप्राक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा सैड सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाओ, हमने इंजॉय किया अभिप्राग की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश में, जो कि पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गोंडा से गाना, हुई आंख ना मोर ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया। सो एंजॉय करेंगे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मुस्कुराया तो साथी कोई भोला याद आया। अनुराधा जी की आवाज़ में हमने इंजॉय किया है बहुत सैड सा सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शिवम सिंह की और नागेश्वर धाकड़ की। शिवम सिंह को और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना आदत। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से पंजाबी सॉन्ग, लेकिन इस बार शिवम सिंह और नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। इसी के साथ में जीके शाह का कहना है कि सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच शिवम।

वाओ, हमने एंजॉय किया शिवम सिंह और नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पे ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा। बढ़ेंगे दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उत्कर्ष कश्यप की। उत्कर्ष कश्यप को सुनना है गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। और इसी फरमाइशी गीत के साथ में अगली फरमाइश है रितेश साहू की। रितेश साहू को सुनना है गाना ये लो मैं हारी पिया मान भी जाओ। सो एंजॉय करेंगे ये दोनों फरमाइशी गीते और अब इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो दोस्तों बस यही इतना कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। कल मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। इसी के साथ में जीके शाह का कहना है कि तेरे साथ बिताया हर लम्हा खास लगता है, तेरे साथ बिताया हर लम्हा खास लगता है, जैसे वक्त भी हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जीके शाह जी, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट एवरीवन। चलिए एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत से नंग में। बाय, मिलते हैं कल फिर से एक नई उम्मीद के साथ, नई जज्बात के साथ, नई बात के साथ और नई फरमाइशी गीत के साथ। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ

रात के इस खामोश पहर में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अक्सर दिल के कोने में कुछ चुपके से जाग उठता है। दिन भर की भागदौड़ और शोर में हम जिन जज्बातों को अपने अंदर दबाए रखते हैं, रात की ये संजीदा खामोशी उन्हें बयां करने का एक बेहद खूबसूरत मौका देती है। मैं हूं आपके साथ आरजे अदनान। आज की रात हम बात कर रहे हैं उन बातों की जो कभी हमारे लफ्जों तक पहुंच ही नहीं पाए।

वो अनकही बातें जो कभी किसी अपने के आगे इजहार नहीं हो सकी, कभी शिकायतों के बीच एक छोटी सी माफी बनकर नहीं निकल सकी, या फिर बस एक खामोश एहसास बनकर हमेशा के लिए हमारे दिल के किसी अंधेरे कोने में ठहर गई। कहते हैं ना कि कुछ बातें दिल में ही अच्छी लगती हैं, कुछ बातें दिल में ही अच्छी लगती हैं, लफ्जों में आकर वो अपना वजूद खो देती हैं। रात के इस सुकून भरे सफर में चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसी गजल जो इस अनकहे दर्द और खामोश एहसासों को बेहद खूबसूरत अंदाज में आपके सामने ला रही है।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

साहब की इन अशार के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने हमारे ही दिल की अनकही दास्तां लिख दी हो। कई बार हम अपनी जिंदगी में मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि काश उस खास मोड़ पर वो एक बात कह दी जाती, काश अपने दिल का इजहार कर दिया होता, या शायद किसी नादानी पर वो एक छोटी सी माफी मांग ली होती। पर कहते हैं ना, वक्त बहुत तेजी से आगे निकल गया, हालात बदल गए और वो बातें हमेशा के लिए दिल में ही दबी रह गई। लेकिन अनकही बातें हमेशा दुखिया मलाल नहीं होती, कभी कभी वो किसी के लिए छिपा हुआ ऐसा गहरा प्यार भी होती हैं जिसे हम दुनिया की नजरों से बचाकर सिर्फ अपने पास महफूज रखना चाहते हैं। कहा जाता है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। चलिए सुनते हैं वो खूबसूरत सी गजल जो दिल में छिपे इन्हीं एहसासों और पुरानी यादों के सिलसिले को और भी ज्यादा गहरा करती है।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आकर हमारे पास शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक लंबी सी खामोशी बाकी रह जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि खामोशी भी कभी बेजबान नहीं होती? सच में उसकी भी अपनी एक अलग जबान होती है, जो बिना एक भी शब्द बोले सब कुछ बहुत साफ साफ बयां कर देती है। बस उसे महसूस करने के लिए एक सच्चे और ठहराव भरे दिल की जरूरत होती है। वो बात जो लफ्जों में बयां हो न सकी, वो बात उसकी खामोशी ने कहती। अगर आज रात आपके पास भी ऐसी कोई अनकही बात है जो आप कभी किसी से कह ही नहीं पाए, तो किसी शिकवे के बिना इस खामोशी को ही अपना हम सफर बना लीजिए। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल आपके बहारे गजल में।

पता है, जिंदगी का सफर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसमें कुछ रिश्ते, कुछ मुलाकातें और कुछ अनगिनत ख्वाहिशें अधूरी छूट ही जाती है। पर क्या अधूरापन हमेशा बुरा होता है? शायद नहीं। कई बार किसी रिश्ते का अधूरा रह जाना ही उसे ताउम्र के लिए सबसे खास और पाक बना देता है। वक्त बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अधूरी बातें और पुरानी यादें हमेशा ताजा और महकती रहती हैं। इसी बात को कहने के लिए ये खूबसूरत सी गजल आपके लिए पेश कर रहे हैं बेगम अख्तर साहिबा की आवाज।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

राहों में न बैठो कि वक्त नहीं रुकता, राहों में न बैठो कि वक्त नहीं रुकता, बातें जो दबी है उन्हें दबा ही रहने दो। रात अब धीरे धीरे अपने आखिरी पहर की तरफ बढ़ रही है। उजाला भी होगा, सहर भी होगी, और ये खामोशी भी थम जाएगी। लेकिन ये खामोश सफर यहां अब फिलहाल खत्म होने जा रहा है। सो चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि कुछ बातें अगर अनकही रह भी जाए तो उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हर बात को लफ्जों में ढालना जरूरी नहीं होता। कुछ एहसास अनकह रह कर ही जिंदगी भर के लिए अमर और खूबसूरत हो जाते हैं। उम्मीद है आज की इस रात आपके दिल को थोड़ा सा सुकून और ठहराव जरूर मिला होगा। इस खूबसूरत एहसास के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपना और अपने अनकहे जज्बातों का ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले शो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।

रात के 10:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे। और आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर आधी रात के बाद अकेले किसी ट्रेन का इंतजार किया है? अगर किया है तो आपने शायद महसूस किया होगा दिन में लोगों से भरा रहने वाला वही स्टेशन रात में कितना अलग लगता है। खाली बेंचेस, बुझती जलती लाइट्स, दूर तक जाती हुई दो पटरियां और बार बार ये एहसास कि शायद आप वहां अकेले नहीं हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन की है जहां केवल 5 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन आधी रात के बाद कभी कभी छठे प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट होती थी। और कहते हैं जिस यात्री ने उस अनाउंसमेंट का जवाब दे दिया वो सुबह की पहली ट्रेन कभी नहीं देख पाया। जुलाई 2011 की बात है, मुंबई शहर, बारिश का मौसम, रात के करीब 1:10। 24 साल की नैना शर्मा एक छोटे रेडियो स्टेशन में रिपोर्टर थी। उस रात वो एक देर की रिकॉर्डिंग करके घर लौट रही थी। बारिश इतनी तेज कि टैक्सी मिलना मुश्किल था। किसी तरह वो पास के रेलवे स्टेशन पहुंची। उसे लगा आखिरी लोकल मिल जाए तो घर पहुंच जाएगी, लेकिन स्टेशन लगभग खाली था। टिकट विंडो बंद, चाय की दुकान बंद, कुछ ट्यूबलाइट्स जल रही थी और कुछ बार बार छपक रही थी। नैना ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखा, अगली ट्रेन 1:25 पर। उसने राहत की सांस ली, चलो एक ट्रेन तो है। प्लेटफॉर्म पर केवल 2-3 लोग थे। एक आदमी बेंच पे सो रहा था, एक सफाई कर्मचारी दूर पोछा लगा रहा था और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा रेलवे वॉचमैन बैठा था। नैना ने बैग से अपना छोटा रिकॉर्डर निकाला और टाइम पास में बोलने लगी, रात 1:12, मुंबई की बारिश और मैं आखिरी लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। फिर हंसकर बोली, अगर ट्रेन कैंसिल हुई तो आज की रात तो भाई स्टेशन पर ही कटेगी। उसी समय सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई, एकदम अंधेरा। 3 सेकंड के बाद इमरजेंसी लाइट्स जल उठी और फिर स्टेशन से आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नैना ने ऊपर देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली आखिरी लोकल ट्रेन। नैना की भौहें सिकुड़ गई, प्लेटफॉर्म 6? उसने सामने लगे साइन बोर्ड्स देखे, प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, 5। बस उसने सोचा शायद स्टेशन की दूसरी तरफ कोई नया प्लेटफॉर्म होगा। तभी अनाउंसमेंट पूरी हुई, 2:20 पर प्रस्थान करेगी और फिर स्पीकर बंद हो गया। नैना ने पास खड़े सफाई कर्मचारी से पूछा, भैया प्लेटफॉर्म 6 किधर है? आदमी ने पोछा रोक दिया। उसने नैना की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और तेजी से वहां से चला गया। नैना ने पीछे से आवाज दी, सुनिए तो, मगर वो नहीं रुका। अब नैना बूढ़े वॉचमैन के पास गई, बाबा प्लेटफॉर्म नंबर 6 कहाँ है? बूढ़े ने सिर उठाया, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्या कहा? प्लेटफॉर्म 6 अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है बाबा। बूढ़ा कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। नैना बोली, लेकिन मैंने अभी अभी अनाउंसमेंट सुनी है। क्या मतलब? मैंने साफ साफ सुनी है। बूढ़ा खड़ा हो गया, बेटी अपनी ट्रेन का इंतजार करो और अगर फिर अनाउंसमेंट हो तो उसकी तरफ ध्यान मत देना। अब नैना थोड़ी असहज हुई। बूढ़े ने आस पास देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि रात के बाद स्टेशन की हर आवाज रेलवे की नहीं होती। नैना कुछ पूछती उससे पहले
बूढ़ा चला गया। 1:25 नैना की लोकल का समय था। 1:24 हो रहे थे, 1:25 भी हो गया, लेकिन ट्रेन नहीं आई। बोर्ड पर अचानक लिखा आया डिलेड। बारिश और तेज हो गई और फिर नैना ने तुरंत स्पीकर की तरफ देखा, वही आवाज, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली आखिरी लोकल। इस बार अनाउंसमेंट के पीछे एक बहुत हल्की सी आवाज भी थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। नैना ध्यान से वो अनाउंसमेंट सुनने लगी। 2:20 पर प्रस्थान करेगी और फिर अनाउंसमेंट बंद। लेकिन स्पीकर से बच्चे के रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। नैना धीरे धीरे स्पीकर के नीचे पहुंची। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर स्पीकर से किसी ने बहुत धीमे से कहा, नैना। वो पीछे हट गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर स्पीकर से आवाज आई, नैना शर्मा। इस बार उसके हाथ से रिकॉर्डर लगभग छूट गया। रेलवे अनाउंसमेंट को उसका पूरा नाम कैसे पता था? और तभी पूरे स्टेशन पे उसी महिला की आवाज गूंजने लगी, यात्री नैना शर्मा, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर प्रतीक्षा कर रही है। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर से एक पुराना लोहे का गेट हवा में हिलने लगा। नैना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। गेट पर जंक लगा हुआ था। ऊपर फेडेड अक्षरों में लिखा था, ऑथराइज्ड पर्सन ओनली। लेकिन उसके नीचे किसी ने सफेद पेंट से बहुत पहले शायद ये संख्या लिखी थी, 6। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। गेट के पीछे नीचे जाती हुई पुरानी सीढ़ियां थी, खूब अंधेरा, और उन्हीं सीढ़ियों के नीचे से किसी ट्रेन की आवाज आ रही थी। नैना पीछे हटने लगी। तभी वॉचमैन दौड़ता हुआ आया। उसने नैना के हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, उधर मत जाना। नैना ने पूछा, नीचे क्या है? बूढ़े ने गेट बंद करने की कोशिश की। कुछ नहीं, लेकिन नीचे से ट्रेन की आवाज आ रही है। बूढ़ा चुप रहा। नैना ने फिर पूछा, प्लेटफॉर्म नंबर 6 क्या है? इस बार बूढ़े ने नैना की आंखों में देखा और कहा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे 25 साल पहले बंद कर दिया गया था। नैना ने पूछा, क्यों? बूढ़े के होंठ कांपने लगे, क्योंकि वहां से एक रात एक पूरी ट्रेन चली थी, लेकिन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। नैना स्तब्ध रह गई। कितने लोग थे? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। तभी नीचे से ट्रेन की सीटी की आवाज आई, बहुत तेज। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घड़ी देखी, 1:47। फिर नैना की तरफ देखकर बोला, आज ये जल्दी आ गई है। नैना ने पूछा, कौन? बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, आखिरी लोकल ट्रेन। अचानक लोहे का गेट अपने आप खुल गया। नीचे की सीढ़ियों पर एक एक करके लाइट्स जलने लगी, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। नैना और वॉचमैन पीछे हट गए। लाउड स्पीकर पर अब भी अनाउंसमेंट हो रहा था, यात्री नैना शर्मा, कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचे। और इस बार अनाउंसमेंट के अंत में एक दूसरी आवाज आई, एक आदमी की, बहुत धीमी, नैना। नैना का चेहरा बदल गया। उसने गेट की तरफ देखा। नहीं, वही आवाज फिर आई, बेटा। नैना की आंख से आंसू आ गए। वॉचमैन ने पूछा, क्या हुआ? नैना ने कांपती आवाज में कहा, ये मेरे पापा की आवाज है, उनके मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। वॉचमैन ने उसका हाथ
कस कर पकड़ लिया, नीचे मत जाना। लेकिन फिर सीढ़ियों से वही आवाज आने लगी, नैना एक बार मुझे देख तो लो। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे और तभी नीचे प्लेटफॉर्म 6 पर ट्रेन आके रुकी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इतनी बड़ी ट्रेन आने के बावजूद पटरियों पर जरा भी कंपन नहीं हुई, ना हवा चली, ना कोई आवाज, बस एक पुरानी लोकल ट्रेन अंधेरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। उसकी खिड़कियों के अंदर दर्जनों यात्री बैठे थे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल शांत, और उनमें से एक आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा नैना की तरफ घुमाया। नैना की सांस रुक गई। उसके पिता, वही चेहरा, वही चश्मा, वही कपड़े जिनमें नैना ने उन्हें आखिरी बार देखा था। नैना एक कदम नीचे उतरी। उसने कहा, पापा। उस आदमी ने नैना की तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से अपने होठ हिलाए। नैना साफ समझ गई थी कि वो क्या कह रहे थे, मत आना, यहाँ मत आना। नैना वहीं रुक गई और उसी क्षण उसके ठीक पीछे से उसके पिता की आवाज आई, नैना मैं तो यहाँ हूँ। नैना की आंख फैल गई। उसके सामने ट्रेन में उसके पिता बैठे थे और पीछे उन्हीं की आवाज। वॉचमैन ने फुसफुसा के कहा, पीछे मत देखना। तो श्रोतागण, अगर नैना के पिता उस ट्रेन के अंदर बैठे थे, उसके पीछे उनकी आवाज किसकी थी? एक ऐसा प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो स्टेशन के नक्शे में था ही नहीं, एक ऐसी ट्रेन जो 25 साल पहले निकली थी लेकिन अभी अगले स्टेशन तक नहीं पहुंची, और अब वही ट्रेन नैना को उसके नाम से बुला रही थी। आखिर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, 2:20 पर क्या होने वाला था? मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक श्रोतागण। नैना का पूरा शरीर कांप रहा था। सामने ट्रेन में बैठे उसके पिता लगातार सिर हिलाकर उसे मना कर रहे थे, मत आना। और पीछे से वही परिचित आवाज, बेटा एक बार पीछे तो देखो। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। 8 साल से उसने ये आवाज नहीं सुनी थी। फिर पीछे से आवाज आई, तुम्हें मेरी याद नहीं आती। नैना ने आंख बंद कर ली। वॉचमैन ने उसके कान में कहा, जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें ट्रेन में कभी नहीं बुलाएगा। नैना ने सामने अपने पिता को देखा और ट्रेन में बैठे पिता बार बार उंगली से लिख रहे थे, भागो भागो। नैना के पीछे से आने वाली आवाज भी अब बदल गई थी। वॉचमैन चिल्लाया, ऊपर चलो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, तभी ट्रेन के सारे पैसेंजर्स ने एक साथ अपना सिर उनकी तरफ घुमा दिया। दर्जनों आंखें, लेकिन कोई अपनी सीट से नहीं उठा। फिर ट्रेन के दरवाजे एक साथ खुल गए और स्पीकर पर फिर आवाज आई, यात्री नैना शर्मा कृपया ट्रेन पर बैठे। नैना और वॉचमैन गेट पर पहुंचे। वॉचमैन ने गेट बंद किया, मोटर लॉक लगा दिया। नैना हाँफ रही थी, क्या था? वॉचमैन चुप था। उसने कहा, नैना ने, आप जानते हैं ना, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे घर भेज दीजिए। वॉचमैन ने कहा, अब कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। नैना ने पूछा, तो मैं अब क्या करूं? वॉचमैन ने उसकी तरफ देखा और कहा, सुबह होने तक यहीं रहो। नैना ने रिकॉर्डर देखा, वह अब भी चल रहा था। उसने उसे बंद करना चाहा, लेकिन तभी रिकॉर्डर में एक आवाज आई, नैना। नैना ने रिकॉर्डर उठाया, उसमें अभी कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसकी अपनी आवाज, बारिश, अनाउंसमेंट, उसके पिता की आवाज, लेकिन उसके बाद एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी जो नैना ने उस समय सुनी ही नहीं थी। एक औरत की फुसफुसाहट, आज इसे जाने मत देना। नैना ने रिकॉर्डिंग रोक दी। किसे? वॉचमैन नैना को स्टेशन के एक पुराने कमरे में ले गया। अंदर धूल, पुरानी फाइल्स, रेलवे के नक्शे और पीले पड़ चुके न्यूज़पेपर थे। वॉचमैन ने एक पुरानी फाइल निकाली, उस पर लिखा था, जुलाई 1976। नैना ने पूछा, उस ट्रेन के साथ क्या हुआ? उसने बताया, उस रात भी ऐसे ही बारिश हो रही थी। आधी रात के बाद एक स्पेशल लोकल यहाँ से निकली। 47 लोग थे। ट्रेन अपने स्टेशन तक नहीं पहुँची। नैना ने पूछा, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? वॉचमैन ने बताया, वो ट्रेन मिली ही नहीं, एक भी डब्बा नहीं, एक भी पैसेंजर नहीं, कोई नहीं मिला। नैना ने फाइल पलटी, तो रेलवे ने क्या कहा? वॉचमैन बोला, बस कागजों में लिख दिया गया कि ट्रेन चली ही नहीं थी। नैना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आपने कहा था कि चली थी। वॉचमैन की आंखें झुक गई, क्योंकि मैंने उसे जाते देखा था। नैना चौंक गई, आप वहां थे? बूढ़ा धीरे से बोला, मैं तब 17 साल का था। 1976 में मेरे पिता इसी स्टेशन पे काम करते थे। उस रात मैं उन्हें खाना देने आया था। बारिश बहुत तेज थी। रात करीब 2 बजे पहली बार प्लेटफॉर्म 6 की अनाउंसमेंट हुई। नैना ने पूछा, तब प्लेटफॉर्म 6 था? हाँ, पर फिर बंद क्यों हुआ? वॉचमैन ने कहा, उस रात ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पे खड़े हर यात्री का नाम अनाउंसमेंट में अलग अलग पुकारा जा रहा था। नैना की सांस अटक गई, जैसे आज मेरा। वॉचमैन ने सिर हिलाया और ठीक 2:20 पर ट्रेन चली गई। फिर कभी नहीं मिली। अगले दिन प्लेटफॉर्म 6 बंद कर दिया गया। नैना ने पूछा, लेकिन आज वो वापस कैसे आ गई? वॉचमैन ने कहा, वो प्लेटफॉर्म कभी गया ही नहीं, बस उसका रास्ता बंद कर दिया। नैना फाइल के पन्ने पलट रही थी, अचानक एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ नीचे गिरी। 1976 की वही ट्रेन, खिड़कियों में पैसेंजर्स बैठे थे। नैना फोटोग्राफ को ध्यान से देखने लगी और फिर उसकी नजर एक खिड़की पर रुक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये, नैना ने एक आदमी की तरफ इशारा किया, ये मेरे पिताजी हैं। ये कैसे हो सकता है? नैना की आग भर आई। 1976 में उसके पापा सिर्फ 14 साल के थे, लेकिन फोटोग्राफ के आदमी की उम्र लगभग 40 वर्ष की थी, ठीक उतनी जितनी उनके मृत्यु के समय थी। नैना ने फोटो पलटी, पीछे हाथ से कुछ लिखा था, अगली यात्रा जुलाई 2001 और उसके नीचे 2:20। नैना ने अपनी घड़ी देखी, 2:03 हो रहे थे, यानी कि वो ट्रेन आने में अभी 17 मिनट बाकी थे। और फिर आवाजें आने लगी, अनाउंसमेंट होने लगा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली लोकल के यात्रियों की सूची तैयार है। नैना और वॉचमैन एक दूसरे को देखने लगे, फिर एक एक करके नाम आए, पुराने नाम, मोहनदास, शांति दास। वॉचमैन फुसफुसाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1976 में इस लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया था। नाम आते रहे और फिर अचानक नैना शर्मा अनाउंस हुआ, लेकिन अनाउंसमेंट खत्म नहीं हुई, एक और नाम आया, रघुनाथ प्रसाद। वॉचमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। नैना ने पूछा, कौन है रघुनाथ प्रसाद? बूढ़े के होंठ कांपे, उसने कहा, मैं, आज वो ट्रेन सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी लेने आई है। दोनों कमरे से बाहर आए, प्लेटफॉर्म 6 का गेट खुला हुआ था, नीचे सारी लाइट्स जल गई थी और सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वे नीचे नहीं जा रहे थे, वे नीचे से ऊपर आ रहे थे, जैसे ट्रेन के पैसेंजर्स अब प्लेटफॉर्म छोड़कर स्टेशन के अंदर आ रहे हो। वॉचमैन ने नेहा से कहा, चलो, लेकिन सामने कोई कॉरिडोर में खड़ा था, एक आदमी, भीगे कपड़े, सिर नीचे। नैना ने धीरे से कहा, पापा। आदमी ने फिर सिर उठाया, वही चेहरा, उसके पिता, लेकिन इस बार उनकी आंखों से पानी बह रहा था। उन्होंने कहा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी बेटा? नैना पीछे हट गई, बोली, मैं तो ट्रेन में बैठी ही नहीं। पिता ने कहा, ट्रेन में बैठना जरूरी नहीं है, एक बार वो तुम्हारा नाम पुकार दे तो यात्रा शुरू हो जाती है। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया और अचानक उसके पिता की नजर नैना के पीछे चली गई। उनके चेहरे पर डर उतर आया। उन्होंने कहा, अब बिल्कुल मत हिलना, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वही यात्रियों का नाम चुनती है। नैना की सांस रुक गई, उसे किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उसके कान के पास फुसफुसा के कह रही थी, नैना शर्मा। तो श्रोतागण, अब सवाल ये है कि यात्रियों के नाम कौन चुन रहा था, और 1976 में गायब हुई ट्रेन में नैना के पिता की तस्वीर कैसी थी? उस फोटो के पीछे 2001 क्यों लिखा था? जल्दी मिलते हैं आपसे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

कोई नहीं था, कोई नहीं था।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: स्वागत है आपका प्यारे श्रोतागण 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो के लेट नाइट हॉरर शो में। अब 2:08 हो गए थे, सिर्फ 12 मिनट बाद 2:20 पर आखिरी लोकल आने वाली थी, 1976 वाली। नैना वहीं जमकर खड़ी हो गई। उसने पीछे नहीं देखा, लेकिन सामने खड़े उसके पिता उसके पीछे किसी को देखकर डर रहे थे। नैना ने पूछा, पापा वो कौन है? पिता ने धीरे से जवाब दिया, जिसे उस रात ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया। मगर अचानक वो औरत बोली, इनसे मत पूछो, मुझसे पूछो। नैना के सामने बंद टिकट विंडो के शीशे में उसे अपने पीछे खड़ी औरत दिखाई दी। पुरानी लाल साड़ी, भीगे लंबे बाल, पैरों में पायल और उसकी बाहों में एक छोटा सा बच्चा। तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद पीला था। उसने कहा, मेरा नाम सावित्री है। फिर उसने वॉचमैन की तरफ देख के कहा, रघुनाथ आप इसे जानती हैं? सावित्री बोली, ये उस रात वहीं था। वॉचमैन की आंखें भर आई। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। 2:20 वाली आखिरी लोकल में बहुत भीड़ थी। उस ट्रेन की पैसेंजर लिस्ट में 47 नाम थे। ट्रेन भर चुकी थी, दरवाजे बंद होने वाले थे। तभी सावित्री अपने बीमार बच्चे को लेकर वहां पहुंची। सावित्री बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। वॉचमैन ने कहा, वो अगले स्टेशन के अस्पताल जाना चाहती थी। वो बहुत रोई, उसने बहुत विनती किया, लेकिन उसे चढ़ने नहीं दिया गया। ट्रेन चल पड़ी। सावित्री उसके पीछे दौड़ी, उसका पैर फिसल गया और वो पटरियों पर गिर गई। फिर सावित्री ने खुद कहा, और मैं मर गई और मेरा बच्चा भी नहीं बचा। नैना ने पूछा, लेकिन उस गायब ट्रेन से आपका क्या संबंध है? वॉचमैन ने कहा, अगली सुबह रेलवे की लिस्ट मिली, उसमें वही 47 नाम थे, लेकिन सबसे नीचे एक खाली लाइन अपने आप जुड़ गई थी और उसमें 48 नंबर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। सावित्री ने नैना को देखा, वो पहली बार मुस्कुराई, क्योंकि ये नाम अभी चुना नहीं गया था। नैना की मुस्कान गायब हो गई। किसका नाम? सावित्री ने उत्तर नहीं दिया। वॉचमैन ने धीरे से कहा, हर बार जब ट्रेन लौटती है, वह उस खाली जगह के लिए एक नया नाम चुनती है। नैना को अब अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी और उसने पूछा, इस बार? तभी फिर अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, आखिरी लोकल ट्रेन जल्दी प्रस्थान करेगी, यात्री क्रमांक 48। और फिर एक पॉज के बाद नैना शर्मा। 2:13 हो रहे थे। नैना पीछे हट गई। वॉचमैन बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों मेन एग्जिट की तरफ दौड़े, लेकिन स्टेशन का वो बड़ा गेट बंद था। दूसरा रास्ता वो भी बंद था। तीसरा रास्ता, और कुछ ही सेकंड के बाद दोनों फिर उसी जगह खड़े थे, प्लेटफॉर्म 6 के सामने। नैना ने कहा, हम घूमकर वापस कैसे यहाँ आ गए? वॉचमैन ने कोई जवाब नहीं दिया। नीचे वही ट्रेन खड़ी हुई थी, दरवाजे खुले थे, अंदर 47 यात्री बैठे थे, नैना को देख रहे थे, एक साथ बिल्कुल चुप, और एक सीट बिल्कुल खाली थी, 48वीं सीट। नैना के पिता उसके सामने आए। नैना, उसने रोते हुए कहा, पापा मेरा नाम क्यों? पिता बोले, बेटा क्योंकि उसने तुम्हें सुन लिया है। नैना ने पूछा, किसने? उन्होंने ट्रेन की तरफ देखा। इस जगह ने नैना ने पूछा, मैं बचूंगी कैसे? पिता बोले, नाम पुकार देना काफी नहीं है। जब तक तुम अपनी मर्जी से ट्रेन में कदम नहीं रखती, वो तुम्हें नहीं ले जा सकती। नैना ने राहत की सांस ली, लेकिन पिता ने तुरंत कहा, वो तुम्हें मजबूर नहीं करेगी, लेकिन वो तुम्हें मनाएगी किसी ऐसे इंसान की आवाज बनके, जिसके लिए तुम खुद चलकर उसके पास आओ। पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। नैना ने सावित्री की तरफ देखा, उसके बाहें अब खाली थी। सावित्री ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ देखा। ट्रेन की एक खिड़की में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। नैना ने पूछा, वो बच्चा अंदर कैसे पहुंच गया? सावित्री की आंखों से काला पानी बहने लगा। 25 साल से वो मुझे उसे वापस देने का वादा करती है कि आखिरी लोकल ट्रेन। अब नैना समझ गई, सावित्री किसी को ट्रेन तक क्यों लाती थी। हर बार उसे लगता था अगला यात्री जाएगा तो शायद उसका बच्चा वापस आ जाएगा। नैना ने कहा, लेकिन उसने कभी तुम्हारा बच्चा वापस नहीं दिया। सावित्री ने सिर हिलाया, नहीं। 2:17 हो गए थे। नैना ने अपने हाथ में कुछ महसूस किया, एक पुराना रेलवे टिकट। उस पर लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 6, 2:20, पैसेंजर नैना, और धीरे धीरे उसका पूरा नाम उभर रहा था। उसने वो टिकट फाड़ना चाहा, नहीं फटा। उसने टिकट को नीचे फेंका, मगर वो उसके हाथ में ही रहा। धीरे धीरे फिर काली स्याही उभरने लगी थी। नैना शर्मा, वॉचमैन ने कहा, अगर ये नाम पूरा लिख गया तो फिर शायद तुम्हारे पास चुनने का मौका भी नहीं बचेगा। अब 2:18 हो गए थे। सिर्फ 2 मिनट। नैना ने पैसेंजर लिस्ट पकड़ ली। उसने अपना नाम मिटाने की कोशिश की, स्याही और गहरी हो गई। उसने कागज फिर फाड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो लिस्ट नहीं फटी। स्टेशन के सारे स्पीकर्स एक साथ चीखने लगे, नैना नैना। अलग अलग आवाजें, उसकी माँ की आवाज, उसके दोस्तों की आवाज, और फिर उसके पिता की आवाज। बेटा, नैना ने सामने देखा, उसके पिता गायब थे। अब वो ट्रेन के अंदर थे, 48 खाली सीट के बगल में, और उन्होंने मुस्कुराकर सीट पर हाथ रखा। आओ नैना, मेरे पास बैठो। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। वॉचमैन ने कहा, वो तुम्हारे पिता नहीं है। ट्रेन में बैठे पिता की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उनकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ झुक गई, फिर दूसरी तरफ, और उसी आवाज में बोले, नैना, पापा के पास नहीं आओगी? 2:19, सिर्फ 1 मिनट बाकी था। सारे 47 यात्री एक साथ खड़े हो गए, और खाली 48वीं सीट अपने आप नीचे दबने लगी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उस पर बैठ रहा हो। नैना ने डर के पूछा, अगर मैं नहीं गई तो वहाँ क्या होगा? वॉचमैन ने कहा, तब ये ट्रेन किसी और को चुनेगी। नैना ने पूछा, किसे? सावित्री की आंखें धीरे धीरे वॉचमैन की तरफ चली गई। रघुनाथ समझ गया। तभी अनाउंसमेंट हुआ, यात्री नंबर 48, 1 मिनट बाकी है। और फिर 2:20 पर उनमें से किसी एक का नाम बहुत तेजी से आने लगा। 25 साल से उस लिस्ट में 48वां नाम खाली था, लेकिन आज उस पे नैना का नाम उभर रहा था। अगर नैना ट्रेन में नहीं गई तो शायद ट्रेन रघुनाथ को चुनेगी, वही आदमी जो 1976 की उस रात भी प्लेटफॉर्म 6 पे मौजूद था। तो 2:20 पर क्या होगा? नैना जाएगी या रघुनाथ? जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: नैना ने लिस्ट देखी, नाम लगभग पूरा हो चुका था। वॉचमैन रघुनाथ अचानक बोला, नैना नीचे जाओ और ट्रेन में बैठ जाओ। नैना उसकी तरफ देखती रह गई। अभी तो आप मुझे रोक रहे थे। रघुनाथ की आंखों में बहुत कुछ बदल चुका था। वो मुस्कुराया, मैं 25 साल से इसी रात का इंतजार कर रहा हूँ। नैना ने पूछा, क्यों? रघुनाथ ने कहा, क्योंकि हर बार ट्रेन लौटती है तो किसी एक को यहाँ से जाने देती है। नैना की नजर सावित्री पे गई। सावित्री चीखी, नैना उसकी बात मत सुनना। रघुनाथ ने नैना का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ अचानक किसी बूढ़े आदमी जैसी नहीं थी, बहुत ताकतवर, बहुत ठंडी। नैना ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, तभी लाइट चमकी और एक पल के लिए नैना ने रघुनाथ का असली चेहरा देखा। आधा कुचला हुआ, माथे से खून, आंखों से खून, रेलवे यूनिफॉर्म भीगी हुई। नैना चीख पड़ी। सावित्री बोली, रघुनाथ भी उस रात मर गया था। नैना ने उसको देखा, पूछा, ये क्या है? सावित्री की आवाज कांपी, तुम जिस आदमी के साथ इतनी देर से खड़ी हो, वो 25 साल से इस स्टेशन से बाहर नहीं गया। रघुनाथ मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी बहुत बार, लेकिन प्लेटफॉर्म 6 मुझे जाने ही नहीं देता। उसने नैना को सीढ़ियों की तरफ खींचा। आज जब तुम जाओगी तो शायद मैं आजाद हो जाऊंगी। अब सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। अंदर बैठे नैना के पिता ने अचानक शीशे पर दोनों हाथ मारे और चिल्ला के बोला, नैना भागो। इस बार उनकी आवाज साफ थी, बिल्कुल असली। नैना ने पूरी ताकत से रघुनाथ को धक्का दिया। रघुनाथ लड़खड़ाया, उसकी पकड़ छूटी। नैना अब ऊपर की तरफ भागी, लेकिन सीढ़ियां खत्म हो ही नहीं रही थी। 10 सीढ़ियां, 20 सीढ़ियां और अब सिर्फ 8 सेकेंड बाकी थे। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, नैना इधर आओ, बस एक कदम। 47 यात्री हाथ बढ़ाकर कह रहे थे, आओ आओ आओ। नैना ने दोनों कान बंद कर लिए। अब सिर्फ 2 सेकेंड बाकी थे, 2:19:58। रघुनाथ ने पीछे से आवाज दी। सावित्री चीखी, नैना झुको। नैना झुक गई। रघुनाथ का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे ट्रेन के खुले दरवाजे के अंदर जा गिरा। उसी क्षण 2:20 पर ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हो गए। रघुनाथ अंदर से चीख रहा था, नहीं नहीं, इस बार मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। पैसेंजर लिस्ट पर से नैना का नाम मिट गया और उस जगह पर धीरे धीरे लिखा गया, रघुनाथ प्रसाद। ट्रेन की लाइट्स बुझ गई। 47 पैसेंजर्स फिर अपने सीट्स पे बैठ गए और 48वीं सीट पर रघुनाथ बैठा था, सीधा शांत। उसकी आंखें खुली थी। उसने नैना को देखा और शीशे पर धीरे से उंगली रख दी। ट्रेन चलने लगी। नैना ने अपने पिता को ढूंढा। आखिरी खिड़की में वो खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पे डर नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान, और उन्होंने हाथ उठाकर अपने होंठ हिलाए, घर जाओ बेटा। दूसरे दिन सुबह बारिश बंद हो चुकी थी। सुबह की पहली लोकल प्लेटफॉर्म पर आई, लोग उतर रहे थे। चाय वाला दुकान खोल रहा था। अनाउंसमेंट बिल्कुल सामान्य। नैना ने प्लेटफॉर्म 6 की तरफ देखा। वहाँ कोई गेट नहीं था, सिर्फ एक पुरानी दीवार न सीढ़ियाँ, न प्लेटफॉर्म, न ट्रेन, न सावित्री, न रघुनाथ। नैना ने कांपते हाथों से अपना रिकॉर्डर उठाया। रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद थी, उसमें उसके पिता की आवाज आ रही थी और अंत में एक ऐसी आवाज आई जो नैना को रात में सुनाई नहीं दी थी। एक छोटी सी बच्ची की आवाज, माँ, फिर सावित्री की, मैं आ रही हूँ बेटा। नैना की आंखें भर आई। शायद 25 साल बाद अब सावित्री भी चली गई थी। उसने रिकॉर्डर बंद कर दिया और स्टेशन के बाहर निकल गई। अचानक रिकॉर्डिंग फिर अपने आप चालू हो गई। रिकॉर्डर बेंच पे नहीं था, वो नैना के बैग के अंदर था। फिर प्ले अपने आप दब गया और अनाउंसमेंट होने लगा। यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, अगली आखिरी लोकल ट्रेन जुलाई 2026 में आएगी। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर अनाउंसमेंट हुआ, यात्री क्रमांक 48 के लिए एक नाम चुना जाएगा। नैना ने अपना रिकॉर्डर बंद किया, मगर पीछे से अभी भी कहीं धीरे धीरे उसे कोई पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। प्यारे श्रोतागण, कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई सफर खत्म हो गया, लेकिन शायद कुछ खत्म नहीं होते, बस अगला यात्री बदल जाता है। तो अगली बार आप किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे हो और अनाउंसमेंट में उस प्लेटफॉर्म का नाम सुने जो वहाँ है ही नहीं, तो ट्रेन देखने मत जाइएगा। और अगर अनाउंसमेंट में आपका अपना नाम सुनाई दे तो शायद भागने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे। आज की कहानी थी आखिरी लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 6।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज़ की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग, संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं